मीडियम वेव 186.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। आज शुक्रवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। 5:57 होने को है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजे
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित

0: इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

सूरज मुस्कुराता है तो एक नया दिन निकल आता है, फूल मुस्कुराते हैं तो खुशबुओं की नदी बह चलती है, पंछी गुनगुना उठते हैं। मुस्कुराहट एक पवित्र घटना है, मुस्कुराते हुए कभी कोई गलत काम नहीं किया जा सकता। मुस्कुराहट शुभता की निशानी है, उसके होने से ही धरती पर सौंदर्य है, मंगल है। तो आइए इस नई मुस्कुराती भोर में हम भी प्रवेश करें एक मुस्कुराहट के साथ और कृतज्ञ भाव से प्रथम नमन करें माँ भारती को, उसका यशगान करें।

अनंत की तलाश में निकलने वाला यात्री तमाम दुखों से मुक्ति पा लेता है। जिन बेड़ियों से वो अब तक बंधा हुआ था, वे सभी कटकर छिटक जाती हैं। जीवन में ज्वर की तरह जो संताप तप रहे थे, वो भी दूर हो जाते हैं। यही प्रभु के नाम स्मरण की महिमा है।

ज्ञानियों ने उस परम तत्व को अगम, अगोचर, अविनाशी कहा। उसकी महिमा का बखान करते हुए ज्ञान ने नेति नेति कहकर उसे नमन किया, किंतु अपना सर्वस्व अर्पण कर उसके समक्ष नतमस्तक हो प्रेम ने उसे पा लिया। प्रेम पूर्ण समर्पण ही हमें उस तक पहुंचाता है।

अगर हम उस ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अपने हृदय को भोर की तरह निर्मल रखें, उसे कोरा रखें, निर्झर की कलकल की तरह प्रेम की रसधार बहने दें, क्योंकि ऐसे हृदय की पुकार उस परम सत्ता तक अवश्य पहुंचती है।

हमारे मस्तिष्क की प्रकृति ग्रहण करने की है और हमारा विवेक अच्छे और बुरे के अंतर का आधार है। वंदना मस्तिष्क और विवेक के सही प्रयोग का संस्कार हम में डालती है, हमारे ज्ञान चक्षु खोल देती है।

इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। गायक कलाकार थे जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। गायक स्वर है मिताली बी सिंह का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्तऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकड़,

शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। गायक स्वर था बी मिताली सिंह का। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख किरण तिवारी का।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन से जुड़ा संदर्भ है। वे एक रात सौंदर्य पर एक किताब पढ़ रहे थे। रात में 2 बज गए हैं। पढ़ते पढ़ते वे थक गए हैं। फिर क्रोध से किताब पटक दी, दिया बुझा दिया और फिर खड़े होकर नाचने लगे हैं, क्योंकि जब तक वे किताब पढ़ रहे थे तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर पूर्णिमा की रात है। और जैसे ही किताब पटक दी, दिया बुझाया, चांद की सब किरणें भीतर भर गई हैं। बजरे के अंदर नाव पर वे थे और चांद बाहर था। जब तक दिया भीतर जल रहा था, वे भीतर आए तो नाचने लगे हैं और उन्होंने कहा, मैं भी कैसा पागल था, आधी रात गंवा दी, किताब पढ़ता रहा ये जानने को कि सौंदर्य क्या है, जबकि सौंदर्य बाहर खड़ा ही था। वो पूरे समय दरवाजे पर ठोकर दे रहा था कि तुम दिया तो बुझाओ, तुम किताब बंद तो करो और मैं आऊँ। आदमी अपने विचारों में इस कदर खोया है कि उसे बाहर देखने की सुधि तक नहीं है। वो लगातार चलता है, चलता रहता है, एक सड़क पर से बार बार निकलता है।

0: 200 लीटर पानी का उपयोग करें। पर्याप्त यदि पानी होगा तो हमको कीटनाशक या खरपतवार नाशक का अच्छा जो है परिणाम मिलेगा। साधारणतः किसान भाई खरपतवार नाशक दवा के साथ कीटनाशक दवा मिला के उपयोग करते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। खरपतवार नाशक दवा छोटी अवस्था में, जब हमारी फसल 15-20 दिन की रहती है या कचरा 2-3 पत्ती अवस्था में रहता है, तो उस समय कचरे की दवा का आप उपयोग करें। यदि हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में कचरे के लिए हम जैसे इमेजेथपायर है प्लस इमेजोमॉक्स है, इसकी हम मात्रा उपयोग कर सकते हैं 100 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से। या हमारा फ्यूजीफाब ब्यूटाइल है प्लस फॉर्मॉक्सिन है, इसकी हम मात्रा उपयोग कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। तो कई तरह के हमारे जो है खरपतवार नाशक हैं सोयाबीन के लिए, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई किसान भाई कर रहे हैं तो वहाँ पर रोपाई वाली धान में भी हम जो है जैसे हमारा बिसपायरीबैक सोडियम है, इस दवा का हम उपयोग कर सकते हैं 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। यदि हमने अरहर और उड़द की फसल लगाई है तो उसमें भी खरपतवार नाशक इमेजेथपायर प्लस प्रोपोक्यूजाफाफ करके आता है, 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में हमारे किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे हैं तो मक्का की फसल के लिए भी टोप्रामिजोन 33.6 दवाई आती है, जिसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या टोप्रामिजोन करके दवाई आती है 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी फसलें हैं, कई किसान भाई मूंगफली की फसल लगाते हैं तो उसमें भी जैसे इमेजेथपायर है 10 cc मात्रा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। तिल की फसल है उसमें फिनोक्सीप्रॉप इथाइल, तो हमारी सभी खरीफ फसलों के लिए खरपतवार नाशक की उचित मात्रा और जानकारी उपलब्ध है। तो इसके लिए आप हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि अधिकारी हैं, आत्मा परियोजना के अधिकारी हैं, उनसे आप बात करें, संपर्क करें। उपयुक्त दवा का उपयुक्त समय में यदि हम छिड़काव करेंगे तो हमको इसके अच्छे जो है परिणाम मिलेंगे। सोयाबीन प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, तो सोयाबीन में जैसे ब्लू बीटल कीट का अटैक आता है या हमारी सफ़ेद मक्खी का आता है, तो इसके लिए क्विनोलफास 25 cc मात्रा 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, या क्लोरेंटा लिली प्रोल कर 18.5 cc मात्रा 150 ml प्रति हेक्टेयर किसी एक दवा का हम छिड़काव कर सकते हैं। तना मक्खी का यदि प्रकोप खेत में दिख रहा है तो इसके लिए हम बीटा साइलोथ्रिन प्लस इमीडा क्लोरपेट दवा 350 ml प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर सकते हैं। आगे चल के सोयाबीन में इल्ली का प्रकोप आता है, सेमी लूपर का आता है, बड़ी इल्ली का आता है या चने की इल्ली का आता है, तो इसके लिए फ्लूबेंडामाइड है या स्पाइनो टोरम है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। गर्डल बीटल के लिए थायक्लोप्रिड है, तो सोयाबीन में कीट का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में बुआई हो गई है तो खरीफ फसलों के उसमें फसल सुरक्षा के अंतर्गत खरपतवार कीटों का नियंत्रण करें और वैज्ञानिकों व कृषि अधिकारियों के संपर्क में रह के अच्छी उन्नत तकनीक से खेती कर अच्छा उत्पादन लें।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, यह आकाशवाणी भोपाल है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: வல்லமை கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா. श्रोताओ एक सूचना, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी भोपाल है। 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिम स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी

0: मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री न्यगादीत यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्याम परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वैब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रान्तिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमाप्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 40% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव IVF चिकित्सालयानां ART केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासङ्गिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा

के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती

0: कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आकाशवाणी भोपाल से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जिसमें आज आप सुनेंगे वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस पर ऊर्जा संरक्षण संबंधी जानकारी श्रीमती वंदना चटर्जी, अधीक्षण अभियंता ऊर्जा विकास निगम भोपाल से। बारिश में कौन से फूलों से पौधे लगाएं जो कि सर्दियों में घर आंगन महकाएं, ये जानकारी देंगे प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र एवं ग्रीन क्लस्टर हेड डॉक्टर जसविंदर मेहता। बरसात में होने वाली पेट से संबंधित बीमारियां और उसके निदान के बारे में बताएंगे डॉक्टर कुलदीप सिंह, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स हॉस्पिटल भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे सुबह 8:30। गांधी चर्चा का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:15। 9:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। 10:00 प्रसारित की जाएगी जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे अमरीश कालेले का गिटार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। और शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आकाशवाणी भोपाल से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आज सुबह 11:00 से होगा, जिसमें 11:00

सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 12 बजे, 2:30 बजे और रात 10 बजे। दोपहर 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक हंसना मना है की 9वीं कड़ी। दोपहर एक बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत, 2:15 बजे सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकेगा 2:00 बजे, शाम 5:33 पर, 6:30 बजे, रात 8:15 बजे और रात 9:45 बजे। शाम 6:00 बजे प्रसारित होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8:00 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 9:30 बजे खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद शुएब की वार्ता, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में टीमों की स्थिति एवं संभावनाएं। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा अमरीश कालिले का गिटार पर बजाया राग गावती। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी भोपाल है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है। और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। तीन देशों की इस यात्रा में श्री मोदी अपने अगले गंतव्य न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने से पहले आज मेलबर्न में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा होगी। इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे रहा

0: छात्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ये परियोजना उज्जैन, दक्षिण, घटिया, नागदा, खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 2 वर्षों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से लगभग 35 लाख आबादी तथा 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग के निर्माण से उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा एवं तेज संपर्क मिलेगा। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल एवं मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील में आयोजित एक किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक पहुँच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा और 1,000 रुपये हर साल 1 माह तक दिया जाएगा।
2: जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1,000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुशल कार्यबल, मजबूत संस्थानों और नवाचार के कारण भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC के लिए सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। नई दिल्ली में CII राष्ट्रीय GCC बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 2100 से अधिक GCC हैं जहाँ 23 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। इन केंद्रों से हर साल लगभग $10,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र इंजीनियरिंग, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वित्त, उत्पाद तथा डिजाइन और डेटा विज्ञान को एक साथ लाकर नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिश्रित स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्हें चीन से 3-5 से हार मिली। अब कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला इटली से होगा। वहीं भारत की पुरुष और महिला रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। हालांकि भारत की महिला कंपाउंड टीम पहले ही फाइनल में पहुंचकर अपना पदक पक्का कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में जनगणना से संबंधित हस्त पुस्तिका तैयार की जाएगी जिसके लिए लगभग 150 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण

ग्रहण कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। वहीं इंदौर के ही किला भवन शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश मेले का शुभारंभ हो गया है। खंडवा में आगामी 2 से 4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस में पार्श्व गायक विनोद राठौर को प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में कृषि विभाग ने अमानक बीज उपचार दवा बेचने के मामले में डीलर और कंपनी संचालक के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया है। झाबुआ, थांदला और पेटलावद में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आगरमालवा जिला सहकारी विपणन संस्था को वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कटनी में आवास प्लस 2026 सर्वे के तहत तैयार वोटिंग लिस्ट के फाइनल करने और उसके वेरिफिकेशन के लिए 2 दिवसीय ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए नवाचार साझा करने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया गाड़ासरई के बिरासनी शिशु विद्या मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। नीमच जिले के 105 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की तय मानकों के अनुरूप संचालन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल ब्रिस्टल में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ अपनी T20 सीरीज जीती है। वहीं मौसम में प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और भोपाल में कल भी दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और होशंगाबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4-लेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है। और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

यह आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

तपिश और बढ़ गई चंद बूंदों के बाद काले स्याह बादलों ने भी दिल को बहलाया मेरे। दोस्तों, यही कुछ आलम है इन दिनों हमारे शहर का, मानसून का।

दोस्तों, गर्मी की तपिश के बाद जब आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू हवा में घुल जाती है और बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, तब मन अपने आप खिल उठता है। शुरुआती बरसात अपने साथ केवल ठंडक ही नहीं बल्कि नई उम्मीदें, नई उमंगें और प्रकृति का नया श्रृंगार भी लेकर आती हैं। किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पेड़ पौधों जो कि गर्मी

गर्मी की तपिश से सूख चुके थे, उन्हें भी मानो जिंदगी मिल जाती है। बारिश को देखकर हमें ये एहसास होता है कि तपती बारिश को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, और तपती गर्मी के बाद सुकून की भरी ये फुहारें हमारे तन मन को भिगो देती हैं। तो आइए इस सुहाने मौसम का हम आनंद लेते हैं और सुनते हैं ऐसा ही गीत जो इस मौसम को और भी खूबसूरत बना देगा।

दोस्तों, इस प्यार भरे दीवाने मौसम को अभी हम एंजॉय करेंगे। आपको बता दें, वक्त हुआ है सुबह के 7:27 और अब हम आपको देने जा रहे हैं समाचार पत्रों से खास खास खबरें।

सबसे पहली खबर आपको बता दें कि भोपाल पहुंची 9 ई बसें इसी महीने सड़कों पर दौड़ेंगी। शहर के सार्वजनिक परिवहन व आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पहले चरण की 9 इलेक्ट्रिक बसें भोपाल पहुंच गई हैं। सभी बसों को बैरागढ़ स्थित ई बस डिपो पर रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन बसों का संचालन इसी महीने शहर की सड़कों पर शुरू कर दिया जाएगा। नई ई बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं और प्रत्येक बस एक बार पूर्ण चार्ज होने पर लगभग 180 किलोमीटर तक चलेगी।

15 से स्कूल कॉलेजों में नशे से दूरी अभियान शुरू होगा। जिले के नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 15 जुलाई से स्कूलों और कॉलेजों में नशे से दूरी है जरूरी अभियान शुरू किया जाएगा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को जिला स्थानीय एनकार्ड समिति की बैठक में विभिन्न विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन 15 तक। गृह विभाग ने 2027 के पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 जुलाई तक मांगे हैं। कला, समाज सेवा, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा सहित एवं शिक्षा, सिविल सेवा, खेल व अन्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आवेदन कर सकते हैं।

दोस्तों, अभी आपको बताने को, सुनवाने को हमारे पास बहुत कुछ है। कहते हैं बारिश की बूंदें केवल धरती तपती धरती को ही नहीं भिगोती, बल्कि हर चीज में नई ऊर्जा भर देती है। पत्तों पर चमकती बारिश की बूंदें, खिड़की से आती ठंडी हवाएं, बादलों की गरज, ये सब मिलकर संगीत रचते हैं जिसे हर दिल महसूस करता है। तो इसी भीगी भीगी सुबह में हम भी अपने मन की खिड़कियां खोल दें और बारिश की फुहारों को अपने एहसास में समेट लें।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोस्तों, आज वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस है जो हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। 2006 में शुरू हुआ ये दिन हमें नवीकरण ऊर्जा समाधानों को खोजने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी संबंध में विस्तृत जानकारी दे रही हैं श्रीमती वंदना चटर्जी, अधीक्षण अभियंता ऊर्जा विकास निगम भोपाल।
1: साथियों, ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई देश अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को अधिकतम सीमा तक अपने संसाधनों से पूरा कर सके और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करे। इससे देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है। और जिस प्रकार से युद्ध इत्यादि की अगर संकट पैदा होते हैं तो उस समय इसका प्रभाव हम पर कम पड़ता है।
2: तो सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की क्या भूमिका है?
1: ये जो सौर, पवन और जल ऊर्जा, ये जो स्रोत है, इनको हम नवकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होते और ये रोज नवीन रूप से हमको रोज मिलते हैं और इनकी भरपूर हमारे पास इनकी उपलब्धता रहती है। ये जो स्रोत हैं, ये पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत हैं, इनसे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता और हम जीवाश्म ईंधनों की खपत पे हमारी निर्भरता कम होती है। जो हमारे जो पारंपरिक जो स्रोत होते हैं जिनके उपयोग हम करते हैं और जो बिजली इत्यादि और ये हम करते हैं, इसी चलाते हैं, उसमें कार्बन उत्सर्जन हम बहुत करते हैं और ये जानते हैं कि बाहर हम प्रदूषण

0: तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इनके उपयोग से, नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग से हम कार्बन उत्सर्जन घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे देश में इन स्रोतों की अपार संभावनाएं हैं और ये भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था का आधार बन सकते हैं।
1: तो जैसे कि आपने पर्यावरण की बात करी, तो ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का आपस में क्या संबंध है?
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में बहुत गहरा संबंध है। देखिए, जब हम बिजली और ईंधन की बचत करते हैं तो आपसे आप ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता कम होती है। इससे कोयला, पेट्रोलियम ऐसे संसाधनों का कम उपयोग करते हैं। इससे वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटता है। पर्यावरण और जलवायु की रक्षा होती है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: तो आने वाले वर्षों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: देखिए, हमारे देश भारत की जो ग्लोब में लोकेशन है उसमें हमारे देश में असीमित सौर ऊर्जा और पवन उपलब्ध है। आने वाले समय में इस ऊर्जा के, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत तेजी से उसका विस्तार होगा। हम अभी, हमारा देश रूफटॉप सोलर और पे बहुत जोर दे रहे हैं। हमारा सरकार जो है इस पर बहुत प्रतिबद्ध है कि हम अधिक से अधिक निर्भरता सोलर पे करें। इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग अधिक से अधिक बढ़ेगा। जैसा कि अभी युद्ध के समय भी हमने देखा कि हम, भारत जो है, दूसरे देशों की तुलना में इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित, ऑयल के कारण इस युद्ध में जो भी स्थिति हुई दरों के बढ़ने की, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भारत देश नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अधिक से अधिक इस नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को हम बहुत तेजी से विस्तार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को मजबूत करना है।
1: अंत में जानना चाहेंगे कि आप श्रोताओं को ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
0: हम सब बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। ऊर्जा बचाना केवल सरकार की नहीं और सरकार की योजनाओं से नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस राइट फ्रॉम स्कूल लेवल आना चाहिए कि हम जितनी छोटी उम्र में ये चीज़ हम उनके दिमाग में ऊर्जा संरक्षण की डालेंगे, उतना ही तेज़ी से हम वो मैसेज को प्रचारित कर पाएंगे। अनावश्यक बिजली बंद रखें, LED बल्ब और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करें, जहाँ संभव हो सौर ऊर्जा अपनाएं और ऊर्जा की बर्बादी रोकें। छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़े बदलाव लाए जाते हैं। आइए ऊर्जा बचाएं, स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और हरित भारत का निर्माण करें।
2: ऊर्जा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी श्रीमती वंदना चटर्जी, अधीक्षण अभियंता ऊर्जा विकास निगम भोपाल। दोस्तों, ऊर्जा बचत केवल विकल्प नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आपकी छोटी सी बचत आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य बना सकती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आपकी नजर करते हैं खूबसूरत सा गीत। चलो सजना जहां तक घटा चले, हर कदम पर प्यार का कारवां चले, राहें चाहे जैसी भी हों, जिंदगी की साथ तेरा हो तो हर सफर खुशनुमा चले।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र, जहां से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, जहां बरसात मन को भाती है, वहीं तन को कुछ पीर भी भाती है। यानी बरसात के दिन में पीने के पानी में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो पेट से जुड़ी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। वो तकलीफें क्या होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, यही जानने के लिए हम मिले डॉक्टर कुलदीप गुप्ता से, जो एम्स हॉस्पिटल में कम्युनिटी मेडिसिन है। तो मुखातिब है आपसे।
1: नमस्कार।
0: जानना चाहेंगे कि बरसात में पेट से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
1: टाइफाइड, जिसको सामान्य भाषा में हम मोती जीरा बोलते हैं, फिर हैजा जो कोलरा होता है, साथ ही साथ डिसेंट्री और डायरिया, ये सारी बीमारियां बरसात के मौसम में दूषित पानी और भोजन के लेने से होती है।
0: जैसा कि आपने बताया कि दूषित पानी, तो दूषित पानी और भोजन से संक्रमण कैसे फैलता है?
1: देखिए, जो दूषित भोजन है, दूषित पानी है, वो यदि हम किसी कॉमन सोर्स से, जैसे कहीं पर भंडारा हुआ है या कहीं किसी भोजनालय से हम ले रहे हैं, तो वो मुंह के जरिए हमारे पेट में जाता है। पेट में जो संक्रमण है, जो जीवाणु है, कीटाणु विषाणु है, वो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे उनका एक संख्या में बढ़ोतरी होती है, उसके कारण हमारे शरीर में धीरे धीरे धीरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, नजर आने लगते।
0: तो जैसे आपने लक्षणों की बात करी, तो लक्षण क्या होते हैं इसके?
1: देखिए, सबसे पहली बात, बार बार दस्त लगना। दस्त भी पानी जैसे एकदम पतले पतले हो रहे हैं, और साथ ही साथ बदबूदार। एक तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होती है कि जो सामान्य डिसेंट्री हम बोलते हैं, जिसको पैचेस बोलते हैं, उसमें जो दस्त होगा वो बदबूदार होगा और एकदम पानी जैसा, साथ ही साथ उसमें हो सकता है कि म्यूकस के साथ साथ खून भी हो, तो हम उसको डिसेंट्री बोलेंगे। फिर उसके साथ साथ उल्टियाँ होना, फिर पेट दर्द होना, बुखार आना, साथ ही साथ कमजोरी लगना। कई बार यदि सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उससे बेहोशी और साथ ही साथ कमजोरी और चक्कर आना भी ये सामान्यतः लक्षण होते हैं।
0: जानना चाहेंगे कि बच्चों और बुजुर्गों में इसकी संभावना ज्यादा होती है, क्यों?
1: क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग, ये जीवन के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। दोनों समय पे जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, और इस कारण से बच्चे, बुजुर्ग और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं भी सबसे ज्यादा खतरे के निशान पर या खतरे के ऊपर होती है। कोई भी किसी प्रकार का संक्रमण इस उम्र में सबसे ज्यादा होता है।
0: तो इससे कैसे बच सकते हैं?
1: सबसे पहले ताजा खाना हो, ढका हुआ खाना हो, साथ ही साथ पानी, पानी उबला हुआ भी हो, पानी फिल्टर्ड हो। हम लोग सुबह का खाना शाम को खाने से बचे, क्योंकि इस समय पे ह्यूमिडिटी होने के कारण, साथ ही साथ गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी, जिस कारण से हो सकता है कि वो भोजन खराब हो गया हो, तो ताजा सुपाच्य भोजन जो ज्यादा गरिष्ट न हो, ऐसे भोजन करने से हम बच सकते।
0: क्या केवल उबला पानी, फिल्टर युक्त पानी ही पीना पर्याप्त है या कोई और सावधानियां भी जरूरी हैं?
1: देखिए, सबसे उपयुक्त उबला हुआ पानी, फिल्टर वाले पानी के साथ साथ यदि हम कुछ क्लोरीन की गोली, यदि हम जो पानी उपयोग कर रहे हैं उसमें भी डालें, तो उससे भी जो सप्लाई सिस्टम में यदि कहीं संक्रमण होने का खतरा है तो वो भी कम हो सकता है। तो हम क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग भी कर सकते हैं।
0: इन दिनों अगर बाहर खाना खाने का मूड बनता है, बाहर जाते हैं, तो

0: हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
1: सबसे पहले कि जो भोजन बना रहे हैं, जहां भोजन बन रहा हो वहां पर साफ सफाई स्वच्छता हो, वहां किसी प्रकार के जीवाणु कीटाणु जैसे मक्खियों के कारण बहुत सारी पानी के जनित और भोजन जनित जो बीमारियां होती है वो होती हो, स्वच्छता का ध्यान, प्रॉपर ड्रेनेज हो, प्रॉपर क्लीनिंग हो, सफाई हो, जो भोजन जिन बर्तनों में बन रहा है उनको भी प्रॉपरली, और जो बनाने वाले वो भी हैंड हाइजीन, साथ ही साथ हाथ धोने का, अपने मास्क कैप लगा के भोजन बनाए, जिससे संक्रमण होने का खतरा बहुत कम हो जाता है।
0: तो बच्चों में जब डायरिया होता है तो उस समय अचानक से जब पता चलता है माता पिता को, तो उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, इसमें डायरिया में दो प्रकार से हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि बच्चा 6 माह से छोटा है उस बच्चे को लगातार माँ का दूध तो पिलाना ही है
0: जी।
1: और साथ ही साथ हमको WHO ORS जो मान्यता प्राप्त ORS है वो भी देना है, वो दस्तों की संख्या के हिसाब से, कि बच्चा यदि नॉर्मल रूप से 3 से 4 बार दस्त करता है तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर उससे यदि ज़्यादा दस्त हो रहे तो तुरंत ही हमें अस्पताल जाके डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 प्रकार से डिहाइड्रेशन होता है, वो चिकित्सकीय सलाह के बाद ही हम उसको देख सकते हैं, असिस कर सकते हैं। और सबसे रामबाण इलाज जो WHO ORS, हर दस्त के बाद हमें 50 ml के करीब ORS बच्चे को पिलाना है।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी। अंत में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो बरसात के मौसम में सेहतमंद बने रहने के लिए उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे पहला ताजा भोजन लें, जो मौसम के अनुकूल हो, गरिष्ठ तला भुना कम से कम खाएं, नमक का मात्रा का ध्यान रखें। मेरा आप सभी से यही निवेदन, यही कहना है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मानसून का आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए, और आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, यही मेरी आप सभी से विनती है, आशा है।
2: बारिश में सेहत संबंधी बहुत ही उपयोगी और सार्थक जानकारी हमें दे रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के डॉक्टर कुलदीप गुप्ता। दोस्तों, जागरूकता और सतर्कता अगर रहे तो हर मौसम को एंजॉय किया जा सकता है। फिलहाल आप लुत्फ उठाइए किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत का।

0: दोस्तों, बरसात का मौसम जहां दिलों में खुशियां उमंगे भरता है, वहीं ये मौसम बागवानी के लिए भी उपयुक्त होता है। वैसे भी हाल ही में हमने वन महोत्सव मनाया है। 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाने वाला वन महोत्सव एक तरह से राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण उत्सव है और वृक्षारोपण का सही समय चल रहा है। इसीलिए हम मिले वनस्पति शास्त्र की प्रोफेसर एवं ग्रीन क्लस्टर हेड डॉक्टर जसविंदर मेहता से। उनसे जानना चाहा कि बारिश में कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए जो कि सर्दियों में फूलों से हमारे घर आंगन को महकाएं। तो उन्होंने बताया,
1: बारिश में हमें सभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो हम चाहते हैं कि सर्दियों में ये हमारे घर आंगन को महकाएं, तो हमें उसकी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए और हमें उनकी पौध लगा देनी चाहिए। मैं कुछ पौधों के नाम बताना चाहूँगी, जैसे नागचंपा है, तो इसके अलावा पेटूनिया है, हिबिस्कस है, बोगनवेलिया है, एंथूरियम है, एडिनियम है, तो इनकी तैयारी कर सकते हैं और सर्दी आते आते तक हमारे घर में फ्लावरिंग होने शुरू हो जाती है। गंधराज भी एक बहुत अच्छा पौधा है जिसकी हम तैयारी अभी से कर सकते हैं और सर्दियों तक ये हमें फूल देने लगता है।
0: कौन से फूल के पौधे कम देखभाल में भी अच्छी तरह पलते हैं?
1: हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। नागचंपा है, गंधराज है, बोगनवेलिया है, इसके अलावा थूरियम है, ये सब पौधे ऐसे पौधे हैं, चांदनी है, तो ये अपने आप, मतलब थोड़ा सा देखभाल करने पर, थोड़ी खाद मिट्टी डालने पर ही अच्छे पनपते हैं और फ्लावरिंग होने लगती है। इसके अलावा जैसे मैरीगोल्ड है, गेंदा, कॉस्मोस, सनफ्लावर, जीनिया, सभी तरह के पौधे हम अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और सर्दी आते आते तक ये हमको फ्लावरिंग देना शुरू कर देते हैं।
0: बारिश के दिन है तो क्या बीज बोना बेहतर होगा या सीधे पौधे ही लगाना चाहिए?
1: मेरे हिसाब से जो अभी हम पौध लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा सीड तो है ही, सीड हमें बोना चाहिए, पर थोड़ा सा अगर पानी की निकासी हो या पानी जहाँ ठहरता ना हो वहाँ पर हम बीज लगा सकते हैं, परंतु ट्विग लगाएंगे या पौध लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।
0: और इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए?
1: मिट्टी पौधे के अनुरूप हमें लेनी है। जैसे हम एडिनियम की बात करें तो उसमें हमें रेतीली मिट्टी लेनी चाहिए। इसके अलावा भुरभुरी मिट्टी ही फूल वाले पौधों के लिए बेहतर होती है।
0: जानना चाहेंगे कि घर की बालकनी और छत के लिए कौन से फूलों के पौधे उपयुक्त होते हैं?
1: घर की बालकनी के लिए जितने भी सीजनल हैं, अगर वहाँ पे धूप आती है तो आप रख सकती हैं और वो बहुत आसानी से पनपते हैं। इसमें गुलदाउदी है या ये चंपा है, इग्जोरा है, इनकी बेल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मोगरा है, तो वो बहुत अच्छे से पनपते हैं और फ्लावर आते हैं और हमारी बालकनी को खुशबूदार बनाते हैं।
0: तो गमलों में कौन से पौधे लगाने चाहिए?
1: गमलों में हम पेटूनिया लगा सकते हैं, मोगरा लगा सकते हैं, गुलाब का बहुत अच्छी वैरायटी आती है, बंचेस में भी गुलाब आते हैं और डिफरेंट कलर्स के गुलाब आते हैं। बोगनवेलिया बालकनीज में देखा जाता है कि बहुत अच्छा पनप रहा होता है लोगों का। प्रॉपर कटिंग अगर हम करें तो बोगनवेलिया के डिफरेंट कलर्स लगाकर हम अपनी बालकनी को सजा सकते हैं।
0: बात करें फलदार वृक्षों की, तो बारिश में कौन से फलदार पौधे ऐसे लगाना चाहिए जो कि बढ़कर हमें अच्छे फल दें?
1: आपने मेरे मन का प्रश्न ले लिया है जिसका मैं उत्तर देना चाहूँगी। फलों से लोगों की पूर्ति होती है और अपना न्यूट्रिशन मिलता है, तो बारिश के समय में हमें अमरूद की जितनी भी वैरायटी है वो हम लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फल है जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है। इसके अलावा पपीते की वैरायटी लगा सकते हैं, बनाना है, केला जो हमारे मध्य प्रदेश के फ्लोरा के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा नींबू की कलमें लगाई जाती हैं और पौध लगाई जाती हैं बारिश में, जो बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट्स मिलते हैं अगर हम इनको बारिश में लगाते हैं। इसके अलावा जामुन की बात कर सकते हैं, जामुन का पौधा मध्य प्रदेश में लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश से आगे बढ़ के बात करें तो आलू बुखारा और नाशपाती के फल भी, फलदार पौधे भी इस सीज़न में लगाए जाते हैं।
0: ग्राफ्टेड पौधे यानी कि कलमी पौधे, क्या बीज वाले पौधों की तुलना में

0: जल्दी फल देते हैं?
1: कुछ वैरायटी पर भी निर्भर करता है, जैसे नींबू की बात करें तो उसमें ग्राफ्टिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा हम फल लगा रहे हैं, कौन सा फल का वृक्ष लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ग्राफ्टिंग करके हम लगाना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी। अंत में जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पौधों में जो जल भराव आ जाता है उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे बचा जाए?
1: प्रॉपर निकासी हमको करनी होती है। जब बारिश आती है तो हम अपने गार्डन में वेल ड्रेनेज का वो सोर्स बनाएं, मतलब जहाँ से आउटलेट हो पानी का, जिससे पानी ठहरे नहीं और हमारे पौधों की जड़ें गले नहीं। तो प्री प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं वो नेसेसरी होती है, चाहे वो घर हो, खेत हो या नगर निगम के द्वारा लगाए हुए, कॉरपोरेशंस के द्वारा लगाए हुए पौधे हो, किसी भी तरह का प्लांटेशन किया गया हो, तो वहाँ पर अगर हम प्रॉपर पानी का निकासी बना देंगे तो हमारे पौधे बहुत अच्छे पनपते रहेंगे और बारिश में इनका नुकसान नहीं होगा। तो प्री प्रिपरेशन नेसेसरी होता है और आउटलेट के लिए हम ज़रूर उसको पानी को निकलने का सोर्स बनाएं और मिट्टी को रोक कर रखें।
2: पेड़ पौधों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी हमें डॉक्टर जसविंदर मेहता। दोस्तों, ये पेड़ पौधे हमें फूल फल ही नहीं देते बल्कि हमारी चलती सांसों के लिए भी जीवनदायिनी हैं और स्वच्छ स्वच्छ पर्यावरण का हिस्सा भी हैं। तो आइए हम सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्वयं के लिए स्वच्छ स्वस्थ वायु के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ इजाजत चाहेंगे आपसे, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

0: की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए

0: रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप्स

0: यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालन।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से

0: सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए, सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
1: Thank you, Sunil. Prime Minister Narendra Modi's three-nation tour is the top headline in most dailies. India secures landmark uranium deal with Australia, headlines in the Hindustan Times. Three antiquities from Tamil Nadu dating back to 11th and 12th centuries are to finally come home with Australia, writes the Indian Express. Pakistan-occupied Kashmir is on the boil, with the Joint Awami Action Committee pledging to avenge Pakistani atrocities, reports the Asian Age. India Meteorological Department is extensively quoted in dailies on the latest news on monsoon. Monsoon has covered the entire country a day later than normal, announces IMD, is the headline in the Hindu. Deficit falls to 14%, writes the Times of India. And finally, the Pioneer reports that India may soon get a common police uniform after 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government formed seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France stormed into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in 4th T20 International to take 3-0 lead in 5-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुरमई सवेरा सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत की प्यार भरी राम राम। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि हमारे पर्यावरण की रक्षा, उसका अस्तित्व हम कैसे बचा के रखें और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए क्या क्या किया, और सुनते जाएंगे सुमधुर गीत। श्रोताओं, हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण को स्वच्छ व वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कई व्यवहारिक उपाय अपनाए। उन्होंने वनों, पहाड़ों, नदियों, झीलों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के महत्व को भली प्रकार जाना और समझा, और इनका संरक्षण करने के अनेक मार्ग दिए। जैसे अपने आश्रमों में वे गायों की सेवा करते थे, उनका पालन पोषण करते थे, गायों से पर्याप्त मात्रा में जो दूध, दही, घी शुद्ध प्राप्त होता था उसका सेवन करके स्वस्थ रहते थे। तो इन सब बातों से जो हमारे पूर्वज थे वे स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी पा रहे थे। तो चलिए आगे इसी विषय पर और चर्चा करेंगे, पर अब बढ़ते हैं गीत संगीत की तरफ।

श्रोताओ, ऋषि मुनि अपने आश्रमों में फल फूल सब्जियां जरूरी खाद्य पदार्थ आदि स्वयं लगाते थे, जिससे उन्हें न केवल शुद्ध सामग्रियां प्राप्त होती थी बल्कि इनसे वातावरण भी शुद्ध रहता था। उनके आश्रमों के आसपास तरह तरह के पक्षी चहचहाते थे। हिरण, खरगोश, मोर आदि सुंदर पशु पक्षी निर्भीक विचरण करते थे। ऋषि मुनियों की मौजूदगी के कारण शिकारी उनका शिकार नहीं किया करते थे और पेड़ों की अनावश्यक कटाई भी नहीं होती थी, जिससे वातावरण में हमेशा हरियाली बनी रहती थी।

श्रोताओं, नित्य सवेरे उठना, यज्ञ हवन करना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना, ये ऋषि मुनियों की दिनचर्या के अभिन्न अंग थे। इससे वातावरण शुद्ध होता था। पर्यावरण के संरक्षण के लिए उन्होंने नदियों, पहाड़ों, तालाबों, झीलों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधे आदि को दैवीय शक्ति का रूप दिया, और इसीलिए तालाबों को आदि जल स्रोतों की पूजा की जाने लगी एवं नदियों को माता कहा गया। पहाड़ों में शक्तिपीठों की स्थापना होने से उन्हें पूजा जाने लगा। गोवर्धन, कामदगिरी, हिमालय आदि पहाड़ विशेष रूप से पूजनीय, वंदनीय हुए। आज भी इन पहाड़ों की परिक्रमा का महत्व है। हिमालय पर्वत सदैव से ही ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक तप साधना का केंद्र रहा है, और पवित्रता व विशालता का प्रतीक ये पर्वत सदैव से आध्यात्मिक जीवन का प्रेरणा स्रोत रहा है। ऋषि मुनियों ने वातावरण को स्वच्छ करने के लिए आरंभ से ही घरों में तुलसी का पौधा लगाने, इसकी पूजा करने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त पीपल, बरगद, नीम, आम, केला, गुलर, बिल्व, आंवला आदि अनेक तरह के वृक्षों को पूजनीय और उपयोगी बताया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न पर्वों, त्योहारों में इनके पूजन अर्चन की परंपरा को स्थापित किया, ताकि लोग सदैव इन वृक्षों का संरक्षण करें, इन्हें महत्व दें और इनकी उपयोगिता को

तो श्रोताओं, इस विषय से आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या क्या किया, जो हम सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। पशु पक्षियों को महत्व देने के लिए ही देवी देवताओं ने इन्हें अपने वाहनों के रूप में स्वीकारा, जैसे भगवान शिव के वाहन नंदी बैल, भगवान विष्णु के वाहन गरुण, माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू, माता पार्वती के वाहन सिंह, ब्रह्मदेव व माता सरस्वती के वाहन हंस, भगवान गणेश के वाहन मूषक, भगवान कार्तिकेय के वाहन मोर व भगवान यमराज के वाहन भैंसा रूप में बताए गए। नागों को जंतु योनि में ब्राह्मण सबंश मनाया गया और इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपने यज्ञोपवित के रूप में स्वीकारा और भगवान विष्णु ने शेष नाग को अपनी शैया के रूप में अपनाया। नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा इन्हीं मान्यताओं के फलस्वरूप है। उन्हें सदैव अपने साथ जानवरों को रखकर उन्होंने ये बताया कि इनका महत्व भी समाज के लिए और पर्यावरण के लिए कितना ज़रूरी है। समय समय पर हमारे देश ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम उमड़ा है और उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को सदैव अपने मुकुट में धारण किया और गोकुल में रहकर गायों की सेवा करके गोपाल कहलाए।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सो योर प्लेस और माइन।
6: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
5: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
6: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
5: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: श्रोताओं, सुरमई सवेरा इस अंतराल के बाद आप पुनः सुन सकेंगे। यह आकाशवाणी भोपाल है, 8:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत किसानों को एक साल तक हर माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय है, लेकिन तेज बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर सहित एक दर्जन से अधिक जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल रात भारत को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर 5 मैचों की श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: श्रोताओं, हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं और सुनमई सवेरा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के संरक्षण की। श्रोताओं, विदर्भ राजकुमारी दमयंती को हंसों से अत्यंत प्रेम था। उनके महल में हंसों के रहने तथा तैरने के लिए सरोवर बने हुए थे। कई रानियों का मैना पक्षी से अत्यधिक लगाव रहा और भोजपुरी क्षेत्रों में स्त्रियां पहले तोते पालती थीं। कबूतर तो आदिकाल से ही संदेशवाहक के रूप में जाने जाते रहे हैं और लोग इन्हें बड़े स्नेह से पाला करते थे। यही कारण है कि पक्षियों को दाना पानी चुगाने की पुण्य परंपरा हमारे समाज में आदिकाल से चली आ रही है।

श्रोताओ, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों, नदी, पहाड़ों आदि को अपनी विभूतियों के रूप में दर्शाया है और इनके महत्व का प्रतिपादन किया है। आदिकाल से ही हम अपनी संस्कृति में इन धरोहरों को सहेजते आ रहे हैं, फिर अब क्यों इनकी विनाश लीला के साक्षी बन रहे हैं? पेड़ों की कटाई, जंगलों की सफाई, नदियों में प्रदूषण, वातावरण में प्रदूषण, पहाड़ों में भूस्खलन, जलवायु असंतुलन, पशु पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा, इन सब बातों की ओर संकेत करते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की सीख को भुला दिया है। अब हम उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते और इसी का परिणाम है कि आज समस्त मानव जाति गंभीर प्राकृतिक संकटों से गुजर रही है और जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

श्रोताओं, आज जंगलों को बेइंतहा काटा जा रहा है, जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं और जो बचे हैं उनका अस्तित्व भी खतरे में नजर आता है। पहले हमारे ऋषि मुनि वन जंगलों को ही अपने आश्रमों के लिए उपयुक्त समझते थे और जंगलों को समृद्ध करने के लिए हर संभव उपाय करते थे। यदि हमें अपने पर्यावरण और जीवन के अस्तित्व को बचाना है, सहेजना है, तो फिर से अपने जीवन में पशु, पक्षी, वृक्ष व वन प्रेम को विकसित करना होगा। जीवन की सभी कड़ियाँ एक श्रृंखला की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। किसी एक की भी अवमानना करना इस श्रृंखला को तोड़ना है। इसलिए हमें फिर से सभी को अपनाना होगा, अपने पूर्वजों की बातों को समझना होगा, उनका अनुसरण करना होगा और इन सबके अस्तित्व व संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। तभी हम सुरक्षित जीवन जी सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित जीवन और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं।

इस नगमे के साथ ही श्रोताओं, आज का सुरमई सवेरा कार्यक्रम जो फिल्म संगीत पर आधारित था, संपन्न हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से हम सभी की थोड़ी सी जागृति बढ़ी होगी और हम सब सोच पाएंगे इस तरफ कि कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। छोटे छोटे प्रयासों से ये सब आसानी से संभव है। इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार। यह आकाशवाणी भोपाल है। 9:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा।

अहिंसा की कसौटी ही ये है कि अहिंसक संघर्ष में उसके उपरांत कोई विद्वेष बाकी न रहे और शत्रु मित्र बन जाएं। दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स के साथ मेरा यही अनुभव रहा। शुरू में वो मेरे कट्टर विरोधी और आलोचक थे, आज वो मेरे अन्यतम मित्र हैं। समय बदलता है और प्रणालियों का ह्रास हो जाता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंततः केवल अहिंसा और अहिंसा पर आधारित चीजें ही बची रहेंगी। असहयोग यद्यपि सत्याग्रह के शस्त्रागार का मुख्य शस्त्र है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्य और न्याय पर दृढ़ रहते हुए विरोधी का सहयोग प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। अहिंसक विधि का सार ये है कि ये विरोध को समाप्त करने का प्रयास करता है, स्वयं विरोधियों को नहीं। अहिंसक संघर्ष में तुम्हें कुछ हद तक जिस व्यवस्था का तुम विरोध कर रहे हो उसकी परंपरा और रूढ़ियों को मानना पड़ता है, इसलिए विरोधी शक्ति के साथ किसी तरह का संबंध न रखना सत्याग्रही का ध्येय कभी नहीं हो सकता। उसका ध्येय तो उस संबंध का रूपांतरण अथवा शुद्धिकरण है। मैं असहयोग को इतना शक्तिशाली और शुद्ध साधन मानता हूं कि अगर इसका इस्तेमाल सच्ची भावना से किया जाए तो ये पहले ईश्वर के साम्राज्य की कामना करने के समान होगा, जिसके बाद सब कुछ स्वयं प्राप्त होता जाता है। तब लोग अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएंगे। वे अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संयुक्त कार्रवाई, अहिंसा, संगठन आदि उन सभी बातों का मूल्य पहचान पाएंगे जिनसे कोई राष्ट्र महान और अच्छा दोनों बनता है, केवल महान नहीं। असहयोग जैसा शुद्ध, हानि रहित और फिर भी कारगर साधन दूसरा नहीं है। विवेक पूर्वक इस्तेमाल करने पर इसके कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आने चाहिए और इसकी गहनता पूर्णतया लोगों की बलिदान करने की क्षमता पर

निर्भर करेगी। हमने ना कहने की शक्ति खो दी थी। सरकार से ना कहना निष्ठाहीन और प्रायः द्रोहपूर्ण माना जाने लगा था। सहयोग करने से जानबूझकर इनकार करने की ये तकनीक उसी प्रकार की है जैसे कि किसान बुआई से पहले जमीन की निराई करना जरूरी समझता है। कृषि के लिए जितनी जरूरी बुआई है उतनी ही जरूरी निराई भी है। फसल जब बढ़ रही होती है तब भी निराई की खुरपी किसान के दैनंदिन प्रयोग की चीज होती है। राष्ट्र का असहयोग राष्ट्र की शर्तों पर सरकार से सहयोग करने का निमंत्रण है, जो कि प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार और प्रत्येक अच्छी सरकार का कर्तव्य है। असहयोग राष्ट्र की ओर से चेतावनी है कि वो सरकार की प्रतिपाल्यता से संतुष्ट नहीं है। अहिंसक असहयोग आंदोलन और पश्चिम के ऐतिहासिक स्वाधीनता संघर्षों के बीच कोई साम्य नहीं है। ये पशुबल या घृणा पर आधारित नहीं है। इसका ध्येय अत्याचारी का सफाया करना नहीं है। ये आत्मशुद्धिकरण का आंदोलन है। अतः इसका उद्देश्य अत्याचारी का हृदय परिवर्तन है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
1: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता है।
0: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल।
2: श्रोताओं एक सूचना, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

अगला गीत अजनबी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ।
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना, कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ।
0: फिर ना कभी कहना दे।

अगला गीत नरेंद्र चंचल की आवाज में बेनाम फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को शुरू में पिरोया है राहुल देव वर्मन ने।

आकाशवाणी भोपाल से इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ सीता और गीता फिल्म का ये नगमा, आनंद बख्शी का गीत और आर डी बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुनिए हीरा पन्ना फिल्म का ये नगमा, आनंद बख्शी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा नरेंद्र चंचल की आवाज़ में बेनाम फिल्म से, मसरूर सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता का और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मालवा की पहचान उसकी ठंडी हवाओं और सामान्य मौसम से रही है, लेकिन इस बार देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा झुलसाती गर्मी, आंधी और तूफान के बीच आसमान की तरफ टकटकी लगाए ही बिताया था। लेकिन आखिरकार मानसून की आमद ने अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का रुख अलग अलग रहा है। अब तक देवास में कुल 303 मिलीमीटर, वहीं टोंक खुर्द में 433, सोनकक्ष और हाट पिपलिया में 476 और 482 तथा बागली में 435 और उदयनगर में 445 तथा खातेगांव में सबसे अधिक 762 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष जिले में लगभग 4,20,000 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। खातेगांव, कन्नौद और बागली जैसे क्षेत्रों में हर साल नर्मदा, क्षिप्रा, बागदी और काली सिंध तथा लोदरी जैसी नदियों में उफान आने से बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित कर बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। श्रोताओं, आने वाले वर्षों में मालवा क्षेत्र में संभावित पेयजल संकट को भांपते हुए देवास जिले में एक अनूठा अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा जल को सहेजने के इस अभियान के तहत घरों की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी पाइप के जरिए सीधे धरती के गर्भ में उतारा जा सके। ये अभियान हमारे कल को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य के मोर्चे की अगर बात करें तो इन दिनों जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 तक डेंगू निरोधक माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर समझा रहे हैं कि डेंगू के मच्छर घरों के अंडरग्राउंड वाटर टैंक और टायरों के जमा पानी में ज्यादा पनपते हैं, इसलिए इनकी नियमित सफाई बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर पशुपालकों की समृद्धि के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तीसरे चरण में विभागीय अमला उन पशुपालकों के घर घर पहुंच रहा है जिनके पास 3 से 4 गोवंश या भैंस वंश हैं। अधिकारी उन्हें नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सॉर्टेड सीमेन जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जिले में पल्स पोलियो अभियान भी पूरी तरह सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 1800 बूथों के माध्यम से 1,84,645 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई हैं। ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ देवास की ग्राम पंचायत अगेरा में बीते दिनों एक भव्य जन सम्मेलन के माध्यम से किया गया, जहां ग्रामीणों को उनके अधिकारों और योजना के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार खेत बचाओ अभियान के तहत पालनगर और नागदा ग्राम पंचायतों में कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने, संतुलित उर्वरक उपयोग और कीट व्याधियों से फसलों को बचाने के गुर सिखाए गए। सामाजिक सरोकारों की अगर बात करें तो देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाक बाधित

भाई बहनों के लिए प्रदेशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम के तहत अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेषज्ञों द्वारा सांकेतिक भाषा व अन्य माध्यमों से जागरूक किया गया। पिछले दिनों उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित दो दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व स्मृति संगीत समारोह में सुरों की अनूठी महफिल सजी। समारोह में पुणे की सानिया पाटणकर, इंदौर की पूर्वी निमगांवकर, दिल्ली के अविनाश कुमार के शास्त्रीय गायन और अतुल उपाध्याय व पंडित विवेक सोनार की वायलिन बांसुरी की जुगलबंदी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चलते चलते आपको बता दें कि देवास में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भी सम्पन्न हुई। वहीं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देवास प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत एक मिसाल बन रहा है। जिले के 3756 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल जगमगा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की बिजली खपत में कुल 10 लाख यूनिट की कमी आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 42 किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए PPA जारी किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में 73.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो श्रोताओं, ये थी देवास जिले की हलचल समेटे आज की जिले की चिट्ठी। अगले अंक में किसी और

1756 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल जगमगा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की बिजली खपत में कुल 10 लाख यूनिट की कमी आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 42 किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए पीपीए जारी किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में 73.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो श्रोताओं, ये थी देवास जिले की हलचल समेटे आज की जिले की चिट्ठी। अगले अंक में किसी और जिले की जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचक स्वर था अभिषेक कटियार का। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला संसार।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को दिव्या का प्यार भरा नमस्कार। हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सकी बात करें में आप फोन नंबर 2660902 पर बात कर सकती हैं और सुन सकती हैं अपनी पसंद के गीत। 2660902 नंबर के पहले 0755 STD कोड लगाना मत भूलिएगा। तो एक सखी मेरे साथ में है तो उनसे बात करते हैं। हेलो सखी।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से।
0: नंदिनी कौन सा गीत सुनेंगी
1: आज? सॉन्ग सुनूंगी मैं, कौन सा सुनूंगी?
0: कौन सा गीत सुनेंगी? जी जी बताएं।
1: मूवी का नाम है मुस्कान।
0: मुस्कान फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मुस्कान फिल्म का जाने मन चुपके चुपके।
0: जाने मन चुपके चुपके। आप अपने रेडियो सेट से थोड़ा दूर जाएं नंदिनी, आपकी आवाज़ इको हो रही है तो हम तक आपकी सही तरीके से आवाज़। हाँ, कौन सा गीत बताया एक बार फिर से बताएं?
1: मुस्कान मूवी का।
0: हाँ, मुस्कान मूवी का कौन सा गीत?
1: जाने मन चुपके चुपके।
0: जाने मन चुपके चुपके पूरा ठीक है, देखते हैं आपका
1: ये गीत।
0: नहीं, देखते हैं अगर यही मिल जाता है तो आपकी पहली पसंद है तो इसको ही सुनवाते हैं
1: जी।
0: नन्नी सुनी,
1: कैसी हैं मैम?
0: हम अच्छे हैं नन्नी, और बताइए आप सोशल मीडिया उपयोग करती हैं?
1: जी
0: सोशल मीडिया का उपयोग करती
1: जी,
0: हैं अपने
1: जीवन करते हैं, हम नहीं चलाते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद ही कह दिया कि आप कम करती हैं, और यही आज का विषय है हमारा कि सोशल मीडिया के साथ हमारा कैसा समन्वय होता है ना, और इसका उपयोग हमें कितना करना चाहिए और किस लिमिट में करना चाहिए।
1: बिल्कुल कम करना चाहिए जितना हो सके।
0: जी जी, तो चलिए आपके पसंद का गीत भी तैयार है। जी,
1: ये गाना डेडिकेट आपको, रानू दीदी को और कविता मैम को रहेगा।
0: चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनिए अब अपनी पसंद का गीत अपने रेडियो सेट पर।
1: ओके मैम, नमस्ते, बाय।

0: आओ सखी बात करें, आप सुन रही हैं और आप इसमें फ़ोन लगा सकती हैं 2660902 नंबर पर। इसके साथ ही आप STD कोड 0755 लगाकर 2660902 नंबर डायल करके सुन सकती हैं अपनी पसंद के गीत। एक सखी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू, बता दें सबसे पहले तो अपनी पसंद बताएं, फिर बात करें।
1: मूवी का नाम है सत्या और गाने के बोले सपने में मिलती है वो कुड़ी।
0: सत्या फिल्म का सपने में मिलती है
1: जी।
0: ठीक है रानू जी, देखते हैं आपकी पसंद का ये गीत और सुनवाते
1: और
0: हैं।
1: मैम आपके क्या हाल चाल है?
0: मेरे ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल चाल है?
1: हम भी बढ़िया हैं, बस प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: देखिए आज के कार्यक्रम में हम अपनी सखियों से जानना चाह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया का अपने जीवन में दखल हो रहा है, इसका डिटॉक्स कैसे किया जाए, मतलब इससे दूरी कैसे बनाई जाए जिससे हम थोड़े रिलैक्स हो सकें, अपने कामों को सही तरीके से कर सकें।
1: मैम मैं देखो आजकल का जमाना तो ऐसा है कि सोशल मीडिया से कुछ फायदे भी हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बट हमें ना

0: सावधानी बरतनी है, जितनी हमें जरूरत लगे ना उतना ही सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं। फैमिली को भी वक्त देना चाहिए,
1: जी जी बिल्कुल।
0: उसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो, और घर में काम पड़ा हुआ है कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो ये सब नहीं, वो सब
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए हमें टाइम फिक्स करना चाहिए और उतना ही टाइम देना चाहिए जिससे कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य अच्छे रहें और हम सही तरीके से काम कर सकें।
0: डेडिकेट आपको, नंदिनी को, नंदिनी के पापा शिव नारायण जी, रश्मि तिवारी और मेरे हस्बैंड को रहेगा।
1: चलिए सभी लोग सुन रहे हैं अभी अभी सभी लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो सभी को ये गीत पसंद आए, इस आशा के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: ओके, नमस्ते।

0: हेलो हेलो सखी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं? हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं सोनिया बोल रही हूँ, कानपुर से।
0: कानपुर से सोनिया बोल रही हैं, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैडम गाने के बोल हैं कभी खुशी कभी गम।
0: कभी खुशी कभी गम का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
1: नहीं मैम, मुझे ये वाला सुनना है, बोले चूड़िया बोले कंगना।
0: बोले चूड़िया बोले कंगना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा गीत है और बहुत अच्छी पसंद है आपकी। सोनिया जी, बात कर रहे थे हम सोशल मीडिया का अपने जीवन में उपयोग में किस तरीके से करना चाहिए कि जिससे हमारी सोशल मीडिया से हम जुड़े भी रहें और मानसिक और शारीरिक हेल्थ या घर परिवार की जो भी डिस्टरबेंस होती है वो ना हो। आप किस तरीके से करती हैं?
1: मेरे यहाँ तो हम लोग तो खेती बाड़ी वाले हैं, तो हमारे यहाँ तो मतलब ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं।
0: हाँ, पर कभी कभी जरूरत होती होगी तब तो जरूर करते होंगे।
1: कभी कभी करते हैं, बाकी एनी टाइम नहीं करते।
0: चलिए, तो आपकी पसंद का गीत भी तैयार है सोनिया जी, तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सखी।
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते। कौन बोल रही हैं? कौन बोल रही हैं?
1: रश्मि तिवारी।
0: रश्मि जी, कौन सा गीत सुनेंगी और कहाँ से बोल रही हैं?
1: बांद्री से।
0: बांद्री से?
1: हाँ।
0: कौन सा गीत सुनेंगी, किस फिल्म का?
1: फकीरा
0: मूवी का। फकीरा मूवी का कौन सा गीत सुनेंगी?
1: तोता मैना की कहानी।
0: तोता मैना की कहानी, बहुत अच्छा सा गीत है ये। और रश्मि जी, कैसा मौसम है आपके यहाँ का?
1: अभी तो सही चल रहा है मौसम, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कहीं खुशबू भी आ जाती है, कहीं तेज भी आ जाता है।
0: चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आप अपने यहाँ के मौसम को एंजॉय कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: आपको भी जय दीजिए।
0: चलिए जी, धन्यवाद।
1: सुन रहे हैं उनको भी जय दीजिए।
0: बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और सुनिए अब आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सखी, हेलो। लगता है कि संपर्क टूट गया है हमारा और फिर से उनसे जुड़ गया है। हेलो सखी। हेलो जी, नमस्ते। कौन बोल रही हैं?
1: हेलो
0: कौन बोल रही हैं? हेलो,
1: आरती।
0: आप अपना नाम बताएं। पीछे से कोई आपको कर रहा है बात करने के लिए बोल रहा है। चलिए, अपनी पसंद बताइए, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: साजन मूवी का तुमसे
0: साजन मूवी का कौन सा गीत?
1: मिलने की तमन्ना।
0: तुमसे मिलने की तमन्ना है। चलिए, हम कोशिश करते हैं जल्दी से आपका गीत आपको सुनवा सकें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी लगभग पूर्ण होने को है। तो लीजिए, तैयार है आपकी पसंद का ये गीत, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला संसार। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, जिसमें आज आप सुनेंगे अमरीश कालेले का गिटार पर बजाया राग शुद्ध कल्याण।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे अम्बरीश कालेले का गिटार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब चार दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन

0: ब्यावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2 वर्ष में पूर्ण होगी, जिससे लगभग 35 लाख की आबादी और 62 गाँव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है और ये ईंधन केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 1 साल तक हर माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये बादल, ये बिजली, ये बारिश का मौसम, ये रिमझिम फुहारें, ये बूंदों की छमछम, ये सिसकी सी भरती बोझिल हवाएं, ये शाखों के पत्तों पे ठहरी सी शबनम। बारिश के इस सुहावने मौसम में स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। हमसे जुड़ने के लिए हमें कॉल करें, हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। आपके फोन्स का हमें है इंतजार। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
2: मैं सुनील कुमार खरे।
1: सुनील जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
2: इंदौर से।
1: इंदौर से क्या करते हैं सुनील जी?
2: मैं टीचर था।
1: अच्छा, तो रिटायर हो गए हैं आप?
2: हाँ।
1: तो ये दूसरी पारी आपकी कैसी चल रही है?
2: ठीक चल रही है, बढ़िया मौज मस्ती।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपनी दूसरी पारी में एंजॉय कर रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, कुछ बताएंगे आप?
2: हाँ, हमारे परिवार में बच्ची है, बच्चा है
1: जी,
2: और पत्नी के लाइन बस बच्ची की शादी हो गई है, बच्चा सर्विस करता है।
1: अच्छा, और आपकी धर्म पत्नी?
2: वो भी मैं टीचर रही, वो भी रिटायर्ड हो गई।
1: वाह, दोनों शिक्षक हैं घर में, तो बहुत डिसिप्लिन का माहौल होगा आपके घर में।
2: हाँ, लगभग लगभग।
1: आज क्या सुनना चाहते हैं सुनील जी?
2: मैं अपना मनपसंद गाना वो साथ ही रे मुकद्दर के सिकंदर का सुनना चाहता हूँ। सुनता रहा मैं हमेशा आपका ये कार्यक्रम, लेकिन पहली बार मैंने कॉल लगाया।
1: आज आपने पहली बार कॉल लगाया और आपका कॉल लग गया सुनील जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: राहुल ध्रुवे बात कर रहा था।
0: राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मध्य प्रदेश सिवनी।
0: सिवनी से। राहुल जी, बारिश का मौसम चल रहा है।
1: हाँ, अभी मतलब रिमझिम बारिश हो रही है। अभी दो या तीन दिन पहले काफी तेज हुई थी, अभी तो कम हो रही रिमझिम, कभी धूप भी निकल जाती है।
0: जी, क्या करते हैं आप राहुल जी?
1: लेजी पर जॉब करता हूँ।
0: जॉब करते हैं तो अभी ऑफिस में हैं या घर में हैं?
1: अभी मेरा मतलब जो टाइमिंग है वो 1 बजे से जाने का।
0: अच्छा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जाने अनजाने का रहेगा इसमें, पिया पिया ओ पिया पिया तू चांद है पूनम का।
0: जाने तमन्ना का गीत है ये, पिया पिया ओ पिया।
1: हाँ, उदित नारायण की आवाज है ना।
0: जी जी
1: मैम, आज किससे बात हो पा रही है मेरी?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मैम, दोस्त का नाम ले सकता हूँ क्या?
0: हाँ जी, बिल्कुल लीजिए।
1: मध्य प्रदेश सागर से रहेंगे नितिन कटारे और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: जी, तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद पर अपने दोस्तों के साथ ये गीत। नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी आपको और धन्यवाद भी आपको। मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या कर रहे हैं इस समय आप बाबू यादव जी?
1: दीदी मैं दुकान पर हूँ इस समय, और मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है। बरसात हो, अभी साफ सुबह बारिश हुई थी
0: जी,
1: तो मौसम बढ़िया हुआ है।
0: तो मतलब एक साथ दोनों काम कर रहे हैं आप, दुकान भी संभाल रहे हैं और फोन इन प्रोग्राम में आपने कॉल भी लगा लिया।
1: हाँ दीदी, टाइम मिल गया था तो हमने कहा फोन लगा लें आपको।
0: देखिए, अपनी पसंद की जो बात होती है ना, उसके लिए इंसान वक्त निकाल ही लेता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम निकालना पड़ता है
0: जी, निकालना पड़ता है और निकल जाता है। और देखिए, आपने इतने शिद्दत से याद किया और फोन लगाया कि आपका फोन लग गया।
1: जी
0: जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: दीदी देखिए, मौसम बढ़िया है तो हमको एक गाना सुनवा दीजिए।
0: जी बताइए।
1: इसमें जुर्माना का है, वो गाना है ना, सावन के झूले पड़े हैं तुम चले आओ, कहे लता जी ने गाया हुआ है, और बहुत खूबसूरत मौसम के हिसाब से।
0: जी, और सावन का महीना आने ही वाला है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी अगर इजाजत है तो दो लाइनें भी कहना चाहूँगा।
0: जी बिल्कुल।
1: कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा नाम शमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ।
0: वाह
1: दीदी, ये कुमार विश्वास जी ने हमारे शहर के बारे में कहा था।
0: अच्छा, तो आपको कविताओं का शौक है?
1: जी जी जी, कविताओं और शेर व शायरी का शौक रखते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लीजिए सुनिए बाबू यादव जी अपनी पसंद पर फिल्म जुर्माना का ये खूबसूरत गीत।
1: नमस्कार दीदी आपको।
0: नमस्ते।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, क्या हाल चाल है?
0: सब बढ़िया। कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: बढ़िया है, चकाचक।
0: बात हमारी किन से हो रही है?
1: मनोज गुप्ता बागली।
0: मनोज गुप्ता जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बढ़िया है।
0: क्या कर रहे हैं इस समय मनोज जी?
1: दुकान में बैठा था मैम, फिर
0: अच्छा,
1: फोन ट्राई करा तो फोन लग गया।
0: बहुत बढ़िया। दुकान के साथ साथ आपने फोन मिलाया और आपका फोन लग गया, ये बहुत अच्छी बात है।
1: आप गाना सुना दीजिए मेरे को, फिल्म सुहाग का, अमिताभ बच्चन वाली।
0: फिल्म सुहाग का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कोई भी अच्छा सा सुना दीजिए।
0: ठीक है, तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सुहाग का ये गीत।
1: ठीक
0: नमस्कार।
1: है मैम, थैंक यू।

0: जीनत परवीन
1: जीनत जी, कैसी हैं आप?
0: जी। अच्छी हूँ मैम, बस
1: क्या कर रही हैं?
0: पेपर पढ़ रही थी और फोन ट्राई कर रही थी। मौसम
1: कैसा है मौसम वहाँ इंदौर में जीनत जी?
0: बादल हो रहे हैं, बारिश का इंतजार है। कल भी चले गए यहाँ से बादल तो
1: अच्छा, तो बारिश नहीं हुई,
0: जी, बारिश तो नहीं हुई जी।
1: बस पहुँच ही रही होगी आप तक। तो लुत्फ़ उठाइए इस खूबसूरत मौसम का और बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप।
0: पिक्चर है ना,
1: जी
0: बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी पिघल के आ, वो वाला।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया आपने ये गीत। परिवार में कौन कौन है जीनत जी?
0: परिवार में तीन बच्चे हैं, 21 साल के, 16 साल के और 13 साल के बेटे हैं तीनों।
1: पढ़ाई चल रही है तीनों की?
0: एक तो पापा के साथ जाते हैं, जॉब पे है, और दो पढ़ाई
1: दो पढ़ाई कर रहे हैं। तो
0: जी।
1: आपका आपका समय कैसे निकलता है दिन में?
0: समय काम निकाल के रेडियो तो चलते ही रहता है दिन भर, और थोड़ी देर अपने रेस्ट करती हूँ और गाने सुनती रहती हूँ। मम्मी का नाम लेना चाहूंगी, बहनों का,
1: जी
0: मंदसौर में रहती हूँ
1: जी बोलिए।
0: जी। नूर भी है, अंजुम बाजी, गजाला, शम्मी, शाइस्ता, बुशरा, रुखसाना, रोशन, ये बहने हैं जी, ये भी सुनती हैं।
1: बढ़िया, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपने मनपसंद गीत कार्यक्रम।
0: जी
1: फोन करें गीत सुनने में। आपने
0: जी
1: हमसे बात
0: शुक्रिया
1: की,
0: मैम।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। किनसे बात हो रही है हमारी?
1: मैडम जी, मैं गोपाल रोजा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: गोपाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, बारिश हो रही है, अभी तो 8 दिन हुआ है बारिश हुई थी बदली।
0: अच्छा, तो बारिश में परेशानी हो रही है या अच्छा लग रहा है?
1: परेशानी है क्योंकि मक्का लगा रखी है अभी तो, क्योंकि बारिश अभी हो रही है हमारे इधर।
0: परिवार में कौन कौन है आपके गोपाल जी?
1: परिवार में मम्मी पापा हैं, भाई बहन सभी हैं, यही रहते हैं, मम्मी पापा के साथ ही रहते
0: जी,
1: हैं।
0: संयुक्त तो परिवार है।
1: जी, भोपाल का मौसम कैसा है?
0: भोपाल का भी बहुत बढ़िया मौसम है।
1: जी, आपके कार्यक्रम सुनते हैं हम आकाश।
0: आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन कौन से हैं? क्या सुनना पसंद करते हैं आप?
1: जी, बाकी समाचार वगैरह, फिल्म संगीत, हेलो फरमाइश सभी सुनते हैं,
0: अच्छा, मतलब रेडियो आपका चलता रहता है।
1: चलता रहता है हमारा तो रेडियो, तो ये मान लीजिए विविध भारती से भी जुड़ते हैं, विविध भारती कार्यक्रम भी सुनते हैं।
0: देखिए, ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है ना जिसमें जुड़ने से कोई परेशानी नहीं होती है, हमारा काम
1: जी
0: नहीं रुकता है, काम के साथ साथ हम अपना मनोरंजन भी करते रहते हैं, जानकारियाँ भी हमें मिलती रहती हैं। तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं गोपाल जी?
1: जे वाला सुनवा दीजिए, एक राजा इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, उतना रन का इनकी आवाज में ना।
0: तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। नमस्ते।

0: जोकर
1: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते
2: जी मैडम। नमस्ते
1: नमस्ते, किन से बात हो रही है हमारी?
2: नीरज उपाध्याय अनूपपुर से।
1: नीरज उपाध्याय जी अनूपपुर से
2: जी।
1: कैसे हैं नीरज जी?
2: बढ़िया मैम, बारिश का आनंद ले रहे हैं। मानसून सक्रिय हो चुका हमारे अनूपपुर में, बारिश हो रही है हमारे यहाँ
1: जी। क्या करते हैं नीरज जी?
2: मैं मैम हो गया ये प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
1: बहुत बढ़िया, सुरक्षा का कार्य आप करते हैं
2: गोल माइंस का क्षेत्र है अपना
1: जी। तो इसमें तो शिफ्ट होती होंगी नीरज जी, शिफ्ट
2: जी।
1: वाइज होता होगा आपका काम?
2: हाँ तीनों शिफ्ट रहती है, नाइट में रहती है।
1: अच्छा, तो मैनेज हो जाता है बढ़िया से?
2: हाँ मैम हो गया, मैनेज करना पड़ता है।
1: जी
2: क्या है बच्चे को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो उनको भी उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है इस समय, तो उसके हिसाब से अपना ड्यूटी भी करना पड़ता है
1: जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नीरज जी। अब अपनी
2: जी।
1: पसंद बताइए, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
2: मैम किशोर कुमार की आवाज पे गाना है रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए बाल, वही मैडम सुना दीजिए गाना
1: जी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत। नमस्ते
2: नमस्ते।

0: आप कैसी हैं?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या कर रही हैं इस समय नंदिनी जी?
0: इस समय मैं बस बैठी थी और कॉल ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा बस आपसे बात कर ली जाए थोड़ी सी,
1: बहुत अच्छा, और आपका कॉल लग भी गया।
0: क्योंकि
1: नंदिनी जी, परिवार में कौन कौन है आपके?
0: हमारी मम्मी है, पापा हैं, दो भाई हैं।
1: समय कैसे निकालती हैं आप अपना दिन का?
0: दिन का समय देखो, जैसे कि हम जैसे आप ये है लाइव प्रोग्राम आता है वो सुन लेते हैं, और क्रिकेट देखती हूँ और मूवीज वगैरह भी देखती हूँ मैं।
1: अच्छा, मूवीज का शौक है आपको,
0: जी
1: खेल का भी शौक है,
0: जी
1: देखना पसंद है या खेलती भी हैं?
0: खेलते भी हैं और मम्मी लोग के साथ भी थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं, और उनके साथ भी ऐसे कोई गेम मतलब रहती है तो उनके साथ भी बैठ के खेलते रहते हैं।
1: घर के कामकाज में मदद करती हैं?
0: जी, तो वैसे काम रहता है खाने का, तो खाना भी बनाते हैं।
1: तो
0: जी,
1: आज क्या सुनना चाहती हैं नंदिनी जी?
0: आज मूवी का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम, टाइटल
1: हम तुम्हारे हैं सनम मूवी का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप? टाइटल सॉन्ग।
0: जी, और डेडिकेट आपको करूंगी और कविता मैम को करूंगी और रानू दीदी को। जी,
1: इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं जानती हैं?
0: शाहरुख खान है, सलमान खान है, माधुरी दीक्षित है।
1: ये इसने प्रूव कर दिया कि आपको फिल्मों का शौक है। ठीक है
0: जी,
1: नंदिनी
0: अब
1: जी, आपसे
0: मूवी
1: बात
0: देखते
1: करके
0: हैं।
1: बहुत अच्छा लगा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत।
0: ओके मैम, नमस्ते, बाय।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है?
0: नमस्ते मैम, मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से।
1: नमस्ते नंदिनी जी, कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें कि सुने। ये आकाशवाणी भोपाल है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का दौरा किया। यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में खेल कूटनीति की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब 4 दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह विभाग द्वारा पद्म पुरस्कार वर्ष 2027 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण एवं उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक योग्य व्यक्ति अपना नामांकन जिला कलेक्टर के माध्यम से 15 जुलाई तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उपयोग भी किया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E85 ईंधन E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। E85 ईंधन केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 2:30 बजे से मेज़बान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलेगी। ये लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं नाराज फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे एक आवाज दी है कुमार सानू ने, बोल हैं कतील शिफाई के और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अकोला से आशा संतानी, श्यामली संतानी, नैन्सी संतानी, संतानी साखिया, और पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्विंसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बोक और पूरा खेड़ा परिवार। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और महाराष्ट्र से अभिजीत गहाणकर, सरिता गहाणकर, सिद्धांत गहाणकर, प्रिंस एकांश गहाणकर, सुखी शैलेश गहाणकर, नागपुर से वैशाली, श्वेता सुमित और कौमी धोनी गहाणकर। हमारे इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म मोहरा के इस गीत को सुनने की, जिसे आवाज़ दी है पंकज उधास और साधना सरगम ने। इंदिवर के बोल हैं और संगीत विजू शाह का।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ। बोल है फैज अनवर की, फिल्म का नाम है इम्तिहान और खूबसूरत आवाज़ें कुमार सानू और बेला की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा धनतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मितेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और इसी गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोतले और आरती जोतले। तो सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सलामी फिल्म का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में। बोल हैं मदन पाल के और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, जीशान वारसी बरेली से और करुला मुरादाबाद से, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, और एक और पत्र हमें मिला है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का।

0: सलामी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है, ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
1: तुम्हें

0: पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
0: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आपको सूचना दे दें, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय या फिर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अस्पष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैनमस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने या फिर संबंधित सदस्य को ऐसा करने के रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा, भेदभाव फैलाने वाली संदेशों के प्रसारण को प्रसारित नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों या फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री की लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी आप बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित या विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस या फिर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है का नवा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। भाई वाह, अपनी खीसे निपोरते आपको कुछ सुनाने मेरे पास खड़े हैं विनय जैन।
1: एक साहब हमेशा अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बड़े विलंब से पहुंचा करते थे, हमेशा देर से आया करते थे, और हमेशा देर से आने के कारण उनका, उनके ऑफिस में ऐसा रिकॉर्ड बन गया था कि ये साहब हमेशा देर से आते हैं। उनका कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से प्रारंभ होता था और उसके बाद शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी का समय हुआ करता था, लेकिन वो हमेशा 10 की जगह कभी 10:30, तो कभी 11, तो कभी 11:30, तो कभी 12:15, तो कभी 12-12 बजे तक लगातार ऑफिस पहुंचा करते थे। और छुट्टी होने का समय 5 बजे ठीक एक्यूरेट हुआ करता था, बिल्कुल ठीक समय 5 बजे ऑफिस छूटने का समय। इसके लिए वो, उनकी अगर रिपोर्ट देखी जाती तो वो कभी ऑफिस से 4 बजे ही निकल जाते थे, कभी 3:30 बजे ही गायब, कभी 3 बजे ही ऑफिस से वापस। तो ये देख के बहुत लगातार काफ़ी दिनों से विलंब से आने के कारण और देर से आने के कारण उनके बॉस ने, उनके जो बड़े साहब हैं, उन्होंने उन्हें तलब किया और उसे अपने पास बुलाया और बोला, रामलाल आज आप दफ्तर लेट आए थे। जी हाँ साहब, थोड़ा लेट हो गया था। वो क्या कि थोड़ा सा वो लेट हो गया था साहब, बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ हाँ ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम कल भी लेट आए थे। हाँ साहब, वो लेट हो गया था, क्या कि वो लगातार मैं लेट आ जरूर हो रहा हूँ, लेकिन क्या कि मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, परिवार बाल बच्चों में फंस जाता हूँ साहब। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लगातार 15 दिन से रोज़ लेट आते हो। तुम्हारा 10 बजे ऑफिस का टाइम है, कभी 11 आते हो, कभी 11:30, कभी 12:15, 12-12 बजे तक ऑफिस आए हैं आप, और जाने का समय 5 बजे, तो कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2:30-2:30 बजे तक गए हो, दोनों टाइम लेट होते हो। बोले साहब, क्या है कि दोनों टाइम लेट होना जमता नहीं है, इसलिए शुरू से जल्दी आता हूँ, बाद में पहले चला जाता हूँ। एक छोटा बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुँचा और बोला, बच्चे जब बुजुर्गों से बात करते हैं और बुजुर्ग जब बच्चों से बात करते हैं तो किस तरह की हंसने हंसाने की बातें बन जाया करती हैं, वही बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुँचा और बोला, दादी दादी है ना, दादी है ना, तुम ना टें बोलो टें। अब बुजुर्ग लोग अगर बच्चों से बात करेंगे तो मूड ठीक है तो ठीक है, और अगर मूड ठीक नहीं है तो वो डांट भी दिया करते हैं। तो दादी माँ फौरन बच्चे से बोलती हैं, नहीं बोलते जाओ, हमारे टें बोलने से क्या होगा बेटा।
2: है ना दादी, तुम ना टें बोलोगी ना तो ना बड़े भैया की शादी हो जाएगी।
3: शादी हो जाएगी बेटा, तेरे से ये कौन ने कहा कि बड़े भैया की शादी हो जाएगी।
2: है ना दादी है ना, कल ना बाबू कह रहे थे अम्मा से कि जो दिन ना मुन्ना की दादी टें बोल जाएगी उस दिन ना बड़े भैया की शादी कर देंगे।
1: गाँव गाँव गली गली लोगों को सरकार की तरफ से ये पढ़ाया जाने लगा, सिखाया जाने लगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। ये व्यंग आपके लिए विशेष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जैसे ही गांव के लोगों ने पढ़ना शुरू किया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, किसी गांव वाले की कोई समझ में ज़्यादा नहीं आया, एक गांव वाला शिक्षा विभाग के एक नुमाइंदे के पास पहुँचा और बोला,
4: साहब जी क्या बात है, साहब जी ये गांव वाले हैं जे ऐसे नहीं समझेंगे, बेक समझ ही नहीं रहे फार एप्पल भी फार बाल।
1: नहीं समझ रहे तो क्या समझेंगे।
4: अब ऐसा है साहब जी, भी समझेंगे, ए फार अन्नू की घरवाली, बी फार बउआ की घरवाली, सी फार चंदू की घरवाली, डी फार डब्बू की घरवाली, वे ऐसे समझ हैं।
3: अच्छा ऐसे समझेंगे।
4: हाँ साहब, वे गाँव आ रहे ना, वे ऐसे ही समझ हैं, ऐसे नहीं समझ हैं। शिक्षा विभाग के नुमाइंदों ने उसे उसी तरह मीडिया बनाकर लोगों को प्रचार करना शुरू किया, ए फार अन्नू की घरवाली, बी फार बउआ की घरवाली, सी फार चंदू की घरवाली, डी फार डब्बू की घरवाली। लोग पढ़ने लगे और लोग समझने लगे। गांव में 99% लोग शिक्षित हो गए कि लोग साहब इस बात लाभ लेने लगे। शिक्षा विभाग का जो ये प्रयास था ये सार्थक सिद्ध हुआ और आसपास के गांव वाले भी वहां पढ़ने आने लगे, काफ़ी लोग शिक्षित होने लगे। शिक्षा विभाग तक खबर पहुँच गई कि फला गाँव में 99% लोग शिक्षित हैं। तो एक अधिकारी वहां से भेजे गए जो कि ये मुआयना करने आए कि अगर ये बात सत्य है कि शिक्षा विभाग में

0: यहाँ पर इस गांव में इतना कयामत करके दिखाया है और यहाँ के लोग शिक्षित हुए हैं, तो एक शिक्षा केंद्र यहाँ खोल दिया जाए और आसपास के 40 गांव में 40 ब्रांच डाल दी जाए। एक बड़े साहब आ गए और एक साहब को खड़ा करके ब्लैक बोर्ड में सी लिख दिया और बोला कि बताइए दादाजी ये क्या लिखा है। दादाजी फौरन बोले, अब बेटा जय सी लिखो है सी फार चंदू की घर बारी। एक माताराम 60-65 साल की बैठी थी, उनको बोला माताराम पढ़े लिखी हो?
1: अब बेटा पढ़े पढ़े है लिखे तो नहीं है।
0: ठीक है पढ़ी पढ़ी हो तो कम से कम पढ़ के तो बता सकती हो क्या लिखो है।
1: हाँ भैया थोड़ी बहुत तो बता ही सकत है।
0: ब्लैक बोर्ड में डी लिख दिया, बोला बताओ माता जी ये क्या लिखा है। माता जी फौरन बोली,
1: हाँ बेटा या डी लिखो है डी फार डब्बू की घर बारी।
0: एक दादा 60 साल की लगभग उम्र के चश्मा लगाए बैठे थे, ब्लैक बोर्ड में बड़े साहब ने डब्लू लिख दिया और दादा से बोला डब्लू दिखा के कि दादा जे बताओ जे का लिखा है। अब डब्लू देख के दादा चमक गए, चश्मा उतारा फिर लगाए उतारा फिर लगाए, 2 सेकंड बाद फौरन जवाब दिया दादाजी ने,
2: बेटा ये देखा तो मुन्ना की घरवारी रही है मगर जा समझ में नहीं आ रहा कि जो उल्टी का है ठाणी।
3: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक छोटे से प्यारे से गांव में एक अदालत नाम का नाटक खेला जाना था। सभी गांव वालों ने अभ्यास किया 1-2 महीने, तो अदालत नाम उस नाटक का रख दिया गया। उसमें मुख्य कलाकार का जो रोल था वो था वकील का, लेकिन जो वकील का रोल कर रहे थे वो वास्तव में वकील थे नहीं, वो तो एक छोटी सी किराने की दुकान के मालिक थे। तो साहब प्रैक्टिस हुई, 26 तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 26 तारीख की शाम को 7:30 बजे ये अदालत नाम का नाटक खेला जाएगा रामलीला के मैदान में। चलिए ठीक है साहब, सभी लोगों को मालूम हो गया कि अदालत नाम का नाटक खेला जाना है। अब 25 तारीख आ गई, दिन भर अभ्यास हुआ, 25 की रात भर अभ्यास हुआ, अभ्यास ही अभ्यास। जो कलाकार वकील का रोल कर रहे थे वो किराने वाले, उनकी सास की डेथ हो जाती है, प्राणांत हो जाता है उनका, अब क्या किया जाए। शाम को नाटक है, सुबह घर में ये नाटक हो गया, तो जो कलाकार थे जो वकील का रोल कर रहे थे उन्होंने डायरेक्टर महोदय को यानी उस अदालत नाम के नाटक के डायरेक्टर महोदय को समझा दिया कि साहब ऐसा है हमारी सास की तो डेथ हो गई है, हम तो आ ना पाएंगे, तो आप एक काम करिएगा कि एक कलाकार की आवश्यकता कहीं से आपको पड़ेगी, उसकी व्यवस्था आप कर लें क्योंकि हम नाटक में रोल नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर बेचारा बड़ा परेशान, ओहो ये कैसे कह रहे हो कलाकार, हम 2-4 घंटे में कहाँ से किसी कलाकार की व्यवस्था करेंगे, आप लोगों ने तो 2-3 महीने तक अभ्यास किया है, अब 4 घंटे में हम कौन सा कलाकार कहाँ से किया जाए। तो कलाकार ने तो बोल दिया नहीं भाई नहीं, हम तो रोल करेंगे नहीं, आप कोई ना कोई व्यवस्था करिए। ठीक है साहब, मरता क्या ना करता, तो उस डायरेक्टर ने क्या किया, पूरे इलाके में पूरे गांव में क्या आजू बाजू वाले गांव में भी एक ढिंढोरा पिटवाया एक कलाकार की जरूरत का। वो क्या ढिंढोरा था, आज रात को जो नाटक होने वाला है गांव में उसका नाम है अदालत, उसमें एक कलाकार की जरूरत है, एक कलाकार की जरूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस नाटक में रोल करना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, तो आज दोपहर को 2 बजे डायरेक्टर महोदय के घर में इंटरव्यू होने वाला है साक्षात्कार, आप लोग पधारें, जो जीत जाएगा जो सफल हो जाएगा उसको कलाकार बना दिया जाएगा, उसके बदले में उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, पेपरों में नाम छपेगा, टेलीविजन में फोटो आएगा। तो सब ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, अब एक कलाकार की जरूरत, वहां एक पहुंचते या दो पहुंचते, वहां पहुंच गए 450, सबके सब पूरी लाइन में लगे हुए हैं एक के बाद एक। तो डायरेक्टर महोदय ने एक के बाद एक सबको बुलाया, जो सबसे पहली लाइन में सज्जन खड़े हुए थे वो कोई कलाकार तो थे नहीं, वो तो इसलिए पहुंचे थे कि 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, फोटो छपेगा पेपर में, टेलीविजन में नाम आएगा, फोटो आएगा, रेडियो वाले भी बोलेंगे वगैरह वगैरह, इस लालच में वो पहुंच गए। वो कौन थे, वो थे एक दवाई वाले। कौन से दवाई वाले, कोई मेडिकल स्टोर्स वाले या आयुर्वेद शाला वाले नहीं, आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे रंग बिरंगी जड़ी बूटियां लेकर कोई सज्जन बेचते रहते हैं, वो ताकत की दवाइयां बेचते हैं, 125 रुपए की पुड़िया में शक्ति साली बनाने के लिए बड़ा दावा करते हैं,

वो पहुंच गए, उन्होंने उस नाटक में अभिनय करने के लिए अपनी बात कही, इंटरव्यू में भाग लिया, तो डायरेक्टर ने बोला अच्छा अंदर आइए, आप कोई है क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये डायलॉग है इसको आपको बोलना है, ये संवाद ऐसा है कि आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे उनका खून हो गया है, उनके खून को गोपाल राव ने किया है, ये चश्मदीद गवाह इस समय अदालत में खड़ा है, बस इतना सा संवाद है, इसको आपको बोलिए, अगर आपने अच्छा बोल दिया तो हम आपको अपने नाटक में ले लेंगे और नहीं तो आपको कहेंगे कि आप जाओ। तो दवाई वाला खुश, अरे कहने जरा सी तो बात है यार, हम अपने स्टाइल से बोलते हैं, तो दवाई वाले ने अपने स्टाइल से किस तरह से बोला, देखिए डायलॉग ये है, आशा देवी मर गई है, रात को 12 बजे उनका खून हो गया है और गोपाल ने इसको खून को कर दिया है और किसी ने देखा वगैरह वगैरह, बस इतना सा डायलॉग। अब दवाई वाला अपने स्टाइल से बोलता है किस तरह से, बताएगा वो बताएगा, वो खून का मामला है या कत्ल का मामला है या मर्डर का मामला है, या कौन बताएगा, कहां बताएगा, कैसे बताएगा, अरे 125 रुपए का तावीज उसके छाती पे रख देगा, वो बताएगा, वो भगवान के नाम पे बताएगा, अरे खून का मामला है या कत्ल का मामला है या मर्डर का मामला है, अरे कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में केला लौकी भिंडी दियो लटकाए, जिसको जितना चाहिए काट काट ले जाए, वो बताएगा ये खून का मामला है या मर्डर का मामला है या कत्ल का मामला है। तो डायरेक्टर बोलता है हम आपको पहचान गए, सही बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, अब बाहर निकल जाओ, 2-4 महीने के बाद आप आना, उनको तो साहब बाहर कर दिया गया। अब पहुंचे नंबर 2, जिनकी गिनती न होती है कव्वालों में, बड़ा बढ़िया कव्वाली गाते हैं, वो भी अपने संगी साथियों के साथ, ढोलक तबले के साथ, हारमोनियम के साथ, गाने वालों के साथ चले आए। तो देखिए किसने किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत की, आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे हैं, खून का मामला है, किसने खून किया, वो खूनी कहाँ खड़ा है वगैरह वगैरह। अब इस डायलॉग को बोल रहा है कौन, एक कव्वाल अपनी स्टाइल से।

सफाई से धोए हैं अपने हाथ, तो कहा है कि कातिल ने किस सफाई से धोए हैं अपने हाथ कि वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। अरे मोम के शहर में, मोम के शहर में उस वक्त तबाही होगी, कहा है कि मोम

तो मेरी आशा रात के 12 बजे सो रही थी। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लखते जिगर, मेरा नूर नजर, मेरी आशा सो रही थी रात के 12 बजे थी। मैंने अपनी नजर से, नजरिया से, नैना से, दो दो कटा से चांद को देखा।

इज इंसान नहीं, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल मर्डर कर दिया हो मेरे जज साहब। मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस कातिल को कम से कम दिन में 3 बार

0: के डायरेक्टर साहब बोलते हैं, कहले बहुत बढ़िया गाते साहब आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए लेकिन हम आपको ले नहीं पाएंगे अपने ड्रामे में, आप जा सकते हैं, चाय वाय के लिए आप चाहें तो पैसे ले लें। तो उनको पैसे चाय के दे दिए गए, उनको हटा दिया गया। अब पहुंचे कौन? एक ऐसे नेता जो अचानक वो स्पीकर में जो आवाज आ रही थी कि एक कलाकार की जरूरत की, उसको सुन के पहुंच गए और उनको भी वही डायलॉग दिया गया कि आशा देवी मर गई हैं और गोपाल ने उनको मारा है, अदालत में वो गोपाल खड़ा है, डायलॉग हो रहा है और सब बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब आपको अपने तरीके से बोलना है, आप अगर हमारे ड्रामे में रोल करना चाहते तो। नेता तो नेता बेचारे, कोई कामकाज तो वर्तमान में था नहीं उनके पास, तो चालू हो गए वो, उनको डायलॉग दे दिया गया। अब नेता तो नेता, बोलेंगे कैसा, वो वकील तो थे नहीं, वो तो अपने तरीके से वो चालू हो गए। किस तरीके से? प्यारे भाइयों, बहनों और साथियों, नहीं सॉरी, जज साहब, जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी के खास कर्मठ कार्यकर्ता जिसने 24 घंटे समाज की सेवा करने में अपना खून पसीना लगा दिया, ऐसी सच्ची वफादार सभी की चहेती मिलनसार मृदुलभाषी आशा देवी का खून कर दिया गया है। आशा देवी का खून कर दिया गया है जिसे विरोधी पार्टी वालों ने एक्सीडेंट का नाम दिया है, ये सरासर गलत है। आशा का खून मामूली नहीं था, उसके खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। हम खून की निष्पक्ष जांच होना चाहिए ऐसा हम कहते हैं। हम हड़ताल करेंगे अगर खून की जांच नहीं की गई, तो हम हड़ताल करेंगे। हम सभी से समर्थन जुटाने का अनुरोध करते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलो, आशा देवी अमर रहे, आशा देवी आशा देवी आशा देवी। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा इस तरह से वो ड्रामा आज तक नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी श्रोता को उस ड्रामे में रोल करना है तो हम आपको उनका पता बता देंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
3: राजेश मिश्रा, लगता है आपके घर के पिछवाड़े छुपकर मियां बीबी की बातें खूब सुनते हैं, इसलिए ये प्राइवेट बातें सुनाते ज्यादा हैं। देखे जरा क्या सुना रहे हैं।
4: भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू ए बाबू, सुनता ही नहीं है, बेवकूफ आदमी।

क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा। कहिए क्या बात है? बाबू एक रोटी दे दो। रोटी नहीं है, फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू। फटे पुराने कपड़े भी नहीं है बाबू। गेहूं के दाना दे दो बाबू। गेहूं का दाना भी नहीं है। पैसे दे दो बाबू। पैसे भी नहीं है। अच्छा साहब, आपके पास कटोरा है? क्यों बाबू, ऐसा है अगर है क्या? हाँ है, तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो। एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले? क्या है? कुछ दे दो भगवान भला करेगा। उसने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले? कहले साहब, जो आप कर रहे वही हम करते थे। अब चुनाव का माहौल चारों ओर फिर से गर्म हो रहा है। हर नेता को ये लग रहा है कि पुनः हमको अपनी सीट जीतना है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी प्रमुख रूप से सामने आए। इस ओर आपको ले चल रहे हैं कि कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं। अभी कुछ समय से नेताओं के साथ साथ राजनीति में किन्नर लोगों का भी प्रवेश हुआ, और किन्नर लोगों के प्रवेश से राजनीति में थोड़ा सा उथल फुथल हुई। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में बड़ी तनाव भी आया और कुछ लोगों ने उसको बड़ा हास्य और आनंदमय लिया। हिंदुस्तान है हमारा, हर किसी को स्वीकार किया जाता है, ये महानता है हमारे देश की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान में कैसे कैसे जनसंपर्क हो रहे हैं, ये आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ कि जनसंपर्क के दौरान में कैसे हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं और आम सभाओं के वक्त कैसी हास्यप्रद बातें। देखिए, आज की आम सभा हमारी प्रारंभ होने जा रही है और हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रमुख नेता आने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाकर रखें और थोड़ी देर में हमारे नेता जी आ गया। देखिए, हमारे नेताजी आपके बीच में हैं। ए, ये बैठ जाओ। ये देखो यार भैया, ये विरोधी पार्टी वाले लोग ऐसा करते हैं यार। देखिए, हमारे नेताजी बहुत ही पावरफुल नेता हैं। इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं कि आज इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है इनके पास, ये सब जनता का है। ऐसे नेता आज हमारे बीच में हाजिर हैं। और नेताजी, अब नेताजी को बड़ा खराब लग रहा है कि जी बोलते क्या जा रहे हैं कि जो कुछ भी है और जनता का है। अब वो धीरे से उनके कान, क्या बोल रहे हो यार, जो भी है जनता का। हाँ, हमारा कहने का आशय आप लोग गलत ना समझें, जो कुछ भी है जनता का है। इसका कहने का आशय हमारा ये है कि आप लोगों ने जो कीमती वोट दी है, इसके कारण आज नेताजी हैं। नेताजी, अब ये जो बीच के भाषण देने वाले होते हैं, वो तारीफ करने वाले होते हैं, अब वो किस ढंग से उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं किंतु बोल कुछ और देते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं और नेता को बुरा लगता है, कहीं कहीं कहीं कहीं अच्छा लगता है, तो वो धीरे धीरे कैसे सारे बाजी से उनकी बातचीत चलती रहती है, ये क्रम आप अपने आप समझते जाओगे कि यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ काटा गया है। तो हमारे नेताजी देखिए इतने सहज और इतने सरल व्यक्ति हैं कि आज ये जो कपड़े भी पहने हुए हैं, ये अपने नहीं पहने हुए हैं। यानी आप फिर गलत समझ गए होंगे, कपड़े अपने नहीं पहने, यानी कि ये अमीर गरीब किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के जिसका जिसने जो दे दिया कि ये आप स्वीकार कर लीजिए, नेताजी उसको स्वीकार कर लेते हैं कि समाजवाद है हमारा, हम किसी के साथ दो भाना नहीं रखते कि किस समाज का है किस समाज का। ऐसे महान नेता आज आपके बीच में आए हुए हैं, ऐसे महान नेता आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं।

0: अब देखिए आप उनको वोट दीजिए और इनको जिताइए ताकि हमारे यहाँ अब और नेताजी अब इसके बाद जनसंपर्क के लिए जाएंगे। चलिए नमस्कार जी, नेताजी आए हैं तो क्या करें भैया, नहीं करना कुछ नहीं है, अब खड़े हुए हैं तो हमसे पूछ के खड़े हुए हैं क्या? नहीं नहीं दादा, इस बार इनको जिताना है, पिछली बार भी तो नहीं को जिताया था भैया, इस बार भी जिताना है। मतलब क्या है आपका? अरे मतलब ये कि इस बार फिर वोट देना। अरे यार भैया, पानी की समस्या हल नहीं हुई यार तुम्हारी। देखो दादा, पिछली बार इनने बोला था कि पानी आएगा, हाओ देखो इनने नल लगवा दिया ना, हाओ इस बार जिताओ नल में पानी भी आ जाएगा। अभी आप एकदम संजय कटौती हो जाती, लाइट गोल हो जाती, निकलो लोग लपाड़ा मार देते, पूछो कौन मार रहा है तो बोलते हैं कि भूत मार रहा है। कुछ टाइम तो सेट करा दो लाइट कटौती का दादा है। अब ऐसे गड्ढा कीचड़ हो गए पूरो कॉलोनी में कि सब लड़का बच्चा एक से बिल्कुल दिखा दे कीचड़ में, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते। अब कम से कम एंटी व्यवस्था कर दो, अब बच्चा ही नहीं पहचान पा, जब पूरे मोहल्ला के बच्चों के मुंह धो जब अपनो बच्चा पहचान पा। अब आज बच्चों को धोखा हो रहा हो, कल को आदमियों को धोखा होने लगे तो लफड़ाई कर रहा।
1: आगे बढ़े, महिला आई एक। क्यों जयी है क्या नेताजी?
0: हाँ हाँ जयी है, जयी है।
1: राम राम नेताजी।
0: राम राम, कहिए क्या बात है?
1: एक समस्या थी हमारे यहाँ।
0: बताइए बताइए क्या समस्या?
1: समस्या ये थी कि हमारी लैट्रिन 3 दिन से साफ नहीं।
0: तो नेताजी बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
1: करना कुछ नहीं, आपको मुंह भर चलाना है।
0: आप लोग हंस देते हो, नेताओं से बुराई हम लोगों की हो जाती है।
2: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है का नवा भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा का समापन प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट मैदान में खेल कूटनीति के ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब चार दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 वर्ष में पूरी होगी। इससे लगभग 35 लाख आबादी और 62 गांव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E85 ईंधन E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा है कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 1 साल तक हर माह 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। गृह विभाग द्वारा पद्म पुरस्कार वर्ष 2027 के लिए नामांकन 15 जुलाई तक ऑनलाइन कराया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उपयोग भी किया जा सकता है। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलेगी। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से होगा। ये लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 1 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

बहनों, जीवन का हर पल अनुभव व ज्ञान का खजाना है। बस मुस्कुराकर हर दिन का स्वागत करें और अपनों के साथ खुशियां बांटें। बहनों, इन्हीं पंक्तियों के साथ महिला सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रतिभा चतुर्वेदी का सा स्नेह नमस्कार। बहनों, हमारा पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें जल, जंगल, धरती, आकाश, हवा और इसमें विचरण करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का संरक्षण करना पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसी दिशा में मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों को प्रेरित करके पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करता है। बहनों, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मानता है कि भारतीय संस्कृति और जीवन परंपराएं स्वाभाविक रूप से सतत हैं। मिशन लाइफ का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। मिशन लाइफ से तात्पर्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। ये भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। मिशन लाइफ के कार्यों में एक स्थायी पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। बहनों, संरक्षण, संयम और पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली जीवन शैली को अपनाने और पहल परंपराओं, मूल्यों और प्रथाओं के महत्व पर ये जोर देती है। मिशन लाइफ व्यक्तिगत कल्याण और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देता है। ये टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के जरिए हासिल किया जाता है। बहनों, मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण के लिए जिम्मेदार उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा करना है, ताकि उद्योग और बाजार तेजी से बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल ढल सके। इसका नीतिगत प्रभाव ये है कि ये टिकाऊ उपभोग और उत्पादन को हवा देकर मिशन लाइफ पर्यावरणीय कारणों का समर्थन करने के लिए सरकारी नीतियों और औद्योगिक प्रथाओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो बहनों, ये तो हमने आपसे चर्चा की मिशन लाइफ पर, और अब बहनों रुख करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल भूपिंदर सिंह के स्वर में 1980 में आई फिल्म एक बार फिर से ये गीत। विनोद पांडे की शब्द रचना को संगीत से सजाया है रघुनाथ सेठ ने।

0: बहनों, हवाओं को चलने के लिए किसी के इशारे की ज़रूरत नहीं होती। नींव तो अपना खाका खुद खींचती है, उसे किसी इमारत के बनने की कवायद नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। कहा जाता है, घर को घर महिला ही बनाती है और महिलाओं से ही घर होता है। महिलाएं ना सिर्फ रिश्तों की सूत्रधार होती हैं, बल्कि वे त्योहारों, पारिवारिक परंपराओं और संस्कृति की संरक्षक भी होती हैं। महिलाएं पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं और कहानियों को जीवंत रखती हैं। वे बच्चों को तीज त्योहारों का महत्व और परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी साझा करती हैं। बहनों, त्योहारों की तैयारी में घर की साफ सफाई, सजावट, व्यंजन पकवान बनाने से लेकर व्रत रखना, पूजा पाठ की तैयारी का काम महिलाएं ही संभालती हैं। बहनों, हमारे देश में करवा चौथ, हड़ताल का तीज और वट सावित्री जैसे व्रत महिलाएं रखकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। त्योहारों पर रिश्तेदारों को बुलाना, उनका स्वागत सत्कार करना, उपहार का आदान प्रदान कर प्यार स्नेह से रिश्तों को सींच कर मजबूती प्रदान करती हैं। महिलाएं विवादों को सुलझा कर घर के सभी सदस्यों को साथ लाती हैं। बड़ों का आदर करना और मिलजुल कर रहना जैसे अच्छे संस्कार महिलाएं ही सिखाती हैं, साथ ही बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण भी करती हैं। बहनों, त्योहारों में महिलाओं पर काम का दबाव बढ़ जाता है, लेकिन कामकाजी महिलाओं को ऑफिस के काम के साथ साथ घर के अतिरिक्त कार्य के दबाव को भी संभालना और सहना पड़ता है। महिलाएं अपने परिवार की खुशी के लिए घर के दोहरे कार्य की जिम्मेदारी को भी सहर्ष स्वीकार कर हर कार्य का बखूबी निपटान करती हैं। त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं के वाहक के रूप में महिलाएं अग्रणी भूमिका में रही हैं। बहनों, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे त्योहार और पारिवारिक परंपराओं में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर। और बहनों, जीवन में रिश्ते होना ऊपर वाले की नियामत है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना वो हमारे हाथ में है। रिश्तों को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है प्यार, विश्वास, भाईचारा, समझ और मुख्य है आपसी संवाद। संवाद होता रहेगा तो रिश्ते जिंदा रहेंगे, वरना खामोशी तो मुर्दों की निशानी है। परिवार में संवाद और महिलाओं की भूमिका, ये है आज की वार्ता का विषय। और वार्ताकार हैं आभा खरे।
1: हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत पुरातन होते हुए भी चिर नूतन है, क्योंकि इसकी मान्यताएं आज के वैज्ञानिक युग में भी हमारे जीवन को सार्थक दिशा दिखाती हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है परिवार। संस्कृति को चैतन्य और जागृत रखने का दायित्व हमारे परिवारों का ही है। लेकिन परिवार है क्या? साथियों, परिवार केवल व्यक्तियों के एकत्र रहने की व्यवस्था का नाम नहीं है। परिवार समाज की आधारशिला है। यह समाज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक इकाई है। परिवार ही उत्तम मनुष्य के निर्माण की पाठशाला है। भारतीय संस्कृति में परिवार की परिभाषा में 3 या 4 पीढ़ियों का समावेश होता है, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा

चाची, भाई, भाभी, ये सब एक ही छत के नीचे एक ही परिवार का हिस्सा होते हैं। आज भले ही संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन परिवार चाहे तीन पीढ़ियों का संयुक्त हो या एकल हो, उसके केंद्र स्थान पर महिला ही विराजमान होती है। परिवार, समाज तथा देश का अस्तित्व नारी से ही है। नारी के बिना परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारी, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, हर रूप में परिवार की धुरी होती है। एक पुरानी कहावत है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। मतलब जिस घर में परिवार के सदस्यों को महिलाओं के हाथ का बना भोजन न मिले, माँ की कोमल वाणी का गुंजन न हो, बहन का स्नेहयुक्त स्पर्श न हो, बेटियों की किलकारी न गूंजती हो, वह घर घर नहीं होता। वह घर सोने का महल भी हो तो भी वीरान ही लगता है। साथियों, वैसे तो परिवार की अवधारणा और महत्व को विश्व के सभी देशों और सभी संस्कृतियों में प्रमुखता दी गई है, लेकिन भारतीय परिवारों जैसे आदर्श परिवार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारतीय परिवारों की रचना कर्तव्य प्रधान है, जिसमें सभी सदस्य, चाहे वे पुरुष हों या फिर महिला, एक दूसरे के साथ सेवा भाव से रहते हैं। परिवार के सतत विकास और गुणवत्ता की कुंजी महिलाएं होती हैं, जो कि पत्नी, नेता, एक प्रशासक या पारिवारिक आय प्रबंधक की भूमिका में होती हैं। पर साथियों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वे माँ की निभाती हैं। माँ के रूप में परिवार की महिलाएं एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य सदस्य मानी जाती हैं। वे बच्चों की देखभाल में प्राथमिक मार्गदर्शक के रूप में होती हैं। वे परिवार में सद्भाव बनाए रखने में और घरेलू आयोजनों की रूपरेखा बनाने में अपनी भूमिका निर्वहन करती हैं। वे परिवार के सदस्यों को भावनात्मक सहारा प्रदान करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जीवन साथी के कैरियर में सहयोग कर स्नेह और ध्यान का स्रोत बनती हैं। महिलाओं में भावनात्मक संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है। वे बच्चों के पालन पोषण में शैशव अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक उनका मार्गदर्शन करती हैं। यदि अच्छी संवाद वाली महिलाएं हैं तो वे बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। बच्चों की क्षमता और कौशल को वे शुरुआती दौर में ही विकसित कर सकती हैं। इसलिए माँ को बच्चे का प्रथम गुरु कहा जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच के विवादों को सुलझाने में भी महिलाएं मध्यस्थ और निर्णायक की भूमिका निभाती हैं। अच्छी संवाद वाली महिलाएं घर के तनावपूर्ण माहौल को कम करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकती हैं। वे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। महिलाएं ही परिवार के सदस्यों को सुख दुख दोनों ही क्षणों में भावनात्मक सहारा प्रदान करती हैं। अच्छी संवाद वाली महिलाएं परिवार के सदस्यों को तनाव, चिंता, व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में सहायता करती हैं। परिवार के सदस्य महिलाओं से संवाद करके अपनी अंदर की भड़ास को खत्म कर लेते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। जिस घर में नारी प्रसन्नचित रहती है वह घर हमेशा फलता फूलता है। जैसे धुरी के कमजोर होने पर पहियों की गतिशीलता में कमी आ जाती है, या फिर धुरी न होने पर पहियों का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार महिलाओं के न होने पर परिवार कमजोर और समाज अस्तित्वहीन हो जाता है, तार तार होकर बिखर जाता है। आज के आधुनिक युग में बदलते परिवेश के साथ साथ अब कई महिलाएं अपने जीवन साथी के कैरियर में भी सहयोग दे रही हैं। अच्छी संवाद वाली महिलाएं बातचीत में भागीदार बनके अपने जीवन साथी को प्रोत्साहन दे सकती हैं, उनकी दिनचर्या और पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर सकती हैं। जीवन साथी के कैरियर में सहायक बनकर महिलाएं पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत कर सकती हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकती हैं। खुलकर संवाद और सहयोग साझा लक्ष्यों को स्थायी रूप से प्राप्त करने की कुंजी है। परिवार की परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने में और आगे बढ़ाने में महिलाओं का संवाद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे संस्कृति, संस्कारों, रीति रिवाजों और नैतिक मूल्यों के बारे में घर के सदस्यों को सिखाती हैं और परिवार की नींव मजबूत बनाती हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने में माँ का प्यार, दुलार और स्नेह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के महत्व के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि एक पुरुष के शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अर्थ है केवल खुद को उपयोगी बनाना, लेकिन एक स्त्री के शिक्षित, समझदार और सुयोग्य होने का अर्थ है पूरे परिवार को सुसंस्कृत बनने का सुदृढ़ आधार मिलना। शिक्षा महिलाओं की स्थिति की बुनियाद का पहला पत्थर है जो उनसे बहुत निकटता से जुड़ा है। शिक्षा बौद्धिक क्षमता का विकास करती है, जिससे महिलाओं को अपनी योग्यता और शक्ति का ज्ञान होता है, उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाते हैं।
हैं, जिससे वे आर्थिक मजबूती प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं।

0: जाती हैं। महिलाएं परिवार के लिए वैसी ही हैं जैसे हृदय के लिए धड़कन। मुनि श्री प्रमाण सागर जी कहते हैं कि जो स्थान शरीर में नाड़ी का है वही स्थान समाज और परिवार में नारी का है। शरीर का यदि नाड़ी तंत्र फेल हो जाए या कमजोर हो जाए तो शरीर अचेत हो जाता है, और यदि परिवार का नाड़ी तंत्र नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो परिवार अचेत हो जाता है। हमारा इतिहास बताता है कि ऐसी भी पत्नियां थीं जिन्होंने कालिदास जैसे महामूर्ख को महाकवि विद्वान बना दिया, श्रोणिक जैसे धर्म भ्रष्टों को धर्मात्मा बना दिया, तुलसीदास जी जैसे विषयी और लोलुपी कामी इंसान को परम राम भक्त बना दिया। स्त्री अपने व्यवहार से परिवार के सदस्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। स्त्री जब संतान को जन्म देती है तो माँ बनती है। माँ का रिश्ता बच्चे से उसके जन्म के 9 महीने पहले से ही बन जाता है। इसलिए जब वह संतान को जन्म देती है तो स्त्री के अंदर का मातृत्व एक आदर्श माँ के रूप में प्रकट होता है। एक योग्य संतान को जन्म देने में माँ की भूमिका सर्वोपरि है। हम सब जानते हैं कि कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। कौरव कुसंस्कारों के घोतक हैं, जबकि पांडव धर्म के प्रतीक हैं। कौरवों के अंदर संस्कार नहीं थे, जबकि पांडव सुसंस्कृत और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसका मूल कारण उनकी माताएं हैं, क्योंकि कौरवों की माता गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी लगा कर रखी थी। कौरवों को अपनी माता का प्रत्यक्ष सानिध्य और संप्रेषण मिला ही नहीं तो इनमें संस्कार कहाँ से आते। लेकिन पांडवों को हर विपत्ति काल में माता का सानिध्य और संप्रेषण मिलता रहा, इसलिए पांडव सदा संस्कारित बनकर मानवता के लिए आदर्श बन गए। अच्छी माँ बनना हर महिला की जिम्मेदारी है और अच्छी भार्या बनना हर महिला की जिम्मेदारी है। भार्या शब्द, इसमें भी एक गूढ़ अर्थ है, एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। भार्या का अर्थ है परिवार का भरण पोषण करने वाली, अर्थात घर की आंतरिक व्यवस्थाओं का संचालन एक स्त्री ही कर सकती है। ये गुण प्रकृति ने केवल एक स्त्री को ही दिया है। नारी आत्मीयता, ममता, वात्सल्य, स्नेह और प्रेम की मूर्ति बनकर परिवार में समरसता बनाए रखती है। परिवार में महिलाओं के संवाद और भूमिका पर जितना प्रकाश डाला जाए उतना ही कम है। परिवार में उनकी भूमिका का कोई और छोर नहीं है।
1: अभी आपने आभा खरे से वार्ता सुनी, परिवार में संवाद और महिलाओं की भूमिका। बहनों, परिवार और रिश्ते दोनों ही बिगड़ने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। और बहनों, अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर, तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से ये गीत। संतोष आनंद की रचना को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद अब आपको देते हैं उपयोगी जानकारी। बहनों, यूं तो बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, परंतु बारिश के मौसम में बिजली या वज्रपात की संभावना बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में ये ध्यान रखना जरूरी है कि बारिश से बचाव हेतु वृक्षों के नीचे समूह में खड़े ना हो, खासतौर पर ऊंचे बड़े पेड़ों से दूरी बनाकर रखें। बहनों, खेतों में कार्य करने वाले किसान तत्काल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं व खेतों के बीच में बने खलिहानों अथवा अन्य अस्थायी स्थलों पर बारिश से बचाव हेतु झुंड में खड़े होने से बचें। बहनों, अपने पास किसी भी धातु की वस्तु जैसे खुरपी, फावड़ा, कुदाल, छाता आदि ना रखें। साथ ही धातु से बने खुले वाहन, ट्रैक्टर, जीप या अन्य वाहनों से दूर रहें। ऐसे घर जिसकी छत धातु से बनी हो उसमें शरण ना लें। बहनों, जल अथवा जलीय क्षेत्रों में ना जाएं। यदि धान रोपने का कार्य चल रहा हो तो शासकीय निर्देशानुसार चेतावनी अवधि तक इस कार्य को स्थगित रखें। चेतावनी अवधि तक जल के संपर्क में आने वाले कोई भी कार्य ना करें और ना ही नदी, तालाबों में गहरे पानी में जाएं। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित अवधि तक खुले क्षेत्रों, जलीय क्षेत्रों में अथवा उसके आसपास पिकनिक, धार्मिक अथवा अन्य सामाजिक आयोजन नहीं करें व ऐसी जगह जाने से बचें। बहनों, शासन द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों का पालन करें, लापरवाही ना करें। जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करें व जरूरतमंद की मदद करें। तो बहनों, ये तो हमने आपको उपयोगी जानकारी दी आकाशीय बिजली से बचाव के बारे में, और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। बहनों, बारिश के मौसम में सेहत का ध्यान रखना खास जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सेहत के साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें, इसलिए हमेशा छना हुआ, उबला या फिल्टर किया पानी पिएं। बारिश में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, इसलिए हमेशा ताजा, सुपाच्य, हल्का गर्म भोजन करें। बहनों, बारिश में पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करें। हरी सब्जियों में लौकी, तोरई, परवल और मूंग की दाल जैसी हल्की चीजों का सेवन करें। बाहर की तली भुनी चीजें, चाट, पकौड़ी खाने से बचें। बाजार में बिकने वाले कटे हुए फल सब्जियां ना खरीदें। फल सब्जियों को घर पर लाकर अच्छी तरह धोकर साफ कर ही उपयोग करें। बहनों, खाद्य सामग्री छूने और भोजन करने से पहले हाथों को अवश्य धोएं, और मच्छर मक्खी से बचाव के लिए कूलर, गमलों, नालियों में पानी जमा ना होने दें। नालियां ढककर रखें और समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए शरीर को ढकने वाले पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के खिड़की दरवाजों पर भी मच्छरदानी लगाकर रखें। बहनों,

0: हमेशा अच्छी तरह से सूखे और साफ कपड़े पहनें। यदि आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर साफ पानी से नहा लें। शरीर को अच्छी तरह पोंछ सुखाकर ही कपड़े पहनें। नमी रहने से त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। बहनों, बारिश में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर स्वस्थ और सेहतमंद रह सकते हैं। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। तो बहनों, बारिश का आनंद लीजिए चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए। और अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।
1: बहनें सुन रही थी महिला कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए रोमहृति चौरसिया की आवाज़ में लोकगीत। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अगला कार्यक्रम भी हमारा छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है और पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं अटल शुक्ला की आवाज़ में चंद भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अटल शुक्ला के गाए भजन। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

के कारणों की पहचान करेंगे। इस साल गेहूं खरीदी में प्रति क्विंटल कमी घटकर 70 ग्राम रह गई है, जो पिछले वर्षों से काफी कम है। बावजूद इसके कमी की भरपाई संबंधित समितियों और परिवहनकर्ताओं से कराई जाएगी। गृह विभाग ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग, वन्यजीव संरक्षण और कृषि जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति जिला कलेक्टर के माध्यम से पोर्टल पर 15 जुलाई तक नामांकन दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार को सीधे नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रदेश में यात्री सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर लोक परिवहन बसों की विशेष चेकिंग की। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में 12,000 से अधिक बसों का निरीक्षण किया गया। जांच में 4,787 चालान बनाए गए और 33 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। 128 बसों में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई। इनमें से 22 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अब तक 234.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 10% अधिक है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज के लिए पन्ना और सतना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश जारी रहने का अनुमान है। प्रदेश की 2 महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। ये शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। दोनों खिलाड़ी कल स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा स्कूल वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कराने के उद्देश्य से जिले में कल से 10 दिवसीय स्कूल वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कल शासकीय कृषि प्रक्षेत्र रन्नौद स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहाँ बीजों की साफ सफाई, ग्रेडिंग और भंडारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। खंडवा में स्वर सम्राट किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जिले में 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। धार जिले की पद्मावर तहसील में अमानक बीज के उपयोग से सोयाबीन फसल प्रभावित होने पर कृषि विभाग ने संबंधित डीलर और कंपनी संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने कल जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज और कल ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेल दोनों देशों को जोड़ने की अनोखी ताकत रखते हैं। ये पहल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को इसका खास लाभ होगा। दो साल में तैयार होने वाली इस परियोजना से 35 लाख आबादी लाभान्वित होगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी में कमी पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को गहन समीक्षा करने के लिए कहा है। अब सभी जिला कलेक्टर कमी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से।
1: और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से

0: शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: And we've always had a good close relationship with India in playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
1: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940

0: लीज के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से

0: सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत। बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ में इंदिवर की बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं डिस्ट्रिक्ट खरगोन से लोकेश मंटलोई और इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबलेर पाटिल राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

ग्राम सेगांव, डिस्ट्रिक्ट खरगोन, मध्य प्रदेश से हरीश चंद्र मंडलोई, छवि कुशवाहा और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचौलिया हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं इस प्यारे से गीत को।

आप सुन रहे थे राम लक्ष्मण के संगीत से सजा हुआ गीत, बोल थे असद भोपाली की फिल्म का नाम मैंने प्यार किया, और खूबसूरत आवाजें एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है तेरे नाम, समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, और इसी गीत को पसंद किया है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रमेश शिवाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिमाली और उनका परिवार।

इस गीत के साथ ही फिल्म आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज और कल ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी में कमी पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को गहन समीक्षा करने के लिए कहा है। अब सभी जिला कलेक्टर कमी के कारणों की पहचान करेंगे। गृह विभाग ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग, वन्यजीव संरक्षण और कृषि जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रदेश में यात्री सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर लोक परिवहन बसों की विशेष चेकिंग की। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में 12,000 से अधिक बसों का निरीक्षण किया गया। प्रदेश की दो महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। ये शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। और मौसम विभाग ने आज के लिए पन्ना और सतना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और 9:45 पर। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ग्राम सभा का प्रसारण होगा शाम 7:21 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत, जिसमें होगी वार्ता मध्य प्रदेश में स्केटिंग की संभावनाएं। विशेषज्ञ होंगे अमर भटकर और आपसे बातचीत करेंगे मनीष गजबिये। 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे अम्बरीश कालेली का गिटार वादन, राग होगा कावती। ये थे हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 3:02 होने वाले हैं। अब हमारा मीडिया

डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रामरति चौरसिया की आवाज में ये भजन।

आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। लीजा पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अटल शुक्ला की आवाज़ में चंद भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अटल शुक्ला के गाए चंद भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए चित्र पर संगीत।

कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रतन धन पायो का बहुत ही प्यारा सा गीत, अन्वेषा विनीत सिंह और साथियों की आवाज़ में, बोल है अरशाद कामिल के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं दिल फिल्म का गीत, समीर के बोल हैं और संगीत से सजाया है आनंद मिलंद ने।

प्रेम कैदी, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाज़ें थी SP बाल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की। समीर के बोल थे और संगीत आनंद मिलन का।

आप सुन रहे हैं गुरु फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ में। गुलजार की बोल है और संगीत एआर रहमान का। आवाज़ें एक बार फिर बता दें, श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की।

0: आप सुन रहे थे गुरु फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में, गुलजार के बोल थे और संगीत ए आर रहमान का। हमारा संगीत का ये सफ़र जारी रहेगा थोड़े से अंतराल के बाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया, जिसमें भारतीय और न्यूजीलैंड सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों के हित में किए जा रहे कार्यों और प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान IIAS द्वारा आयोजित स्थायी प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा के उद्घाटन और सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। केंद्र सरकार ने उच्च अल्कोहल मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। और मौसम विभाग ने आज के लिए पन्ना और सतना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है। संगीत का सिलसिला एक बार फिर जारी है और सुनवा रहे हैं आपको चांदनी फिल्म का गीत आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत शिव हरी का।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत प्रेम ग्रंथ से। इस फिल्म में आवाज़ें दी हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक ने, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म बेटा से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, समीर के बोल हैं और संगीत आनंद मिलन का। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नगमे को।

आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है प्रेम रोग फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत है संतोष आनंद का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है का नवा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: भाई वाह, अपनी खीसे निपोरते आपको कुछ सुनाने मेरे पास खड़े हैं विनय जैन।
2: एक साहब हमेशा अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बड़े विलंब से पहुंचा करते थे, हमेशा देर से आया करते थे, और हमेशा देर से आने के कारण उनका, उनके ऑफिस में ऐसा रिकॉर्ड बन गया था कि ये साहब हमेशा देर से आते हैं। उनका कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से प्रारंभ होता था और उसके बाद शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी का समय हुआ करता था, लेकिन वो हमेशा 10 की जगह कभी 10:30 तो कभी 11 तो कभी 11:30 तो कभी 12:15 तो कभी 12-12 बजे तक लगातार ऑफिस पहुंचा करते थे। और छुट्टी होने का समय 5 बजे ठीक एक्यूरेट हुआ करता था, बिल्कुल ठीक समय 5 बजे ऑफिस छूटने का समय। इसके लिए वो, उनकी अगर रिपोर्ट देखी जाती तो वो कभी ऑफिस से 4 बजे ही निकल जाते थे, कभी 3:30 बजे ही गायब, कभी 3 बजे ही ऑफिस से वापस। तो ये देख के बहुत लगातार काफ़ी दिनों से विलंब से आने के कारण और देर से आने के कारण उनके बॉस ने, उनके जो बड़े साहब हैं, उन्होंने उन्हें तलब किया और उसे अपने पास बुलाया और बोला,
3: रामलाल आज आप दफ्तर लेट आए थे। जी हाँ साहब, थोड़ा लेट हो गया था। वो क्या कि थोड़ा सा वो लेट हो गया था साहब, बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ हाँ ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम कल भी लेट आए थे। हाँ साहब, वो लेट हो गया था, क्या कि वो लगातार मैं लेट जरूर हो रहा हूँ, लेकिन क्या कि मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, परिवार बाल बच्चों में फंस जाता हूँ साहब। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लगातार 15 दिन से रोज लेट आते हो। तुम्हारा 10 बजे ऑफिस का टाइम है, कभी 11 आते हो, कभी 11:30, कभी 12:15, 12-12 बजे तक ऑफिस आए आप, और जाने का समय 5 बजे, तो कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2:30-2:30 बजे तक गए हो, दोनों टाइम लेट होते हो। बोले साहब क्या है कि दोनों टाइम लेट होना जमता नहीं है, इसलिए शुरू से जल्दी आता हूँ, बाद में पहले चला जाता हूँ। एक छोटा बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुँचा और बोला, बच्चे जब बुजुर्गों से बात करते हैं और बुजुर्ग जब बच्चों से बात करते हैं तो किस तरह की हंसने हंसाने की बातें बन जाया करती हैं, वही बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुँचा और बोला,
4: दादी दादी है ना, दादी है ना, तुम ना टें बोलो टें।
3: अब बुजुर्ग लोग अगर बच्चों से बात करेंगे तो मूड ठीक है तो ठीक है, और अगर मूड ठीक नहीं है तो वो डांट भी दिया करते हैं। तो दादी माँ फौरन बच्चे से बोलती हैं,
5: नहीं बोलते जाओ, हमारे टें बोलने से क्या होगा बेटा।
4: है ना दादी, तुम ना टें बोलोगी ना तो ना बड़े भैया

0: मियाँ की शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी? बेटा तेरे से ये कौन ने कहा कि बड़े भैया की शादी हो जाएगी? है ना दादी, है ना, कल ना बाबू कह रहे थे अम्मा से कि जो दिन मुन्ना की दादी टैं बोल जाएगी वो इतना बड़े भैया की शादी कर देंगे। गांव गांव गली गली लोगों को सरकार की तरफ से ये पढ़ाया जाने लगा, सिखाया जाने लगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ये व्यंग आपके लिए विशेष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जैसे ही गांव के लोगों ने पढ़ना शुरू किया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, किसी गांव वाले की कोई समझ में ज्यादा नहीं आया, एक गांव वाला शिक्षा विभाग के एक नुमाइंदे के पास पहुंचा और बोला, साहब जी क्या बात है, साहब जी ये गांव वाले हैं जे ऐसे नहीं समझेंगे, बेक समझ ही नहीं रहे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, नहीं समझ रहे तो क्या समझेंगे। अब ऐसा है साहब जी, भी समझेंगे, ए फॉर अन्नू की घरवाली, बी फॉर बउआ की घरवाली, सी फॉर चंदू की घरवाली, डी फॉर डब्बू की घरवाली, वे ऐसे समझ है। अच्छा ऐसे समझेंगे? हाँ साहब वे गाँव आ रहे ना वे ऐसे ही समझ है, ऐसे नहीं समझ है। शिक्षा विभाग के नुमाइंदों ने उसे उसी तरह मीडिया बनाकर लोगों को प्रचार करना शुरू किया, ए फॉर अन्नू की घरवाली, बी फॉर बउआ की घरवाली, सी फॉर चंदू की घरवाली, डी फॉर डब्बू की घरवाली। लोग पढ़ने लगे और लोग समझने लगे। गांव में 99% लोग शिक्षित हो गए कि लोग साहब इस बात लाभ लेने लगे। शिक्षा विभाग का जो ये प्रयास था ये सार्थक सिद्ध हुआ और आसपास के गांव वाले भी वहां पढ़ने आने लगे, काफी लोग शिक्षित होने लगे। शिक्षा विभाग तक खबर पहुंच गई कि फला गांव में 99% लोग शिक्षित हैं। तो एक अधिकारी वहां से भेजे गए जो कि ये मुआयना करने आए कि अगर ये बात सत्य है कि शिक्षा विभाग में यहाँ पर इस गांव में इतना कयामत करके दिखाया है और यहाँ के लोग शिक्षित हुए हैं, तो एक शिक्षा केंद्र यहाँ खोल दिया जाए और आसपास के 40 गांव में 40 ब्रांच डाल दी जाए। एक बड़े साहब आ गए और एक साहब को खड़ा करके ब्लैक बोर्ड में सी लिख दिया और बोला कि बताइए दादाजी ये क्या लिखा है। दादाजी फौरन बोले, अब बेटा जब सी लिखो है सी फार चंदू की घर बारी। एक माताराम 60-65 साल की बैठी थी, उनको बोला, माताराम पढ़े लिखी हो?
1: अब बेटा पढ़े पढ़े हैं, लिखे तो नहीं है।
0: ठीक है, पढ़ी पढ़ी हो तो कम से कम पढ़ के तो बता सकती हो क्या लिखो है?
1: हाँ भैया थोड़ी बहुत तो बता ही सकत है।
0: ब्लैक बोर्ड में डी लिख दिया, बोला बताओ माताजी ये क्या लिखा है। माताजी फौरन बोली,
1: हाँ बेटा या डी लिखो है, डी फार डब्बू की घर बारी।
0: एक दादा 60 साल की लगभग उम्र के चश्मा लगाए बैठे थे, ब्लैक बोर्ड में बड़े साहब ने डब्लू लिख दिया और दादा से बोला डब्लू दिखा के कि दादा जी बताओ जी का लिखा है। अब डब्लू देख के दादा चमक गए, चश्मा उतारा फिर लगाए, उतारा फिर लगाए, 2 सेकंड बाद फौरन जवाब दिया दादाजी ने,
2: बेटा ये देखा तो मुन्ना की घरवारी रही है मगर जा समझ में नहीं आ रहा कि जो उल्टी का है ठाणी।
3: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक छोटे से प्यारे से गांव में एक अदालत नाम का नाटक खेला जाना था। सभी गांव वालों ने अभ्यास किया 1 महीने 2 महीने, तो अदालत नाम उस नाटक का रख दिया गया। उसमें मुख्य कलाकार का जो रोल था वो था वकील का, लेकिन जो वकील का रोल कर रहे थे वो वास्तव में वकील थे नहीं, वो तो एक छोटी सी किराने की दुकान के मालिक थे। तो साहब प्रैक्टिस हुई, 26 तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 26 तारीख की शाम को 7:30 बजे ये अदालत नाम का नाटक खेला जाएगा रामलीला के मैदान में। चलिए ठीक है साहब, सभी लोगों को मालूम हो गया कि अदालत नाम का नाटक खेला जाना है। अब 25 तारीख आ गई, दिन भर अभ्यास हुआ, 25 की रात भर अभ्यास हुआ, अभ्यास ही अभ्यास। कि जो कलाकार वकील का रोल कर रहे थे वो किराने वाले, उनकी सास की डेथ हो जाती है, प्राणांत हो जाता है उनका, अब क्या किया जाए। शाम को नाटक है, सुबह घर में ये नाटक हो गया, तो जो कलाकार थे जो वकील का रोल कर रहे थे उन्होंने डायरेक्टर महोदय को यानी उस अदालत नाम के नाटक के डायरेक्टर महोदय को समझा दिया कि साहब ऐसा है हमारी सास की तो डेथ हो गई है, हम तो आ ना पाएंगे, तो आप एक काम करिएगा कि एक कलाकार की आवश्यकता कहीं से आपको पड़ेगी, उसकी व्यवस्था आप कर लें क्योंकि हम नाटक में रोल नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर बेचारा बड़ा परेशान, ओ हो, ये कैसे कह रहे हो कलाकार, हम 2-4 घंटे में कहाँ से किसी कलाकार की व्यवस्था करेंगे, आप लोगों ने तो 2-2, 3-3 महीने तक अभ्यास किया है, अब 4 घंटे में हम कौन सा कलाकार कहाँ से किया जाए। तो कलाकार ने तो बोल दिया नहीं भाई नहीं, हम तो रोल करेंगे नहीं, आप कोई ना कोई व्यवस्था करिए।

मरता क्या न करता। तो उस डायरेक्टर ने क्या किया, पूरे इलाके में, पूरे गांव में क्या, आजू बाजू वाले गांव में भी एक ढिंढोरा पिटवाया एक कलाकार की जरूरत का। वो क्या ढिंढोरा था? आज रात को जो नाटक होने वाला है गांव में, उसका नाम है अदालत। उसमें एक कलाकार की जरूरत है, एक कलाकार की जरूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस नाटक में रोल करना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, तो आज दोपहर को 2 बजे डायरेक्टर महोदय के घर में इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार। आप लोग पधारें, जो जीत जाएगा, जो सफल हो जाएगा, उसको कलाकार बना दिया जाएगा। उसके बदले में उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पेपरों में नाम छपेगा, टेलीविजन में फोटो आएगा। तो सब ऐसा अनाउंसमेंट हो गया। अब एक कलाकार की जरूरत, वहां एक पहुंचते या दो पहुंचते, वहां पहुंच गए 450। सबके सब पूरी लाइन में लगे हुए हैं, एक के बाद एक। तो डायरेक्टर महोदय ने एक के बाद एक सबको बुलाया। जो सबसे पहली लाइन में सज्जन खड़े हुए थे वो कोई कलाकार तो थे नहीं, वो तो इसलिए पहुंचे थे कि 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, फोटो छपेगा पेपर में, टेलीविजन में नाम आएगा, फोटो आएगा, रेडियो वाले भी बोलेंगे, वगैरह वगैरह। इस लालच में वो पहुंच गए। वो कौन थे? वो थे एक दवाई वाले। कौन से दवाई वाले? कोई मेडिकल स्टोर्स वाले या आयुर्वेद शाला वाले नहीं। आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे रंग बिरंगी जड़ी बूटियां लेकर कोई सज्जन बेचते रहते हैं, वो ताकत की दवाइयां बेचते हैं, 125 रुपए की पुड़िया में शक्ति साली बनाने के लिए बड़ा दावा करते हैं। वो पहुंच गए, उन्होंने उस नाटक में अभिनय करने के लिए अपनी बात कही, इंटरव्यू में भाग लिया। तो डायरेक्टर ने बोला, अच्छा अंदर आइए, आप कोई है क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये डायलॉग है, इसको आपको बोलना है। ये संवाद ऐसा है कि आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे उनका खून हो गया है, उनके खून को गोपाल राव ने किया है, ये चश्मदीद गवाह इस समय अदालत में खड़ा है। बस इतना सा संवाद है, इसको आपको बोलिए, अगर आपने अच्छा बोल दिया तो हम आपको अपने नाटक में ले लेंगे, और नहीं तो आपको कहेंगे कि आप जाओ। तो दवाई वाला खुश, अरे कहने जरा सी तो बात है यार, हम अपने स्टाइल से बोलते हैं। तो दवाई वाले ने अपने स्टाइल से किस तरह से बोला, देखिए डायलॉग ये है, आशा देवी मर गई हैं, रात को 12 बजे उनका खून हो गया है, और गोपाल ने इसको खून को कर दिया है, और किसी ने देखा वगैरह वगैरह, बस इतना सा डायलॉग। अब दवाई वाला अपने स्टाइल से बोलता है किस तरह से, बताएगा, वो बताएगा खून का मामला है या कत्ल का मामला है या मर्डर का मामला है, या कौन बताएगा, कहां बताएगा, कैसे बताएगा, अरे 125 रुपए का तावीज उसके छाती पे रख देगा, वो बताएगा, वो भगवान के नाम पे बताएगा, अरे खून का मामला है या कत्ल का मामला है या मर्डर का मामला है, अरे कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में केला लौकी भिंडी दियो लटकाए, जिसको जितना चाहिए काट काट ले जाए, वो बताएगा ये खून का मामला है, मर्डर का मामला है, कत्ल का मामला है। तो डायरेक्टर बोलता है, हम आपको पहचान गए, सही बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, अब बाहर निकल जाओ, 2-4 महीने के बाद आप आना। उनको तो साहब बाहर कर दिया गया। अब पहुंचे नंबर 2, जिनकी गिनती न होती है कव्वालों में, बड़ा बढ़िया कव्वाली गाते हैं, वो भी अपने संगी साथियों के साथ, ढोलक तबले के साथ, हारमोनियम के साथ, गाने वालों के साथ चले आए। तो देखिए किसने किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत की। आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे हैं, खून का मामला है, किसने खून किया, वो खूनी कहाँ खड़ा है, वगैरह वगैरह। अब इस डायलॉग को बोल रहा है कौन, एक कव्वाल अपनी स्टाइल से।

सफाई से धोए हैं अपने हाथ, तो कहा है कि कातिल ने किस सफाई से धोए हैं अपने हाथ कि वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। अरे मोम के शहर में, मोम के शहर में उस वक्त तबाही होगी, कहा है कि मोम के शहर में उस वक्त तबाही होगी, बीच चौराहे पे जब

मेरी आशा रात के 12 बजे सो रही थी। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लखते जिगर, मेरा नूर नजर, मेरी आशा सो रही थी रात के 12 बजे थी। मैंने अपनी नजर से, नजरिया से, नैना से, दो दो कटा से चांद को देखा।

इंसान नहीं, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल मर्डर कर दिया हो मेरे जज साहब। मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस कातिल को कम से कम दिन में 3 बार फांसी

डायरेक्टर साहब बोलते हैं, कहले बहुत बढ़िया गाते साहब आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए लेकिन हम आपको ले नहीं पाएंगे अपने ड्रामे में, आप जा सकते हैं, चाय वाय के लिए आप चाहें तो पैसे ले लें। तो उनको पैसे चाय के दे दिए गए, उनको हटा दिया गया। अब पहुंचे कौन? एक ऐसे नेता जो अचानक वो स्पीकर में जो आवाज आ रही थी कि एक कलाकार की जरूरत की, उसको सुन के पहुंच गए और उनको भी वही डायलॉग दिया गया कि आशा देवी मर गई हैं और गोपाल ने उनको मारा है, अदालत में वो गोपाल खड़ा है, डायलॉग हो रहा है और सब बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब आपको अपने तरीके से बोलना है, आप अगर हमारे ड्रामे में रोल करना चाहते तो। नेता तो नेता बेचारे, कोई कामकाज तो वर्तमान में था नहीं उनके पास, तो चालू हो गए वो, उनको डायलॉग दे दिया गया। अब नेता तो नेता, बोलेंगे कैसा, वो वकील तो थे नहीं, वो तो अपने तरीके से वो चालू हो गए। किस तरीके से? प्यारे भाइयों, बहनों और साथियों, नहीं नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जज साहब, जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी के खास कर्मठ कार्यकर्ता जिसने 24 घंटे समाज की सेवा करने में अपना खून पसीना लगा दिया, ऐसी सच्ची वफादार सभी की चहेती मिलनसार मधुरभाषी आशा देवी का खून कर दिया गया है, आशा देवी का खून कर दिया गया है, जिसे विरोधी पार्टी वालों ने एक्सीडेंट का नाम दिया है, ये सरासर गलत है। आशा का खून मामूली नहीं था, उसके खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा।

0: हम खून का खून की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। हम हड़ताल करेंगे अगर खून की जांच नहीं की गई तो। हम हड़ताल करेंगे, हम सभी से समर्थन जुटाने का अनुरोध करते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलो, आशा देवी अमर रहे, आशा देवी आशा देवी आशा देवी। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा। इस तरह से वो ड्रामा आज तक नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी श्रोता को उस ड्रामे में रोल करना है तो हम आपको उनका पता बता देंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
3: राजेश मिश्रा, लगता है आपके घर के पिछवाड़े छुपकर मियां बीबी की बातें खूब सुनते हैं, इसलिए ये प्राइवेट बातें सुनाते ज्यादा हैं। देखे जरा क्या सुना रहे हैं।
4: भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू ए बाबू, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी।
5: क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा।
4: कहिए क्या बात है।
5: बाबू एक रोटी दे दो।
4: रोटी नहीं है,
5: फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू।
4: फटे पुराने कपड़े भी नहीं है
5: बाबू। गेहूं के दाना दे दो बाबू।
4: गेहूं का दाना भी नहीं है।
5: पैसे दे दो बाबू।
4: पैसे भी नहीं है।
5: अच्छा साहब, आपके पास कटोरा है?
4: क्यों
5: बाबू, ऐसा है अगर है क्या?
4: हाँ है,
5: तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो।
4: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले? क्या है?
5: कुछ दे दो भगवान भला करेगा।
4: उनने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले?
5: कहले साहब, जो आप कर रहे वही हम करते थे।
4: अब चुनाव का माहौल चारों ओर फिर से गर्म हो रहा है। हर नेता को ये लग रहा है कि पुनः हमको अपनी सीट जीतना है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी प्रमुख रूप से सामने आए। इस ओर आपको ले चल रहे हैं कि कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं। अभी कुछ समय से नेताओं के साथ साथ राजनीति में किन्नर लोगों का भी प्रवेश हुआ और किन्नर लोगों के प्रवेश से राजनीति में थोड़ा सा उथल फुथल हुई। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में बड़ी तनाव भी आया और कुछ लोगों ने उसको बड़ा हास्य और आनंदमय लिया। हिंदुस्तान है हमारा, हर किसी को स्वीकार किया जाता है, ये महानता है हमारे देश की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान में कैसे कैसे जनसंपर्क हो रहे हैं ये आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ कि जनसंपर्क के दौरान में कैसे हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं और आम सभाओं के वक्त कैसी हास्यप्रद बातें।
6: देखिए, आज की आम सभा हमारी प्रारंभ होने जा रही है और हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रमुख नेता आने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाकर रखें और थोड़ी देर में हमारे, हाँ नेताजी आ गया, आइए आइए।
4: देखिए हमारे नेताजी आपके बीच में हैं। ए ये बैठ जाओ, ये देखो यार भैया, ये विरोधी पार्टी वाले लोग ऐसा करते हैं यार। देखिए हमारे नेताजी बहुत ही पावरफुल नेता हैं, इनके

0: आपको मैं क्या बताऊं कि आज इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है इनके पास, ये सब जनता का है। ऐसे नेता आज हमारे बीच में हाजिर हैं। और नेताजी, अब नेताजी को बड़ा खराब लग रहा है कि जी बोलते क्या जा रहे हैं कि जो कुछ भी है और जनता का है। अब वो धीरे से उनके कान, क्या बोल रहे हो यार, जो भी है जनता का। हाँ, हमारा कहने का आशय, आप लोग गलत ना समझें, जो कुछ भी है जनता का है। इसका कहने का आशय हमारा ये है कि आप लोगों ने जो कीमती वोट दी है, इसके कारण आज नेताजी हैं। नेताजी, अब ये जो बीच के भाषण देने वाले होते हैं, वो तारीफ करने वाले होते हैं, अब वो किस ढंग से उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं, किंतु बोल कुछ और देते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं, और नेता को बुरा लगता है, कहीं कहीं कहीं कहीं अच्छा लगता है, तो वो धीरे धीरे कैसे सारे बाजी से उनकी बातचीत चलती रहती है, ये क्रम आप अपने आप समझते जाओगे कि यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ काटा गया है। तो हमारे नेताजी देखिए इतने सहज और इतने सरल व्यक्ति हैं कि आज ये जो कपड़े भी पहने हुए हैं, ये अपने नहीं पहने हुए हैं। यानी आप फिर गलत समझ गए होंगे, कपड़े अपने नहीं पहने, यानी कि ये अमीर गरीब किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के जिसका जिसने जो दे दिया कि ये आप स्वीकार कर लीजिए, नेताजी उसको स्वीकार कर लेते हैं कि समाजवाद है हमारा, हम किसी के साथ दो भावना नहीं रखते कि किस समाज का है किस समाज का। ऐसे महान नेता आज आपके बीच में आए हुए हैं, ऐसे महान नेता आपके बीच में, आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। अब देखिए आप उनको वोट दीजिए और इनको जिताइए ताकि हमारे यहाँ अब, और नेताजी अब इसके बाद जनसंपर्क के लिए जाएंगे। चलिए नमस्कार जी, नेताजी आए हैं तो क्या करें भैया, नहीं करना कुछ नहीं है, अब खड़े हुए हैं तो हमसे पूछ के खड़े हुए हैं क्या? नहीं नहीं दादा, इस बार इनको जिताना है, पिछली बार भी तो नहीं को जिताया था भैया, इस बार भी जिताना है। मतलब क्या है आपका? अरे मतलब ये कि इस बार फिर वोट देना। अरे यार भैया, पानी की समस्या हल नहीं हुई यार तुम्हारी। देखो दादा, पिछली बार इनने बोला था कि पानी आएगा, हाओ देखो इनने नल लगवा दिया ना, हाओ इस बार जिताओ नल में पानी भी आ जाएगा। अरे यार एकदम संजय कटौती हो जाती, लाइट गोल हो जाती, निकलो लोग लपाड़ा मार देते, पूछो कौन मार रहा है तो बोलते हैं कि भूत मार रहा है। कुछ टाइम तो सेट करा दो लाइट कटौती का दादा है। अब ऐसे गड्ढा कीचड़ होगा पूरो कॉलोनी में कि सब लड़का बच्चा एक से बिल्कुल दिखा दे कीचड़ में, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब कम से कम एंटी व्यवस्था कर दो, अब बच्चा ही नहीं पहचान पा, जब पूरे मोहल्ला के बच्चों के मुंह धो जब अपनो बच्चा पहचान पा। अब आज बच्चों को धोखा हो रहा हो, कल को आदमियों को धोखा होने लगे तो लफड़ाई कर रहा।
1: आगे बढ़े, महिला आई एक,
2: क्यों जयी है क्या नेताजी?
0: हाँ हाँ जयी है, जयी है।
2: राम राम नेताजी।
0: राम राम, कहिए क्या बात है?
2: एक समस्या थी हमारे यहाँ।
0: बताइए बताइए क्या समस्या?
2: समस्या ये थी कि हमारी लैट्रिन 3 दिन से साफ नहीं।
0: तो नेताजी बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
2: करना कुछ नहीं, आपको मुंह भर चलाना है।
0: आप लोग हंस देते हो, नेताओं से बुरा है, हम लोगों की हो जाती है।
3: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

हंसना मना है। इस धारावाहिक का 9वां भाग अभी आपने संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत सुना। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया, जिसमें भारतीय और न्यूजीलैंड सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। भारतीय रेल ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। और केंद्र सरकार ने उच्च अल्कोहल मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान छतरपुर केंद्र का है।

जीवन में सफलता का रहस्य सही समय पर सही निर्णय लेना है। चाणक्य के इसी सुविचार के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ राधिका वाजपेयी। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो सबसे पहले मन में क्या आता है? उसकी अच्छी शिक्षा, उसका उज्जवल भविष्य और समय आने पर उसकी जरूरतों को पूरा करने की चिंता। और इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। साथियों, ये योजना खास तौर पर बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर ये खाता खोल सकता है। साथियों, उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमों के अनुसार छूट भी दी जाती है, जैसे जुड़वा बेटियों के जन्म पर। दोस्तों, इस खाते में हर वर्ष न्यूनतम 250 रुपए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सरकार समय समय पर इस योजना की ब्याज दर तय करती है, जो सामान्य बचत योजनाओं की तुलना में अक्सर अधिक आकर्षक होती है। साथ ही उस योजना की एक और विशेष बात ये है कि इसमें जमा राशि, मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता पर प्राप्त राशि, तीनों पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लाभ उपलब्ध हो सकता है। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए कुछ राशि निकाली जा सकती है। वहीं 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है और पूरी राशि बेटी को मिल जाती है। दोस्तों, ये योजना सिर्फ बचत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक संदेश भी देती है कि बेटियां परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर आज हम छोटी छोटी बचत की आदत अपनाते हैं तो आने वाले वर्षों में यही बचत हमारी बेटियों के सपनों को नई उड़ान दे सकती है। साथियों, याद रखिए, बेटियों पर किया गया हर निवेश केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निवेश होता है। और सुकन्या समृद्धि योजना इसी सोच को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। तो साथियों, ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना पर। साथियों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं खामोशी फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, खामोशी फिल्म के इस गीत को आवाज दी थी कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू ने। गीत था मजरू सुल्तानपुरी का, जिसे संगीत से सवारा था जतिन ललित ने। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर कोई इमारत लगभग 2000 साल से भी अधिक समय से खड़ी हो, जिसने साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा हो, लाखों लोगों की तालियां सुनी हो और आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हो, तो क्या वो सिर्फ एक इमारत होगी? बिल्कुल नहीं, वो इतिहास की जीवंत गवाही होगी। आज हम बात कर रहे हैं कोलोसियम की। कोलोसियम इटली की राजधानी रोम में स्थित एक विशाल प्राचीन एम्पीथिएटर है। इसका निर्माण पहली शताब्दी रोमन सम्राट वेस्पासियन ने शुरू करवाया था और उनके पुत्र टाइटस ने लगभग 80 ईस्वी में इसे पूरा कराया। उस समय ये केवल एक भवन नहीं था, बल्कि रोमन साम्राज्य की शक्ति, कला और इंजीनियर का अद्भुत उदाहरण माना जाता था। साथियों, कहा जाता है कि इसमें लगभग 50,000 से 65,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी, जो उस समय की वास्तुकला की एक बड़ी उपलब्धि थी। साथियों, कोलोसियम में ग्लेडिएटरों के युद्ध, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सार्वजनिक आयोजन होते थे। आज जब हम इन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी समझते हैं कि समय के साथ समाज के विचार और मानव मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है। वहीं सदियों के दौरान भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से कोलोसियम को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसका अधिकांश भाग आज भी सुरक्षित है। इसकी भव्यता आज भी लोगों को प्राचीन रोमन सभ्यता की याद दिलाती है। साथियों, आज कोलोसियम केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। कोलोसियम पर्यटक, शोध और सांस्कृतिक अध्ययन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल हमें केवल अतीत की घटनाएं नहीं बताते, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी संस्कृति, कला और विरासत से होती है। जब हम इन धरोहरों का सम्मान करते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित रखते हैं। इतिहास केवल किताबों के पन्नों में नहीं मिलता, वो ऐसी धरोहरों की दीवारों में भी सांस लेता है। इसीलिए जहाँ भी जाएं, अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करें, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को सहेजता है, वही भविष्य को और अधिक सशक्त बनाता है। साथियों, ये तो थी चर्चा ऐतिहासिक स्थल कोलोसियम के बारे में। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं वार्ता वन्य जीव संरक्षण का महत्व। वार्ताकार है अर्पित रावत।
1: इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा जीवित ग्रह है जहाँ पर जीव जगत का अस्तित्व है। जीवन के पंच महाभूत विश्व ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ है। आकाशगंगा में इतना अनोखा ग्रह ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ग्रह की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वह जीव जो स्वच्छंद रूप से एक विशिष्ट एवं निश्चित प्रकृतिवास में जानवर के रूप में वन में निवास करते हैं, उन्हें हम वन प्राणी की संज्ञा देते हैं। वह वन प्राणी दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। इसी प्रकार मनुष्य के भोजन की प्रवृत्ति की दो प्रकार होते हैं, सामिष और निरामिष। श्रोताओं, आदि मानव बलकल वासन धारण करता था और मांस

शाकाहारी था। जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था वह पशुओं का शिकार करता था, लेकिन अग्नि के आविष्कार के बाद वह मांस और अन्य प्रकार के भोजन को पकाकर खाने लगा। उस युग में सघन और जरूरत से ज़्यादा वन थे, इसीलिए उस युग में आखेट पर प्रतिबंध नहीं था। युगांतर में राजा महाराजा भी निश्चित वन क्षेत्र में संयुक्त अनुशासित शिकार किया करते थे। यह आदि मानव से आज तक का आधुनिक आदमी भी मानता है और जानता है कि वन्य प्राणी हमारे सच्चे साथी हैं, क्योंकि वन्य जीवों से ही वनों की शोभा में वृद्धि होती है। वन्य जीवन का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अस्तित्व पर निर्भर है। इनसे प्रकृति शोभायमान होती है और इनके संरक्षण से ही वन एवं प्रकृति को अक्षुण रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, वन्य जीव हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। इनकी रक्षा से जीवन की रक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। संसार में सूक्ष्म से विशालकाय प्राणी पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसमें से किसी भी प्रजाति के लुप्तप्राय, संकटग्रस्त या समाप्त होने से यह नाजुक पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा जाएगा। वन्य प्राणी प्रकृति को संतुलित रखने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। वे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। प्राणियों तथा पौधों के पोषण संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चीतल प्रजातियों घास खाती हैं और इन प्रजातियों को मांसाहारी पशु जैसे बाघ, तेंदुआ आदि खाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला के संतुलन से ही पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों का अस्तित्व कायम रह सकता है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय देवी देवताओं के वाहन वन प्राणी ही थे, जैसे दुर्गा का वाहन सिंह, विष्णु का वाहन गरुण, गणेश का मूषक, कार्तिकेय का मोर, गंगा का मगर, सरस्वती का बतख आदि। कछुआ, मत्स्य और वारा आदि विष्णु के अवतारों में से एक थे। हाथी को गणेश के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा पत्रों को प्रेषित किया जाता था। तोता पालने का चलन तो घर घर में था। बहुत से वन प्राणी हमारे पालतू बनकर हमारे सामाजिक साथी कहलाते हैं, जैसे गिद्ध हमारे समाज का सफाईकर्मी कहलाता है। दुर्भाग्य से इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पेंगुइन, भालू आदि चींटियों को खाना पसंद करते हैं, मगर पानी के किनारे या भीतर वन प्राणियों के सड़े गले अवशेष खाकर पानी की शुद्धता और गुणवत्ता को बरकरार रखता है। भारत में वन प्राणियों का शिकार 1972 से प्रतिबंधित है। जब वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 पूरे देश में लागू हुआ, वन की रक्षा से ही वन प्राणियों की सुरक्षा होती है। वन, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास के मैदान, भांति भांति के जंगली जानवर और पक्षियों के निवास स्थल हैं। इसलिए वन प्राणी के लिए वनों की रक्षा और संरक्षण आवश्यक है। आज मनुष्य यह भूल बैठा है, पृथ्वी में अन्य जीव जंतुओं को रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य को। वस्तुतः मनुष्य जीव जगत तथा वनस्पति एक दूसरे के अस्तित्व के लिए न केवल आवश्यक हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। इनके हित में कोई टकराव नहीं है। यदि मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से भूमि और प्रकृति के तमाम साधनों का उपयोग करें, तो प्रकृति भी सभी अंग जिनमें वन प्राणी भी सम्मिलित हैं पृथ्वी का एक साथ विद्यमान रह सकते हैं। अतः हम विवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति के संसाधनों का दोहन करें। आधुनिकता और औद्योगिकरण के इस युग में यदि अपनी खुशहाली बनाए रखना है तो इस दुष्कर दायित्व का वहन करना ही होगा, क्योंकि वन पशुओं के विनाश का अर्थ है प्रकृति का असंतुलन। ईशावत्स्याम इदम सर्व यति किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंचिता मा ग्रद कश्चित धनम। ईशोपदेश के इस श्लोक के अनुसार यह विश्व परम शक्तिमान ईश्वर के द्वारा निर्मित जीवों के प्रयोग एवं लाभ के निर्मित किया जाता है। अतः जीव प्रजातियों को परमेश्वर द्वारा निर्मित इस विश्व के लाभों का उपयोग एक तंत्र की इकाई के रूप में बने रहकर करना सीखना चाहिए। किसी जीव प्रजाति को अन्य प्रजातियों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि वन प्राणी संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे है। हालांकि सोनचिरैया अभयारण्य समाप्त किया जा रहा है, पर्यावरणविदों की विशेष रुचि और जन आंदोलन तथा मीडिया के कारण इंदौर का राला मंडल अभयारण्य समाप्त होते होते बच गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभय वन में बसे गांवों के निवासियों एवं वन प्राणियों के हितों में टकराहट ना हो, इसलिए इन गांवों के विस्थापन की व्यवस्था का प्रबंधन भी किया गया है, ताकि जनता को कोई कठिनाई ना हो। वन्य प्राणी अभय स्थल जैसे अभय वन, राष्ट्रीय उद्यान तथा बायोस्फीयर रिजर्व वन प्राणियों के लिए विशेष रूप से घोषित किए जाते हैं तथा वहां विशेष रूप से वन प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन का प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के बलबूते पर ही
अनेक संकटग्रस्त लुप्तप्राय और दुर्लभ

0: जातियाँ जैसे बारहसिंघा, चीतल, जंगली भैंसा, सोन चिरैया, खरमौर, कृष्णमग, चौसिंघा और बर्फीला चीता और घड़ियाल जैसी प्रजातियों को बचाया जा रहा है। सोन चिरैया, खरमौर, घड़ियाल, कृष्णमग आदि के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में पृथक से अभयारण्य बनाए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेषकर रतलाम अंचल में लुप्तप्राय पक्षी खरमौर को प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली के प्रयास से संरक्षण मिला है। इसी पक्षी के संरक्षण संवर्धन के लिए सैलाना में पृथक से अभयारण्य बनाया गया है। लुप्तप्राय सरीसृप घड़ियाल के संरक्षण के लिए सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल और चंबल राष्ट्रीय अभयारण्यों की स्थापना की गई है। कृष्णमग की रक्षा के लिए बगदरा, सीधी एवं नौदेही सागर में अभयारण्य का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में बारहसिंघा को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है, जबकि आज से 40 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में बारहसिंघा की नस्ल समाप्ति पर थी। इनकी संख्या सिर्फ 60 के आसपास रह गई थी, लेकिन अब विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में यह पर्याप्त संख्या में है। लुप्त होते खूबसूरत पक्षी दूरदराज का संरक्षण बेहतर तरीके से हो, इस हेतु इसे प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के पूर्व 40,000 बाघों की संख्या स्वतंत्रता बाद घटकर 4,000 रहने के कारण टाइगर प्रोजेक्ट भी प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यानों में लाए हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सृष्टि में वन्य प्राणी मनुष्य के सच्चे जीवन साथी हैं। विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां मनुष्य वन्य जीवों को अपना मित्र बनाकर उनके साथ सारा जीवन गुजार देते हैं। अनेक प्रकृति प्रेमी एवं वन्य विशेषज्ञ तथा वन्य प्राणी प्रेमी इन वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन एवं सेवा के लिए अपना सारा जीवन तक समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही जीव और जीने दो तथा अहिंसा परमो धर्म जैसे सिद्धांत चरितार्थ हैं। अतः वन्य प्राणियों के शिकार ना करके हमें उन्हें कैमरे में कैद करें तथा उनके सच्चे साथी बनें, ताकि यह बेजुबान वन्य प्राणी केवल किताबों की वस्तु बनकर ना रह जाएं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता वन्य जीव संरक्षण का महत्व। वार्ताकार थे अर्पित रावत। साथियों, कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग 24 घंटे में ही अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को हमेशा यही शिकायत रहती है कि समय ही नहीं मिलता। दिलचस्प बात ये है कि समय सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसका सही उपयोग करता है और कोई उसे बिना सोचे समझे गवा देता है। यही हमें समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का महत्व समझाता है। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय की सही योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और प्रत्येक कार्य को उचित समय पर पूरा करना। इसका उद्देश्य केवल अधिक काम करना नहीं, बल्कि सही काम सही समय पर और सही तरीके से करना है। साथियों, आज के समय में विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा लोग हों या व्यवसायी हों, हर किसी के लिए समय प्रबंधन एक आवश्यक कौशल बन चुका है। साथियों, यदि हम अपने दिन की योजना पहले से बना लें, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक कार्यों में समय न गवाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य समय पर प्राप्त कर सकेंगे बल्कि मानसिक तनाव भी कम कर सकेंगे। दोस्तों, समय प्रबंधन का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इससे अनुशासन की आदत विकसित होती है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति दूसरे के समय का भी सम्मान करता है। यही आदत उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। साथियों, महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि समय का सही प्रबंधन भी आवश्यक है। आज मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और मनोरंजन के अनेक साधनों के बीच समय का सही उपयोग करना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तकनीक का उपयोग करें लेकिन उसे अपने समय पर हावी ना होने दें। साथियों, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए समय को व्यर्थ ना जाने दें बल्कि उसका सदुपयोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी को सफलता और सम्मान दिलाता है। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं गीत संगीत की ओर। सुनवाते हैं टू स्टेट फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

स्टेट। अभी आपने सुना इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज़ दी थी अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा ने। अमिताभ भट्टाचार्य की रचना को संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। साथियों, अब आपको बता देते हैं रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। पद का नाम सेक्शन कंट्रोलर, पद की संख्या 119। साथियों, शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। साथियों, आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15 जुलाई 2026 है, वहीं अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। साथियों, जानकारी और विचारों की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए अपनी दोस्त राधिका वाजपेयी को

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की ही शुरुआत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गीत। गीतकार हैं मजरूह और संगीतकार आर डी बर्मन।

आज़ाद। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अमित त्रिवेदी और मीनल जैन की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

और आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में देव कोहली का लिखा और राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है मैंने प्यार किया।

अगला गीत छावा फिल्म से है, हीरल विरदिया और एआर रहमान की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, संगीतकार एआर रहमान।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए। दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का गीत, इसे गाया है यशुदास, हेमलता और बांसुरी सेन गुप्ता ने। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अभी आपने ये गीत सुना, यशुदास, हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता ने इस गीत को गाया था। दुल्हन वही जो पियामन भाई फिल्म के लिए इस गीत को लिखा और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। और इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य युवा शक्ति को प्रदेश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे।

हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया, जिसमें भारतीय और न्यूजीलैंड सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन चावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रूपये की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल. मुरगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। और भारतीय रेल ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
3: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं,

0: उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल

नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजातशत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार, गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह

0: 바보, 빨리 나오네. 빨리 바보리, 빨리 시바이 하게. 빨리 나오게.
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
4: सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो,
4: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो
4: मेरे वीरों, सबर करो साथियों।
3: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: धन्य हो
4: आचार्य।
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग
0: उमंग उमंग अभी आपने एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूची

ना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर्स 2660902 या 2660903 पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। 12 जुलाई 2026, समय 7:30 से 8 बजे के बीच, फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के शुरू में सुनिए धूमधाम फिल्म का गीत विशाल ददलानी की आवाज़ में। सिद्धांत कौशल ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं क्लिंटो सेरेजो और बेंका गोम्स।

अगला गीत चांदनी फिल्म से है, आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ें। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं शिव हरी।

फतेह, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, जुबिन नौटियाल और विवेक हरिहरन की आवाज़ों में। मनदीप खुराना ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं विवेक हरिहरन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत कुर्बान फिल्म से है, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजें। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए नादानिया फिल्म का गीत सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं सचिन जिगर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।

नसंसनी ना उत्तेजना ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की

0: संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में। 9:30 पर खेल जगत में हम सुनवाएंगे अमर भटकर से की गई भेंट वार्ता, मध्य प्रदेश में स्केटिंग की संभावनाएं। भेंट करता है मनीष गजबिये। आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आनंद लीजिए अम्बरीश कालेले के गिटार वादन का, राग होगा गावती। आज शाम 7:21 पर भोपाल केंद्र से प्रसारित ग्राम सभा में सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। 9:30 पर सुनिए चंद्रकला साहू के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत लोक संगीत कार्यक्रम में। इनसे मिलिए कार्यक्रम में 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे देश के प्रख्यात और बहुचर्चित कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से शोभम तिवारी की बातचीत। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 10 बजे। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में दस बजकर तीस मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे मालविका कानन के ख्याल गायन, राग है देसी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे हम सुनवाएंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12 बजे और दोपहर 2:30। 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय क्रम के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी। हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां रीवा केंद्र की होंगी। कल शाम 7:45 पर सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। सुर्खियों में ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8 बजे। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृति भारती और 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनवाएंगे डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल शाम 7:21 पर भोपाल से।

ग्रामसभा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ऐतिहासिक, 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑकलैंड दौरा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में किया 5,017 करोड़ रुपए की उज्जैन जावरा 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन। वहीं मुख्यमंत्री कल इंदौर में करेंगे मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव का शुभारंभ। और उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी कवच प्रणाली के लिए मंजूर हुए 206 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचे हैं। करीब 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। लोगों ने तिरंगा लहराते हुए किया ओरा मोदी के नारे लगाए। इस यात्रा में व्यापार, निवेश, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम उज्जैन जिले के नागदा में आयोजित हुआ। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ाव मिलेगा। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को इसका खास लाभ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय नागदा और जन सेवा पहली नेटवर्क का भी शुभारंभ किया।
1: एक साथ 2 बड़ी-बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा। नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा।
0: ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन करने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके हित में सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति की अनुशंसाएं मिलते ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25% आरक्षण और आयु सीमा में छूट दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का आह्वान किया है। इसी क्रम में 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर में मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर

स्वागत है। भारतीय रेल ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर कवच प्रणाली लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली घनी आबादी वाले मार्गों पर लागू होगी। कवच प्रणाली सिग्नल उल्लंघन और ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है। ये प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक भी लगाती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड के अटेर चंबल पुल परियोजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में पुल के शेष कार्य के लिए लंबित वन विभाग एनओसी जल्द जारी करने का आग्रह किया है। श्री सिंधिया ने कहा है कि पुल बनने से दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल की है। अब कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 8 जुलाई को पहली बार एक दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को ये राशि दी गई। अपर मिशन संचालक दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि ये व्यवस्था 26 अगस्त 2025 से लागू है। 1 सितंबर 2025 के बाद सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। मिशन कर्मचारियों को अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति जैसे लाभ भी दे रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। इसी महीने की 1 तारीख को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया था। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने मेटा को इस फीचर पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश किया था कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर को लागू ना किया जाए। प्रदेश की 2 महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। यह शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। दोनों खिलाड़ी कल स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12% से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री पर नई शर्त लगाई है। अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। ये दवाएं ओवर द काउंटर श्रेणी से बाहर कर दी गई हैं। फार्मासिस्टों को अब केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही इन्हें उपलब्ध कराना होगा। आज विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेत्रदान में मृत्यु के बाद कार्निया जरूरतमंद मरीजों के लिए दान किया जाता है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 लोगों को दृष्टि मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रक्रिया चेहरे की बनावट को प्रभावित नहीं करती। भारत में मांग के मुकाबले दान किए गए कार्निया की संख्या अब भी काफी कम है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज 8796 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। अब तक 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे की रतलाम मंडल ने एक अभिनव पहल करते हुए रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम में स्थापित 30 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का पुनर्स्थापन कर उसे सोलर कॉर्पोरेट के रूप में विकसित किया है। कटनी में वर्षा ऋतु के दौरान जल जमाव से राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। धार जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल आदेश जारी किया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल ना दें। खंडवा पुलिस अधीक्षक ने जिला कंट्रोल रूम में न्यायालयों में पदस्थ कोर्ट मुहररों की मासिक बैठक ली। नर्मदापुरम जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग 13 से 18 जुलाई तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का 3रा चरण चलाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा सुनवे वारे हमारे सभी भैया बहनन को आपकी बहन अंशु तलेठे की नेह और स्नेह भरी राम राम पहुंच जावे। मन तक खरीफ की फसलन की बुआई हमारे भैया हरे कर चुके हुई हैं और पानू कऊँ कऊँ तो अच्छो गिर रो मनो कऊँ कऊँ अबे कसर है। सो हम भगवान से प्रार्थना करत हैं कि हमारे भैया हरन की फसलन के लाने पानू की कऊँ ना पड़वे। भैया और जा बात हम सभी अच्छे से जान गए हैं कि जैविक खेती के कितने फायदे हैं और कितने दूरगामी अच्छे परिणाम हैं। कैसे जैविक खेती करवे से हमारी प्रकृति के संगे हम आगे बढ़त हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करत हैं, अपनी जमीन की माटी की रक्षा करत हैं और पर्यावरण की रक्षा करत हैं। सो आज जो हम विषय हम लेके आए हैं आपसे बात करवे को कि जैविक खेती अपनाएं, अपनी प्रकृति को सुरक्षित करें, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें और अपने आप को सुरक्षित करें। कैसे जैविक खेती करवे से हम और उनकी स्वास्थ्य के संगे संगे पर्यावरण की रक्षा है और जब पर्यावरण हुई है तब हम हुई हैं। तो भैया हरो जैविक खेती अपनाओ कैसे। शुरू में तो लगत है कि जैविक खेती हमें मांगू पड़ रही है, मनो जैसे जैसे धीरे धीरे हम ये अपना जाते हैं तो जैविक खेती अपने फायदे हमें दिखाने लगत है। कैसे आज जैविक खेती को बाजार बहुत बड़ो है, लोगन के पास पैसा है, मनो अच्छो खावे के लाने नहीं आ। सो वही बात को ध्यान में रखें, हमें जैविक खेती अपनाने हैं और अपने लाने और सबके लाने अच्छो खाना पहुंचाने हैं। सो जैविक खेती अपनाओ जा बात एक महत्वपूर्ण बात आज आपसे करने थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात भैया और जा करने थी कि हमारी सरकार मुश्किलों योजनाएं चलात है कि किलाने अपने किसान भैयन के फायदे के लाने, आर्थिक फायदा के लाने और तरक्की के लाने। उन्हीं में से भैया रो एक योजना सरकार ने तत्वाधान में लाई है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति। इमें खेती के लाने नई तकनीक, जानकारी और प्रशिक्षण आप और उनको दो जात है। संगे संगे जिला स्तर पे ये चलाओ जात है। एक मुख्य उद्देश्य है भैया हरो नई तकनीक से जुड़वो, प्रशिक्षण दे के संगे संगे भ्रमण भी करावो और कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य सभी विभागन को संगे लेके जा योजना काम करत है। इसे फायदा जो होते वो सो ही हम आप और उनको बता देते हैं। मुफ्त ट्रेनिंग दी जाते है और कार्यशाला लगाई जाते है जिससे कि हमारे किसान भैया हरे नई नई तकनीकें सीख सकें। खेती की नई तकनीक को डेमो सोई दो जाते है भैया ये योजना के तहत। मेला और प्रदर्शनी के माध्यम से भी जागरूक करो जाते है और इके जो ये प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति से जुड़त है और कोनो अच्छो अपने खेतीबाड़ी में काम करत है अपने में सो वे प्रोत्साहन दो जाते हैं और पुरस्कार सोई दो जाते हैं जिससे कि भी और आगे बढ़े और अच्छो काम करें। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पे ही में दी जाते है और लैब में बनी तकनीकन को सीधे सीधे खेत में पहुँचाओ जाते है। ई योजना को जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो जो है कि ई योजना में किसान, कृषि वैज्ञानिक, बैंक और सरकारी अधिकारी सभी शामिल होते हैं और सभी की मदद से हमारे किसान भैयन को ये तकनीक को पहुँचाओ जाते हैं, नई नई तकनीकन को सिखाओ जाते हैं जिससे कि खेतीबाड़ी आसान हो सके। तो ये दो जरूरी बातचीत थी हमारे भैयारन के लाने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं भैयारो और बुंदेली समाचारन की बिरिया हो गई है सो हम बुंदेली समाचार सुनाए देते हैं।

0: बुंदेली समाचार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे हैं। हवाई अड्डा पर प्रधानमंत्री लक्सन ने उनको स्वागत करो, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाओ, रनवे पर भारतीय और न्यूजीलैंड सशस्त्र बलों ने भी औपचारिक स्वागत करो। इससे पहला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उनने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलेब्रेशन रोडमैप को शुभारंभ करो हतो। उन्हें कही थी कि खेल दोई देशन को जोड़वे की अनोखी ताकत राखत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन

जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग को भूमि पूजन करो। लगभग 99 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 5,017 करोड़ रुपया की लागत से बने है। इसे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधो जोड़ो जे है। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को इको खास लाभ हुई है। 2 साल में तैयार होने वाली ई परियोजना से 35 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 को शुभारंभ कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 युवाओं की सहभागिता वाले ई महा आयोजन को उद्देश्य युवा शक्ति को प्रदेश के विकास की मुख्यधारा से जोड़वो है, उनके विचारन की नीति निर्माण में शामिल करवो है तथा विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करवो है। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, उद्यमिता, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, संस्कृति, पर्यावरण तथा सामाजिक विकास सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के युवा सहभागिता कर रहे हैं। कॉन्क्लेव में युवाओं को विभिन्न विषयगत समूहों में विभाजित करके कार्यशाला को आयोजन करो जाए है। इन कार्यशालाओं में युवा स्वयं अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सुझावों, नवाचारों और भावी कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श कर क्रियान्वयन योग्य संकल्प तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी में कमी पे सख्त निर्देश दिए हैं। उनने अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को गहन समीक्षा करवे के लिए कही है। अब सभी जिला कलेक्टर कमी के कारणों की पहचान कर हैं। ई वर्ष गेहूं खरीदी में प्रति क्विंटल कमी घट के 70 ग्राम रह गई है, जो पिछले वर्ष से काफ़ी कम है। बावजूद इसके कमी की भरपाई संबंधित समितियों और परिवहन कार्यकर्ताओं ने कराई जाए है। गृह विभाग ने पद्म पुरस्कार 2027 के लाने नामांकन आमंत्रित करे हैं। कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग, वन्यजीव संरक्षण और कृषि जैसे क्षेत्रन भी इसमें शामिल करे जा सकें। इच्छुक व्यक्ति जिला कलेक्टर के माध्यम से पोर्टल पर 15 जुलाई तक नामांकन दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार को सीधो नामांकन के लाने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को भी उपयोग किया जा करो जा सकते हैं। प्रदेश में यात्री सुरक्षा को लेकर अभियान चलाओ गो है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर लोक परिवहन बसन की विशेष चेकिंग करी। 1 सप्ताह तक चले अभियान में 12,000 से अधिक बसन को निरीक्षण करोगो। जांच में 4,787 चलान बनाए गए और 33 लाख रुपया को जुर्माना वसूलो गो। 128 बसन में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई। इनमें से 22 वाहनन के फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। आज विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जा रहा है, जो दिन लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करवे के लिए मनाया जाते हैं। नेत्रदान में मृत्यु के बाद कॉर्निया जरूरतमंद मरीजन के लिए दान करो जाते हैं और एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 लोगों को दृष्टि मिल सकत है। विशेषज्ञ के अनुसार जो प्रक्रिया चेहरा की बनावट को प्रभावित नहीं करत है। भारत में मांग के मुकाबले दान करे गए कॉर्निया की संख्या अब भी काफ़ी कम है। प्रदेश की 2 महिला मुक्केबाजन को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा को चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लाने भाव है, जो शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुई है। 2 खिलाड़ी कल स्कॉटलैंड के लाने रवाना हुई हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने 2 को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अब तक 234.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी गई, जो सामान्य से 10% अधिक है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 32 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश भई है। मौसम विभाग ने पन्ना और सतना के लाने भारी बारिश को अलर्ट जारी करो है। विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश जारी रहने को अनुमान लगाया गया है। जे हते आज के बुंदेली समाचार।

0: बुंदेली समाचार।
1: भैया हरो बिन्ना हरो, जैसो कि आप उन्हें जानते ही हो कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लेके आते हैं आप लोगों को पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतन को, कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। सो हम आपकी चिट्ठियां लेके बैठ गए हैं और एक एक करके हम अपने श्रोता भैया बहन की चिट्ठियों के हिसाब से आप और उनको गाना सुनवा रहे हो। जब पहली चिट्ठियाँ हमारे हाथ में आई है नेपाल पैलेस सागर से,

तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन की इन सभी भैया बहनों ने सुन बचाओ है कभी कभी फिल्म को जो गीत जिए गाओ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, ये लिखो है साहिर लुधियानवी ने और एक ही तर्ज बनाई है खयाम ने। तो सुनते हैं जो मीठा सो गीत।

जहाँ दूसरी चिट्ठियाँ हमारे हाथ में हैं, जहाँ हमें आई है गांव भड़भूंजी जिला आगर मालवा से रघुनाथ मालवीय, सुषमा, मंजू, बबीता, ओम और

प्रकाश जी की। संगे संगे ई गाना की एक और श्रोता भैया बहन हमें फरमाइश कर रहे हैं जे, हमें आई है चिट्ठियाँ छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झविंद कुमार वर्मा और इन सभी भैया बहन की पसंद पे हम जो गाना लेके आए हैं फिल्म आपकी कसम को, जियो गाव है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने और इखो संगीत से सजाओ है आर डी बर्मन ने और ये लिखो है आनंद बख्शी ने। सुनते हैं जो मधुर संगीत।

भैया रो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पहला एक जरूरी सूचना दे दें फिर हम अगली चिट्ठियां ले हैं। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को संजय बेरिया 7:30 बजे से 8 बजे लो सजीव फोन इन कार्यक्रम को प्रसारण करो। जो है ई हैलो ग्राम सभा के लाने विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामायिक कार्य। ई कार्यक्रम में जो श्रोता भैया बहने अपनी समस्या और जिज्ञासाओं को समाधान चाहते हैं वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को संजय के 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पे फोन लगा के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर फिर को सुन लो, दिनांक 12 जुलाई 2026 को संजा के 7:30 बजे से 8 बजे लो, फोन नंबर है 2660902 और 2660903 और भोपाल के बायरे के श्रोताओं के लाने एसडी कोड है 0755। तो जहाती जरूरी सूचना। अब अगली चिट्ठियां हम ले लेते हैं, जहां हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या, इन सभी भैया बहन ने सुन बचाओ है फिल्म खेल खेल में को जो गीत, ये गाँव है किशोर कुमार आशा भोंसले ने, ये लिखो है गुलशन बावरा ने और इसकी तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

मैया आयरो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और चिट्ठी हमारे पास है जहाँ हमें आई है खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर पोस्ट राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश से। और जो हमारे लिखे बारे भैया बहन हैं मनीष कुमार पाराशर, नन्नी परी बेबी आकांक्षा पाराशर, अधिका जीवी जीवा खुशी बाबू जी श्री प्रेम नारायण पाराशर, हीराबाई पाराशर, हेमंत किशन अभिषेक दीपेश मोहित मयंक अनीता सविता छोटी बहू पूनम पाराशर, रविशंकर दुबे निरंजन राकेश मुकेश तरुण प्रवेश पवित्र नमन अंजलि दुबे धर्मेंद्र गोस्वामी जानकी गोस्वामी नन्ने भाई वृंदावन राजा पुष्पेकर और गिरीश दीपक गौरीशंकर सभी पाराशर परिवार के भैया बिन्ना हरण्य सुनबो चाहो है जो धर्मकांटा फिल्म को गीत जिए गाँव है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने और इखो लिखो है मजरूह ने और एक तर्ज बनाई है नौशाद ने।

मैं यारो कार्यक्रम में आगे बढ़त है और अगली चिट्ठिया हमारे हाथ में है, जहाँ हमें आई है घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। और संगे संगे हमें ई गाना की फरमाइश एक और चिट्ठिया के माध्यम से लिख भेजी है, ग्राम बड़ बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रेमिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, इन सभी भैया बहन ने सुनबो चाहो है। जुल्म की पुकार को जो गीत जिए गाओ है मोहम्मद रफ़ी और चंद्राणी मुखर्जी ने, इखो लिखो है वर्मा मलिक ने और ये संगीत से सजाओ है सोनिक ओमी ने। सुनत हैं जो मधुर सुगीत।

मैहरो कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में आ चुको है, सो कछु वैज्ञानिक सलाह माप और उनको देना चाहू थे। मौसम की परिस्थितियाँ धान की नर्सरी तैयार करवे कराने अनुकूल हैं, सो नर्सरी तैयार कर ले में आप और ऊंची एवं समतल क्यारियाँ तैयार करें तथा अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद एवं कार्बेनाजिम अल्फा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या डाइकोडर्मा अल्फा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से बीजोपचार करें। नर्सरी में उचित नमी बनाए रखने के लाने तथा अत्यधिक गर्मी से बचाव हेतु पुआल आदि से हल्को आवरण कर देवे और स्वस्थ पौध तैयार करवे के लाने कीट एवं रोगन की नियमित निगरानी करवे में और बुआई की तैयारी हेतु कृषि आदानों की व्यवस्था करें। सोयाबीन की बुआई के लाने संगे संगे उन्नत एवं अनुशंसित किस्मन को चयन करवे, पर्याप्त नमी उपलब्ध होवे पे बुआई करें। जहती वैज्ञानिक सलाह और कल भुनसरा कृषि चर्चा में सुनो पॉली हाउस में सब्जी की खेती, विशेषज्ञ हुई है डॉक्टर प्रीति चौहान। तो जहती आज की ग्राम सभा, अब आज्ञा दो अपनी अंशु बहन को और स्वीकारो हमारी नेह और स्नेह भरी राम राम।

ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों।

0: में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार टीना झा।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूँ टीना झा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों बाद न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ऑकलैंड का प्रतिष्ठित स्काई टावर भी भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता के रंगों में जगमगा था। वहीं भारतीय समुदाय में भी इस यात्रा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं है। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस यात्रा का रणनीतिक महत्व क्या है, भारत की इंडो पैसिफिक नीति में न्यूजीलैंड की क्या भूमिका है और ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को किस नई दिशा में ले जा सकती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनयिक और भारत के पूर्व राजदूत श्री गुरजीत सिंह जी। अम्बेसडर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अम्बेसडर, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा है। जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, स्काई टावर को जिस तरह से रोशन किया गया है या फिर जिस तरह से भारतीय समुदाय का उत्साह देखने को मिल रहा है, इन सब के अपने प्रतीकात्मक मायने हैं। लेकिन आपकी नजर में क्या ये यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है?
3: निश्चित है कि ये एक नया दौर शुरू हो रहा है। चाहे ये भारत के प्रधानमंत्री की 40 साल के बाद एक यात्रा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर लुक्सॉन के साथ भी उनकी पहली मुलाकात ईस्ट एशिया समिट के साइडलाइंस पे लाओस में हुई थी। तो हमने पूरी कोशिश की है कि न्यूजीलैंड के साथ अपना संबंध बनाएं, चाहे कि एक बहुत बड़ी विजिट ऐसी नहीं हो। तो उनके प्रधानमंत्री भी पिछले साल आए थे, उनके विदेश मंत्री भी आए थे और उन दोनों का आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हालांकि वो दोनों एक ही सरकार में हैं, उनकी पार्टियां अलग हैं और हमारे साथ जो FTA हो रहा है उनके ऊपर उनका नजरिया अलग है। तो हमने न्यूजीलैंड के हर कोने की जो एक सोच है उसके साथ संबंध बनाए हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूजीलैंड गए हैं तो वो विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, वो ना तो क्वाड का मेंबर है और ना ही इंडो पैसिफिक में इतना एक्टिव है, लेकिन अब वो भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देख रहा है और भारत उसका पूरे रूप से सम्मान से उसका जवाब दे रहा है।
2: बिल्कुल, तो इस बारे में क्या आउटकम रहेगा, दोनों प्रधानमंत्री जब वार्ता करेंगे इस पे हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अम्बेसडर, आज जब इंडो पैसिफिक वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुका है, ऐसे में क्या भारत और न्यूजीलैंड रीजनल सिक्योरिटी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करने में साथ मिलकर किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं?
3: और न्यूजीलैंड ईस्ट एशिया समिट के दोनों सदस्य और दोनों ही आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं और हम और दोनों ही आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में भाग लेते हैं, आसियान रीजनल फोरम में भाग लेते हैं। तो जो ये अब रणनीति की बात कर रही हैं, ये इन संस्थाओं में जो बातचीत होती है उसमें भारत और न्यूजीलैंड का साझा ख्याल वहां पर आ चुका है, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चीन का दबाव बढ़ रहा है उस क्षेत्र में, खासकर पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी अपना हाथ उठाकर एक कोशिश कर रहा है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाया जाए और वहां पर किसी बड़ी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह से नहीं फैलने दे।
2: अब बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। एम्बेसडर, आपने जिक्र किया कि FTA का जो फॉर्मल साइनिंग है वो हुआ था अभी कुछ महीनों पहले। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि भारत न्यूजीलैंड संबंधों में व्यापार अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। FTA के बाद वो कौन से क्षेत्र हैं दोनों देशों के लिए जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं निकल कर सामने आई हैं, किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है FTA के बाद?
3: न्यूजीलैंड

0: अपनी ट्रेड पॉलिसी के लिए बहुत ही माहिर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करता है, इसलिए वो एपेक का मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी, वो आरसेप जिसमें से भारत ने एग्जिट कर लिया था उसका भी मेंबर है, और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उसका भी वो मेंबर है, उसका इनफैक्ट सेक्रेटेरिएट वही चलाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो अग्रीमेंट्स हैं जिनमें भारत नहीं है उसमें सब में न्यूजीलैंड है, क्योंकि उस न्यूजीलैंड को अपने व्यापार के लिए बड़ी मार्केट्स की एक सर्च रहती है, हमेशा खोज रहती है। तो भारत के पास भी वो इसी वजह से आया कि हमें भी भारत का जो बड़ा मार्केट है उसकी खोज है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब आरसीईपी की निगोसिएशन होती थी तो न्यूजीलैंड बहुत भारत को तंग करता था, क्योंकि उसकी एकमात्र रणनीति थी कि हमारे दूध और दूध के पदार्थ भारत की मार्केट में जरूर आए।
1: जी
0: अब हमारा जो एफटीए उनके साथ हुआ है इसमें भारत ने अपनी जो अपनी हमारी सोच है उसकी रक्षा की है, और इसमें दूध एग्रीकल्चर ऐसी जो चीजें हैं उनको हमने नहीं आने दिया है। लेकिन क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी हाई है, न्यूजीलैंड ने एफटीए साइन किया है और भारत के 100% गुड्स को वहां आने की अनुमति दे दी है। हमने अपनी तरफ से भी काफी ढील उनको दी है, और तकरीबन 90% जो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट ऑलरेडी भारत को होता था उसको फायदा होगा एफटीए से। लेकिन जो ये बड़ी चीजें होती हैं दूध मिल्क पाउडर चीज, इन चीजों को हमने अभी अपनी अनुमति नहीं दी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजों में समझौते की तरह हम आगे बढ़े, जैसे कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम जिसमें एप्पल कीवीज और जो उनकी एक खास शहद होता हनी होती है मारुकाडी, उसके लिए भारत में कैसे उनको उसका उत्पाद किया जाए उसके लिए एक पार्टनरशिप बनाई जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि भारत की ओर से जो लोगों की मोबिलिटी है, मतलब वहां जाकर न्यूजीलैंड में पढ़ सकते हैं और वहां काम भी कर सकते हैं, इसको एफटीए के अंडर हमें और अनुमति मिलेगी। और फाइनली 20 बिलियन डॉलर का एफडीआई निवेश न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में करेगा। तो ये होता है एक कॉम्पोजिट एफटीए जिसमें निवेश भी है, व्यापार भी है, मोबिलिटी भी है और सर्विसेज भी है। और न्यूजीलैंड का जो निवेश भारत में है वो ज्यादातर आईटी में है, लॉजिस्टिक्स में है, ऐसी सर्विसेज में है, तो ये उनकी क्षमताएं हैं। तो ये इस तरह से उनको फायदा होगा।
1: नई संभावनाएं हालांकि तलाश रहा है न्यूजीलैंड भी, क्योंकि जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं भी न्यूजीलैंड को नजर आ रही हैं। और जो क्लाइम डाउन एक तरह से कह सकते हैं उनकी पुरानी पॉलिसी में, वो भी हमने देखा है। आपने पीपल कनेक्ट की बात कही अम्बेसडर, तो उससे जुड़ता एक सवाल है कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर विदेश यात्रा में वो ये इंश्योर करते हैं कि भारतीय समुदाय से वो संवाद जरूर करें, और न्यूजीलैंड में भी देख रहे हैं हम कि भारतीय समुदाय लगातार प्रभावशाली होता जा रहा है। क्या ये समुदाय हम कह सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक नेचुरल ब्रिज या फिर एक इकोनॉमिक और एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, दे आर नो लॉन्गर जस्ट अ कल्चरल और एन इमोशनल ब्रिज, दे आर एज मच एन इकोनॉमिक एंड अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज। क्या न्यूजीलैंड के केस में ये कहा जा सकता है कि भारतीय समुदाय के लोग जो वहां रह रहे हैं वो भी इस रिश्ते को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं?
0: क्योंकि वहां पर तकरीबन 3 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जिसमें से तकरीबन 70,000 भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, तो ज्यादातर लोग तो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। न्यूजीलैंड ने कुछ साल पहले से एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया था कि भारत जैसे देशों से जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिन एरियाज में उनको जरूरत थी, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, हेल्थ वर्कर हुआ, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल हुआ, ये उन्होंने इन प्रोफेशंस को टारगेट करके माइग्रेशन की। तो ज्यादातर माइग्रेंट्स जो उधर हैं हमारे वो सब प्रोफेशनल्स हैं, तो ये हमारी कम्युनिटी को एक अच्छा ओहदा और अच्छी तस्वीर बना के देता है। अब वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का इंतजार कर, आज मैंने देखा था कि कई लोग भारतीय मूल के कह रहे थे हमारा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस छोटे से देश में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अभी आज पहुंच गए हैं। तो जो ये मीटिंग होगी उसमें हाउसफुल

0: क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के लिए आज तक नहीं हुई है, तो ये एक नया कीर्तिमान आज देखा जाए।
1: बिल्कुल, उस तरह की एक्साइटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से पहले भी देखी गई है। बल्कि कल जब मेलबर्न में भी प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो काफी उत्साह था। अम्बेसडर, ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट रहा प्रधानमंत्री का, न्यूजीलैंड से पहले 2 दिवसीय यात्रा, उसमें भी कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स, कई ठोस परिणाम सामने आए। अगर दोनों यात्राओं को भारत की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में देखें तो यह कितना महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, एक डिप्लोमेटिक संदर्भ में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझा सके।
0: नॉर्मली

0: प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड से पहले 2 दिवसीय यात्रा, उसमें भी कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स, कई ठोस परिणाम सामने आए। अगर दोनों यात्राओं को भारत की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, एक डिप्लोमेटिक संदर्भ में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझा सके।
1: नॉर्मली न्यूजीलैंड को एक ऑस्ट्रेलिया का करीबी दोस्त माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया नीति अपनाएगा न्यूजीलैंड भी वो अपनाएगा, लेकिन इंडो पैसिफिक पे, क्वाड पे और चीन के ऊपर न्यूजीलैंड ने अलग कदम उठाए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड का मेंबर है, इंडो पैसिफिक में एक्टिव है, न्यूजीलैंड ने उसने इतने कदम नहीं बढ़ाए, इसलिए दोनों विजिट्स को एकमात्र रूप से देखना मैं समझता हूं थोड़ी विचित्रता आती है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे गहरी बात दो है, एक यूरेनियम और एक क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ये चीजें बड़ी मात्रा में है। तो सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो यूरेनियम हमको मिलेगा जिससे हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चला पाएंगे और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स तो वो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव और पैक सिलिका का भाग है ऑस्ट्रेलिया। फिर डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो हमारा एक संधि हुई है उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया का मैरिटाइम बॉर्डर कमांड, ये भी दोनों आपस में अब तालमेल रखेंगे। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है वो अब तेजी से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमारे एक इंटरिम अग्रीमेंट है, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम हुआ और जिसमें कई लोग मौजूद थे, और आपने देखा होगा कि एशिया में ऐसा सीईओ फोरम नहीं हुआ। तो हर देश में वही चीज नहीं होती है, डिपेंड करता है उस देश में क्या क्षमता है। और जो कल्चरल रिपैट्रिएशन है, आई मीन ऑस्ट्रेलिया के पास कई भारत के सांस्कृतिक चीजें हैं जो चोरी से वहां आई हुई है, तो उन्होंने कई चीजें इस बारी भारत को लौटाई और इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। न्यूजीलैंड के पास यूरेनियम नहीं है, क्रिटिकल मिनरल नहीं है, उनके पास शीप है, दूध है, आईटी की क्षमता है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा वादा कर दें एफडीआई का, उसका पूरा करें, तो उससे तो फायदा होगा ही। दूसरा मैरिटाइम सिक्योरिटी जो आसियान और ईएएस में भी बात होती है, न्यूजीलैंड उसको भी दोहरा रहा है। ये विजिट जैसे मैंने कहा एक नया दौर शुरू करेगी भारत और न्यूजीलैंड में।
0: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा बिल्कुल यही स्पष्ट कर रही है। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इंडोनेशिया से की, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए और अब वो न्यूजीलैंड गए हैं 2 दिनों के लिए। ये स्पष्ट है कि भारत का इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण अब और अधिक व्यापक हो गया है और अधिक सक्रिय है, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देशों के साथ सहयोग को नई दिशा देने की ये पहल आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक साझेदारी और साझा समृद्धि को और ज्यादा मजबूती दे सकती है। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री इन तीनों देशों की यात्रा पर गए हैं। अम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalk@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया, दिलीप ताहिर का लिखा और राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है 100 डेज़।

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आर डी बर्मन।

अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में है। संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म है प्यासा सावन।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बागी फिल्म का गीत। इसे गाया है अभिजीत और साथियों ने। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट अथवा भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनी व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित

0: संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा अथवा भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अथवा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक आर्थिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की।

0: श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को

0: उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में

0: विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness the performance by the Nad Vocal Ensemble.

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हममनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोजा तारीखी दौरे का आगाज है।

उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशो खरोश से भरा हुआ था क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वजीर आजम ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्र आजमों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मोआन पुई साईवी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने ये कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तखत किए गए भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती माहदे को भी उजागर किया कि यह तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन ने मजीद तौसी फराहम करेगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल किया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लूप्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संग मील तक इस दौरे ने दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इक्तिसादी और तहफुजाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीस का अपने दौरे के दौरान पुरजोश मेजबानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत मुल्क की साहिली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनाब शाह ने आज बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल के हमराह ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब शाह ने कहा कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जानी चाहिए और उन प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाना चाहिए जिन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से ट्रेनिंग हासिल की हो। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मस्कत में उम्मान के अपने हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी, दिफा और साइबर नीज मसनूई जहानत के शोबों पर मरकूज रही। दोनों लीडरों ने खलीज में जारी हालात और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की काविशों पर जामे तबादला ख्याल किया। उम्मान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और उम्मान के दरमियान तवील मुद्दती समंदरी ताल्लुकात ने सदियों से उनके आवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस में आजादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गरज से बड़े पैमाने पर सिफारतकारी पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर खारजा ने उम्मान में भारतीय निषाद कम्युनिटी के अराकीन के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उम्मान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनका जोश व खरोश काबिल तारीफ है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन कल बिहार के शहर गया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान नायब सदर वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और देही तरक्की के बिहार इंस्टीट्यूट में कानून साज असेंबली के अराकीन के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे।
पार्लियामानी उमूर के वजराए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन

0: ने आज पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स में आइंदा मॉनसून इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लिया। पार्लियामेंट का यह इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और अगस्त की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मेघवाल ने कहा कि आने वाले इजलास के लिए कानून साजी के उमूर के प्रोग्राम का जामे जायजा लिया गया और जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेल ने 680 किलोमीटर तवील शिमाली रेलवे के रास्ते पर हिफाजत और कामकाज में बेहतरी लाने की गरज से 206 करोड़ रुपए लागत के कवच निजाम को तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का मकसद मकामी हिफाजती निजाम को मसरूफ तरीन और कलीदी तौर पर अहम रास्तों पर फैलाना है। रेल की वजारत ने कहा कि कवच विजन 4.0 को दिल्ली डिवीजन के रेवाड़ी दिल्ली और शकूर बस्ती भटिंडा सेक्शन पर लागू किया जाएगा। इस निजाम को खतरनाक वाकयात और ट्रेनों के तसादुम के वक्त सिग्नल को रोककर रेलवे की हिफाजत को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। वजारत ने कहा कि यह निजाम ट्रेनों की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर खुद ब खुद ब्रेक लगाता है और ट्रेनों को हिफाजत के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक चलने की इजाजत देता है। ये मनफी मौसमी हालात जैसे घने धुंध के दौरान काबिल एतमाद ट्रेन ऑपरेशन को भी तकवीत देता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज मिशन स्ट्रिंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेहत इको निजाम में से एक बनकर उभरा है, जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वजह किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए गए हैं। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ABDM के तहत एक शानदार डिजिटल सेहत देखभाल का बुनियादी ढांचा वजह किया गया है और अगले मरहले में मुल्क भर में इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने और इस्तेफादा करने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत काउंसिल NPC सनअत और अंदरूनी तिजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाती तआवुन को बेहतर बनाने, इदारा जाती सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमात की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वजीर मौसूफ ने उन इकदामात का भी जायजा लिया जिनका मकसद ज्यादा मरबूत, मौसर और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग इंतजामी निजाम कायम करना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जिली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
1: IMD के मुताबिक 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी भारत के बाद इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिन भर अब्र आलूद मौसम के साथ ज्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सोमिया शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेंबरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेंबरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होगा।

0: कर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उजरदारियों की समाअत करेगी जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को एक रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जामात के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक एसआईटी की तश्कील की थी। आज बीजेपी ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेज ने शिरकत की ताकि मुस्तकबिल के सहेली गार्ड्स प्लेटफॉर्म्स पर गौर खौस किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलों पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बरतानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोतो, एक ऐसा खेल जो बच्चों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है और यह खेल बच्चों तक ही सीमित नहीं है बल्कि बड़ों में भी इसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्केटिंग की। स्केटिंग न सिर्फ भारत में लोकप्रिय है बल्कि पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। स्केटिंग क्या है और इसे किस तरह खेला जाता है तथा मध्य प्रदेश में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इन तमाम विषयों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है खेल विशेषज्ञ।

0: अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए।
0: अमर जी, आपको स्केटिंग में बहुत लंबे वर्षों का अनुभव है और हम आपसे अगर समझना चाहे स्केटिंग को, तो सरल भाषा में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि स्केटिंग क्या है और इसे किस तरह से खेला जाता है।
1: सर नॉर्मली समझा जाए तो स्केटिंग एक नॉर्मल सा शूज़ होता है जिसके अंदर व्हील लगे होते हैं, आपको पहन के चलना होता है, तो एक तरीके से आपको उड़ने का मज़ा देता है स्केट्स। बहुत
0: जी
1: सारे शब्दों में यही है
0: जी
1: कि जब भी आप स्केट पहनेंगे और चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, मज़ा आएगा।
0: जी। अब जैसे आपने बात करी स्केटिंग की, तो कितने तरह की स्केटिंग इस
1: जी
0: समय खेले जा सकते
1: जी
0: हैं?
1: शुरुआत करने के लिए तो नॉर्मली टेनासिटी स्केट्स आते हैं, लोहे का
0: जी
1: स्केट होता है, रबड़ के व्हील होते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा बेटर करते हैं तो क्वार्ट्ज कैटेगरी आ जाती है, ये शू में अटैच होते हैं, दो व्हील आगे दो व्हील पीछे होते हैं। फिर इसके बाद इनलाइन कैटेगरी आ जाती है जिसमें एक ही लाइन में चार व्हील लगे होते हैं, और फिर आइस होता है जिसमें कि ब्लेड लगती है, आइस में व्हील नहीं होके ब्लेड होती है जो
0: जी
1: आपको लगा के शू में चलाना होता है।
0: जी जी जी
1: तो ये चार तरह के स्केट्स होते हैं।
0: जी और इनमें किस तरह का कंपटीशन होता है, कंपटीशन की अगर बात करें
1: सर
0: तो?
1: कंपटीशन तो सर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद डिवीज़न लेवल, फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, फिर नेशनल प्रतियोगिता काफ़ी होती है, और आजकल तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। बाकी स्कूल लेवल पे CBSE लेवल पे कंपटीशन होता है, SGFI अपना अलग इवेंट कराता है, और बाकी जो फेडरेशन है रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो भी कराती है, आइस वाले भी अपना कराते हैं, काफ़ी सारे इवेंट है, बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है खेलने के
0: जी,
1: लिए।
0: अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन सा सबसे ज्यादा स्केटिंग जो है प्रचलित है?
1: सब भारत में सबसे ज़्यादा इनलाइन स्केट चलते हैं, क्योंकि आप इनलाइन स्केट खेलते हो तो आपको इंटरनेशनल इवेंट खेलने को मिलता है। आज की तारीख में सिर्फ इनलाइन स्केट है जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो, और एक आइस स्केटिंग है, बाकी क्वार्ट्ज कैटेगरी अलाउ नहीं है इंडिया के बाहर, वो सिर्फ इंडिया में ही चलता है।
0: जी। क्या इसको ओलंपिक में भी शामिल किया गया है स्केटिंग को?
1: सर आइस स्केटिंग तो ओलंपिक में है, लेकिन स्पीड की तैयारी चल रही है, उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जरूर स्पीड स्केटिंग भी होगा, रोलर स्केट्स होंगे।
0: जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ओलंपिक में इसको शामिल किया जाए और भारत इसमें बहुत अच्छा करे, जैसे कि अन्य खेलों में भारत करता आ रहा है।
1: सर बिल्कुल सर, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है रोलर स्केटिंग करें, काफ़ी अच्छा गेम है। बिल्कुल
0: तो हम अपने तमाम श्रोताओं को कहना चाहेंगे, आप खेल कोई भी हो जरूर उसे अपनाएं, जरूर उसे खेलें, इससे आपकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ेगी और आप एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकेंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे स्केटिंग की, तो स्केटिंग को शुरू करने की सही उम्र क्या है?
1: सर, वैसे तो कोई भी इवेंट जो चालू होता है वो 6 साल 5 साल के बाद होता है, लेकिन स्केटिंग में हम लोग 2.5 साल के बच्चे को स्केटिंग कराना चालू कर देते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। एक स्केटिंग ही ऐसा गेम है कि जो सबसे कम उम्र के बच्चों के लिए अलाउ है, अदर गेम में तो वो अंडर 14 चालू करते हैं, लेकिन स्केटिंग SGFI में अंडर 11 चालू है, और क्या होता है CBSE में अंडर 8 भी है
0: जी
1: जो कि सिर्फ स्केटिंग है, तो 2.5 साल में बच्चा करना चालू कर देता है स्केटिंग आराम से।
0: जी अगर कोई स्केटिंग को प्रोफेशनली खेलना चाहे तो उसे कितना वक्त देना चाहिए इस खेल में?
1: सर नॉर्मली स्केटिंग सीखने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं, बैलेंस बन जाता है, आदमी चलाना सीख जाता है, लेकिन अगर उसको आगे इवेंट खेलना है तो उसको एक अच्छे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्या होता है जिसके पास अच्छा इक्विपमेंट होता है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती है, और जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं होता उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है। तो एक तो इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है स्केटिंग में, उसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको मेडल लाना है, जो बच्चा साल भर प्रैक्टिस करेगा वही स्टेट में डिवीज़न लेवल पर कुछ अच्छा कर पाएगा, नहीं तो बड़ा
0: बिल्कुल
1: मुश्किल है। तो कुछ पेरेंट्स समझ जाते हैं जो कराते हैं, और कुछ के पास समय की कमी होती है और चाहते हैं कि समर में ही सब हो जाए, तो बड़ा मुश्किल है।
0: जी जी
1: इसलिए
0: जी
1: सब माता पिताओं से एक ही निवेदन है कि अपने बच्चे को साल भर कोई भी गेम कराएं तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 1-2 महीने में तो नहीं आ सकते सर।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। हम तमाम अभिभावकों को जो भी अपने बच्चों को किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में डालते हैं, हम यही कहेंगे कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनको एक नई दिशा प्रदान करें, क्योंकि आजकल खेलों में भी उतना ही सुनहरा भविष्य है जितना कि आप शिक्षा से संवार सकते हैं। अमर जी, अगर कोई इसको प्रोफेशनली स्केटिंग को अपनाना चाहे तो उसे लगभग कितना वक्त प्रतिदिन देना चाहिए ताकि उसके खेल में निखार आए?
1: सब मिनिमम उसको मॉर्निंग में 2 घंटे और शाम को 3 घंटे देना पड़ेंगे, तब जाके वो नेशनल लेवल पे मेडल लाने लायक खिलाड़ी बन सकता है, उसके बिना तो असंभव है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी खेल में समय देना बेहद आवश्यक है और जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक रिजल्ट की उम्मीद कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें समय भी अवश्य दे और

0: स्थिति, इससे रिजल्ट भी बेहतर मिल देंगे। अब अमर जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खेलों में कोच की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है, तो स्केटिंग में भी क्या कोच की भूमिका उतनी ही ज़्यादा अहम है जितना कि अन्य खेलों में है?
1: सब बिल्कुल, ये सब बिना कोच के मार्गदर्शन के खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि कोच के पास अनुभव होता है, उसके बाद से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकले होते हैं, उसने कई सारे इवेंट देखे होते हैं, तो कोच को पता होता है कि कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ क्या होता है। एक अच्छा खिलाड़ी को हमेशा अपने कोच की बात सुननी चाहिए, और हमारे इसमें तो कहा जाता है, बिलीव ऑन योर कोच एंड विन मेडल। अगर
0: वाह।
1: आप अपने कोच पर भरोसा नहीं कर सकते तो मेडल लाना संभव नहीं है, क्योंकि आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जितना खिलाड़ी का नाम होता है उससे कई गुना ज़्यादा कोच का नाम होता है।
0: बिल्कुल
1: खिलाड़ी की जीत कोच के लिए सबसे बड़ा उपहार है, उससे बड़ा
0: बिल्कुल
1: पुरस्कार कुछ नहीं है कोच के लिए। तो मेरा मानना है कि हर खिलाड़ी को अपने कोच के ऊपर भरोसा करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात की आपने, जैसे कि गुरु जो है मार्गदर्शन देता है, और बिना गुरु के कोई भी चीज़ को सीख पाना लगभग असंभव है। अमर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 20 वर्षों का आपको लंबा अनुभव है, तो आप स्केटिंग में कैसे आए और कब ऐसा लगा कि आपको स्केटिंग को ही एज ए करियर के तौर पे अपनाना चाहिए?
1: सर 2001 में एक जगह देखा बैनर स्केटिंग सिखाते हैं, तो वहाँ मैं गया, वहाँ राहुल भुजाड़े करके सर थे, उन्होंने स्केटिंग चालू करी थी सिखाना, उनसे सीखा। उसके बाद नेशनल हुए स्केटिंग के, तो मैं गया तो रोलर हॉकी का नेशनल मैंने खेला, चंडीगढ़ में हुआ था, RSFI की तरफ से, तो खेला। तो उसी दरमियान उनके साथ मैं कॉफ़ी पीने जा रहा था, तो बाइक का फुटरेस्ट खुल रहा था, तो अचानक से मेरा पाँव व्हील में चला गया, जिससे कि
0: ओहो।
1: मुझे काफ़ी चोट लगी। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ मंथ तक आप स्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं एक मिनट बाद ठीक होकर ट्रैक पे जाता था, तो राहुल से बोलते तू भी सीखा स्केटिंग जब तू आया है ट्रैक पे, तो सिखाना चालू कर गया और मैं कोच बन गया। फिर मुझे सिखाने में ज़्यादा मज़ा आने लगा।
0: अमर जी, अन्य खेलों में जैसा हमने देखा कि डाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या स्केटिंग में भी जो खिलाड़ी स्केट करते हैं उनको भी अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, और उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए?
1: सर डाइट का पूरा महत्व है, चाहे स्केटिंग हो चाहे कोई भी खेल हो, चीज़ में आपको अच्छी प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। बिल्कुल, आपको अपनी मसल वगैरह सब प्रॉपर गेन करने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर एक अच्छे डाइटिशियन से आपको मार्गदर्शन लेके डाइट लेना चाहिए।
0: जी। अमर जी, आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया देखकर भी बहुत से लोग नए नए खेल सीखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से किसी खेल को सीखना यह कितना सही है?
1: सर सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन आप क्या चूज़ करते हैं, कौन सा वीडियो आप देख रहे हैं, वो कितना अच्छा मार्गदर्शक है, वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, ये आपको प्रॉपर से जानकारी होना चाहिए। मतलब काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, अगर आप सही चीज़ देख रहे हो और वो फ़ायदेमंद है तो 100% फ़ायदा होगा, लेकिन आप किसी गलत व्यक्ति का वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपका बहुत सारा नुकसान हो।
0: जी
1: इसके लिए आपको अपने कोच से सलाह तो लेना पड़ेगी कि कौन सही है,
0: बिल्कुल,
1: उसके बगैर आगे बढ़ना असंभव काम है
0: मतलब
1: सर।
0: विश्वसनीयता की बात करें तो जितना विश्वास आप अपने कोच पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे शायद उतना विश्वास न हो। तो हम यही सलाह देंगे कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स चूज करते हैं तो अपने कोच के मार्गदर्शन में करें,
1: बिल्कुल
0: वही
1: सर,
0: आपको एक
1: बिल्कुल
0: सही रास्ता दिखाएगा। अमर जी, स्केटिंग करते वक्त किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं या लेने चाहिए किसी भी बच्चों को या खिलाड़ियों को, जिससे कि उनको किसी तरह की कोई कोई नुकसान ना हो?
1: सर, मैं तो हर खिलाड़ी को बोलता हूँ कि सबसे पहले हेलमेट पहने, स्केट बाद में पहने, और सबसे पहले स्केट उतारे, हेलमेट सबसे लास्ट में उतारे, क्योंकि आप स्केटिंग ऐसा गेम है जिसमें आप गिरते हो, चोट लगती है, आपको फ्रैक्चर होता है, आप गिरते हो चोट लगती है। मेरा मानना है आपके हाथ में चोट लग जाए, पाँव में चोट लग जाए, सब चलेगा, लेकिन आपके हेड को सेफ रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हेड इंजरी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो हर अपने स्केटर को बोलता हूँ सबसे पहले हेलमेट बेस्ट क्वालिटी का खरीदे। वैसे तो हम जो छोटे स्केटर होते हैं उनको नी गार्ड, एल्बो गार्ड, रिस्ट गार्ड कंपलसरी करते हैं, लेकिन हाँ जो बड़े बच्चे हो जाते हैं फिर हम उनसे भी हेलमेट कंपलसरी करते हैं, वो एल्बो गार्ड रिस्ट गार्ड पहनते हैं तो उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो हमें नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, और नेशनल लेवल पर गार्ड्स में ओनली हेलमेट अलाउ है, अदर गार्ड्स अलाउ भी नहीं है। तो हेलमेट तो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, छोटे बच्चे जो स्टार्ट करते हैं तो उनको पूरे गार्ड पहनने ही चाहिए।
0: अब हम आपसे जानना चाहेंगे अमर जी, कि मध्य प्रदेश में स्केटिंग की क्या संभावनाएं नजर आती है आपको?
1: सर मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, और बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले स्कूलों में स्केटिंग नहीं हुआ करता था, लेकिन आज मेरा मानना है कि भोपाल के 80% स्कूलों में स्केटिंग चालू हो गया है। भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में स्केटिंग चल रहा है, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्कूल वाले भी काफ़ी अच्छा सहयोग दे रहे हैं, बच्चों को बाहर जाते हैं इवेंट खेलने तो उनको काफ़ी मदद करते हैं, बच्चे बाहर से आते तो उनको पुरस्कार भी देते हैं। तो सर डेवलपमेंट तो है काफ़ी पहले से, क्योंकि पहले स्केटिंग के गार्ड भी मुझे इंदौर से लाना पड़ते थे, हर चीज़ भोपाल में अवेलेबल है।

0: जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को, उन बच्चों को जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं स्केटिंग में?
1: सर, मेरा कहना है जो बच्चे स्केटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, देखिए सर, कोई भी खेल है ना, खिलाड़ी, पेरेंट्स और कोच, इन तीनों से ही संभव हो पाएगा। अगर तीनों का सहयोग होगा तो ही कोई चैंपियन बन पाएगा। अगर मान लीजिए खिलाड़ी और कोच तैयार है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। मान लीजिए पेरेंट्स और कोच तैयार है, खिलाड़ी तैयार नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए पेरेंट्स और खिलाड़ी तैयार है लेकिन कोच अच्छा नहीं है तो नहीं। तो इन तीनों के सहयोग से एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। तो मेरा कहना है पेरेंट्स के, उस बच्चे को समय दे, हर इवेंट में पार्टिसिपेट कराए, जीतने के लिए ही इवेंट ना खेले। पार्टिसिपेशन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर माँ बाप सोचते कि यह बच्चा मेडल नहीं लाता, क्यों ले जाए, लेकिन जब वो दो चार बार जाएगा तभी तो उसको समझ में आएगा कि मेडल के लिए कितनी मेहनत करनी है, और मेहनत पूरी करना पड़ेगी सर, तभी अपना भविष्य बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह सक्सेस मिले। कभी कभी आप सक्सेसफुल नहीं होते पर आप एक चीज़ें जो सीखते हैं उससे हैं, वही आपको एक सक्सेस की दिशा, एक सक्सेस की राह दिखाती है। तो आपने जैसे बात की, हम तमाम अभिभावकों से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करें और उनको जितना सपोर्ट हो सकता उतना सपोर्ट करें। अमर जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आपने मध्य प्रदेश में स्केटिंग की संभावनाएं विषय पर अमर भटकर जी से यह बातचीत सुनी। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
1: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
5: यह था कार्यक्रम खेल जगत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अभिनेत्री फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अली जी, आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अमानत फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना साहिर की और संगीतकार रवि।

मोहम्मद रफ़ी के गाइस गीत्स के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओ, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेमचरण खेमरिया। फरमाइशी पत्रों के साथ ये पहला पत्र जो मेरे हाथ में है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से, लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमाली वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार बंडा से, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और विनोद आर्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। आप सभी ने फरमाइश की है।

कर्मा फिल्म के गीत की। किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगली फरमाइश की है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष, कवर कॉलोनी बड़वा से फरमाइश करते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। और कालका से फरमाइश की है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में जानी दुश्मन फिल्म का गीत। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यादों के मौसम इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजेश राजदीप, राजेश राशि, राजेश श्रीमती शीतल, राजेश महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश की है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए यादों के मौसम फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। सलाहुद्दीन परवेज ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीत से संवारा है आनंद मिलिंद ने।

करियादंड हट्टा ज़िला बालाघाट से फरमाइश की है हुलासराम कटरे नानेश्वरी कटरे, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल माखीजा, शरद कुमार डोडवानी, दीपक हीरालाल धनशानी, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार, बटिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, आप सभी सुनना चाहते हैं ज़बरदस्त फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश चरस फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिक, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया रीत और ऋषभ राजावत। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। अगली फरमाइश है गौतम नगर ज़िला नादेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले की।
1: गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट।

इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए अमरीश कालेले का गिटार वादन, राग है गावती। तबले पर संगत की है सलीम अल्लावाले ने।

0: अभी आपने अम्बरीश कालेले का गिटार वादन सुना। राग था गावती। तबले पर संगत की थी सलीम अल्लावाले ने। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं।

0: यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
3: We will be building on the things that we've already worked on. So, free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So, there are some things about trade and commerce. There will be some things about